दोस्तों, जिंदगी भी कुछ पतंग की तरह ही है। कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू जाती है तो कभी हवा का रुख बदलते ही डगमगाने लगती है। लेकिन पतंग की तरह ही इंसान की जिंदगी में भी उड़ान का अपना एक मजा है। कभी धूप, कभी छांव, कभी जीत की खुशी और कभी हार का अनुभव। बस फर्क इतना है कि पतंग को उड़ाने के लिए डोर चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हौसला। डोर हाथ में हो और मन में विश्वास तो आसमान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उड़ान जारी रहती है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें कोई ऐसी खूबसूरत सौगात देती है ना, जिसके बाद लगता है कि अब और कुछ पाने की चाह ही नहीं रही। किसी अपने का साथ, उसकी मौजूदगी और उसका प्यार, ये छोटी छोटी खुशियां ही तो हमारी पूरी दुनिया बना देती है। मोहब्बत में भी तो यही एहसास सबसे खास होता है, जब एक इंसान का मिलना ऐसा लगे जैसे उसके साथ ही खुशियों की पूरी दुनिया मिल गई हो।

जिंदगी का सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कदमों के साथ कोई गीत भी चलता रहे। रास्ते चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर मन में उमंग हो और होंठों पर कोई मीठी धुन, तो सफर की थकान भी जैसे कहीं पीछे छूट जाती है। संगीत में यही तो जादू है। यह हमें मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सिखाता है और हर नए मोड़ को उम्मीद के साथ अपनाने का हौसला देता है।

कहते हैं जब दिल खुश होना तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है और कदमों में अपने आप एक नई रफ्तार आ जाती है। प्यार और खुशियों से भरा यही एहसास इस गीत में बड़ी खूबसूरती से झलकता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:10 पर। श्री रामचरित मानस गान का समय रहता है 6:45 पर। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 7:10 पर।

म्यूजिकल दिल लगी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर और 9:45 पर। स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा सुनिएगा 9:10 पर। दिल का मेलबॉक्स, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 10:30 पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत तस्वीर कार्यक्रम में सुनिएगा दारिंगबाड़ी के बारे में। आकाशवाणी FM गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन सुनिएगा 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 1:10 पर। संगीत.com कार्यक्रम सुनिएगा 2:30 पर। मन भवन कार्यक्रम पेश किया जाएगा 3:10 पर। फिल्म सॉन्ग सुनिएगा 4:10 पर। गाते गुनगुनाते, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 5:10 पर। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फार्मर्स सुनिएगा 5:30 पर। विश्लेषण कार्यक्रम सुनिएगा 6:10 पर। मधुरिमा कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:10 पर। हरसिंगार कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 पर। गीत मेरे मनमीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा 11:40 पर। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब आप अपने डोर भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो हर परिस्थिति में मन की शांति अपने आप मिल जाती है। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद के अनुसार सब कर्तव्यों में सबसे महान कर्तव्य है ईश्वर का सुमिरन करना। प्रातः सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि ईश्वर का ध्यान किया जाए और अपने जीवन को उनकी सेवा में कैसे अर्पित करें इसके विषय में सोचा जाए, ताकि दिन भर आप उनके आनंद से भरे रहें।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दयानंद सरस्वती के अनुसार जो विद्वान होता है वो सत्य असत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है।

रहीम कहते हैं कि जब एक ही दीपक के प्रकाश से घर में रखी सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती हैं, तो फिर नेत्र रूपी दो दो दीपकों के होते तन मन में बसे स्नेह भाव को कोई कैसे भीतर छिपाकर रख सकता है। अर्थात मन में छिपे प्रेम भाव को नेत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है और नेत्रों से ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था।

शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं।
1: विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्चस्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और NIA ने 30 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें ईरान को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या फिर समझौता करना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने मध्यस्थों के जरिए 7 शर्तें रखी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमरीका के कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अलर्ट यमन के हौसी गुट की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल चुका है। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow.

24 डिग्री के आसपास रहेगा। सूर्योदय का समय था 6:08 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:19। अब सुनते हैं ज्वेल थी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

0: मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि

0: जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: सात बजकर 22 मिनट और 14 सेकंड गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आइए अब सुनते हैं चिराग फिल्म से मोहम्मद रफी को।

थोड़ी बहुत बातें भूल जाना तो हम सभी के साथ होता है, लेकिन हाल फिलहाल की बातें या सीखी गई जानकारी भूल जाना या एक ही सवाल बार बार पूछना या समय तारीख परिचित जगहों को पहचानने में भ्रम होना या फिर रोज के कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करना, अगर ऐसा कुछ आपके या आपके किसी परिचित के साथ हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। आज 21 सितंबर है और हर साल आज ही के दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए इसके विषय में जागरूक होना आवश्यक है। यदि आप समय रहते याददाश्त पर काम करना शुरू कर देंगे तो अल्जाइमर को नियंत्रित किया जा सकता है।

0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 21st of September.
0: जी, मुख्य समाचार।
1: जी बिल्कुल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी।
1: जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर विल लीड द इंडियन डेलीगेशन फॉर द हाई लेवल वीक एट द 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, यूएसए। The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings.
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक, पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: The Ministry of Law and Justice, Government of India, will organize a workshop under the Disha Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice 2.0 scheme today at the University Auditorium of the India International University of Legal Education and Research, South Goa. Our Goa correspondent has a detailed report.
5: The workshop will focus on strengthening access to justice through technology-enabled legal services, legal awareness and pro bono legal assistance. Best Reels created under Nyay Prabodh, Awakening to Justice, Know Your Rights in 90 Seconds campaign will be showcased on this occasion. A slogan competition under Nyay Prabodh will also be launched during the program. Another session will focus on Nyay Bandhu Pro Bono Legal Services program. Through initiatives such as Telelaw, Nyay Bandhu, Legal Literacy and Legal Awareness programs and Vidhi Sanjeevani, the Department of Justice is working towards making legal services more accessible, understandable and affordable to citizens in remote and underserved areas. For Aaj Saveri, Mahesh Sopre, Panji.
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल फाजिल्का से यात्रा के तीसरे चरण को शुरू करते हुए कहा, यह कोई राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की पहल है। इसका उद्देश्य पंजाब को विकसित पंजाब बनाना है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service. His journey is guided by the principle of Jan Seva Se Desh Seva and a continued commitment to public service. In

0: inspired by this vision of service and good governance, the government is working towards the goal of a developed India by 2047. This commitment, through inclusive development and social empowerment, is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the PM Kisan scheme.
1: In Madhya Pradesh, a large number of farmers are benefiting from the PM Kisan scheme. Under the scheme, eligible farmers receive financial assistance of 6,000 rupees every year in three equal installments directly into their bank accounts. This support is useful for farmers to meet their needs for fertilizers, seeds and other farming activities. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously working, keeping the needs of farmers in mind.
2: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है. हमारे ये किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं. पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है.
1: The scheme was started in 2019. So far, more than 4,47,000 crore rupees have been transferred to farmers through 23 installments. More than 9,49,00,000 farmers benefited from the 23rd installment. The central government has now approved the continuation of the PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Total financial provisions of 3,15,000 crore rupees has been made for the scheme. Chindwara farmer Basant Patel said that farmers are happy with the decision to continue the scheme for 5 more years.
3: सरकारी योजना जो है,
4: we are very happy that the Kisan Samman Nidhi scheme has been extended for 5 more years. The scheme is very useful for farmers. It helps us in buying seeds and fertilizer and is also useful during the sowing season. We thank Narendra Modi government.
3: सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद.
1: For Akashwani News, I am Vipin Mishra from Bhopal.
5: जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 2 रजत पदक जीते हैं. एला वेनिल वला रेवन, विदार्सा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता. एला वेनिल जापान की हिनाता ताइची के बाद दूसरे स्थान पर रहीं. नए शामिल किए गए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने भारत के लिए तीसरा पदक पक्का किया. उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम परंपरागत एमएमए स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला सिंगापुर की तेओ हुई हून से होगा. सेमीफाइनल में जीत या हार दोनों ही स्थिति में सुचिका को कम से कम कांस्य पदक तय है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा.
0: Moving on to sports, in the 5th round of the 46th Test Olympiad at Samarkand, R. Pragyananda and D. Gukesh secured crucial wins over Anish Giri and Erwin Lamy, respectively, to help India seal a 3-1 win over the Netherlands yesterday. On the other hand, the women slumped to a 1.5-2.5 loss to Poland after R. Vaishali was outplayed by Alexandra Maltsevskaya. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. Weather agency said that conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from some parts of Rajasthan and some parts of Punjab, Saurashtra, Kutch during the next 2 days. Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jharkhand, Odisha, Rayalaseema, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands for the day. Similar weather conditions are expected over East Rajasthan, Gujarat, Kerala, Mahi, West Bengal.
5: Ye the ab tak ke mukhya samachar. और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का. पहले दिल्ली की खबर. दक्षिण दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में कल 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास विधूड़ी और मंजू भी उपस्थित रहीं। रामवीर सिंह विधूड़ी ने बताया कि इस राशि से गौतमपुरी, जे कॉलोनी, ताजपुर पहाड़ी, मीठापुर, हरिजन बस्ती और तुगलकाबाद के एच ब्लॉक लाल कुआं में सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली की एक और खबर, दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी। इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी।
0: Moving on to Bengaluru, a four-member Japanese parliamentary delegation led by former Foreign and Defence Minister Taro Kono visited the Indian Institute of Science, ISRO, and the Bharat Electronics Limited at Bengaluru as part of the India-Japan visit program. This Indian embassy in Japan said the visit reflects the growing India-Japan cooperation in AI, technology, space, defence and startups. The visit comes amid efforts by India and Japan to further strengthen strategic and defence cooperation, including maritime security. And moving on to Hyderabad, the city of pearls have transformed into a vibrant hub of devotion as the annual Ganeshotsav celebrations reach a crescendo.

अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। गणेश उत्सव के सातवें दिन कल रात 9 बजे तक 6400 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। गणेश उत्सव के सातवें दिन रविवार रात 9 बजे तक मुंबई भर में कुल 6436 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बृहन मुंबई नगर निगम के अनुसार विसर्जित प्रतिमाओं में से 99 सार्वजनिक गणेश मंडलों की थी, 6127 प्रतिमाएं घरों की थी और 210 गौरी देवी की थी। विभिन्न परंपराओं के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन उत्सव के पहले और अंतिम दिन प्रथम, तृतीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अनंत चतुर्दशी को किया जाता है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कहा कि विसर्जन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। मुंबई की एक और खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ अगले 5 वर्षों में मुंबई का कायापलट होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि सरकार द्वारा कनेक्टिविटी, नेटवर्क, बुनियादी ढांचे के विस्तार और समग्र विकास कार्यों के चलते अगले 5 वर्षों में मुंबई में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी के चयन का दूसरा चरण रविवार को पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग की ईवीएम प्रबंधन प्रणाली ईएमएस का उपयोग करते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए विशिष्ट ईवीएम और वीवीपीएटी इकाइयों का आवंटन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित लॉटरी के माध्यम से किया गया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने पुष्टि की है कि रेजीनगर और नंदीग्राम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चयन का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसके बाद ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को चालू करने का कार्य 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा।

0: शहरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं वीसी प्रमोद से।
1: दैट्स राइट मनोज, आपने नॉर्थ की बात कर दी, मैं साउथ की बात कर
0: दी। जी जी,
1: Chennai is likely to see rain or thunderstorms in evening or night. The temperatures are expected to range between minimum of 25 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius. Bengaluru is to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach about 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see generally cloudy sky with moderate rain. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 31 degrees Celsius. Manoj, as you know, today is World Alzheimer's Day. It's being observed today as the day raises awareness about Alzheimer's disease and dementia. The theme for this year is the earlier you know, the more you can do. A dementia diagnosis matters, highlighting the importance of timely diagnosis. According to the WHO, 57 million people were living with dementia worldwide in 2021, with nearly 10 million new cases each year. Ye bahut zyada daravni baat hai Manoj.
0: Ji haan, ji.
1: 10 million new cases every year. Alzheimer's disease accounts for an estimated 60-70% of dementia cases. इसमें एक पर्सनल चीज बताऊं मैं मनोज, कि मेरे डैड को भी ये था डिमेंशिया, एंड वी नेवर गॉट टू नो टिल द लास्ट स्टेज। तो आई डोंट इवन नो कि ये अर्ली डायग्नोसिस होता कैसे, बिकॉज जब तक वो आता नहीं है हमें पता ही नहीं लगता कि आ गया वो।
0: जी हाँ, आज और एक विशेष दिन है
1: जी।
0: आज विश्व शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। शांति सभी को प्यारी होती है, इसकी खोज में मनुष्य अपना अधिकांश जीवन न्यौछावर कर देता है। और अब समय है आज के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 21 सितंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1857 में आज ही के दिन बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
1: टुडे इन 1746 French Expeditionary Army occupied Labour Donay and Duplay Madras. And in 1964, the Crown Colony of Malta became independent on this day.
0: 1928 में आज ही के दिन माय वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत हुई। और 2000 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 2008 में आज ही के दिन रिलायंस के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू हुआ।
1: In 1966, on this day, 21st of September, Mihir Sen crossed the Bosphorus Strait. And in 2001, the University of Roorkee became India's 7th Indian Institute of Technology, rechristened as IIT Roorkee.
0: जी हाँ, और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: किससे शुरू करेंगे आप?
0: प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आज याद कर रहा हूँ जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनका नाम है ताराचंद बड़जात्या। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 10 मई 1914 को राजश्री भवन कुचामन सिटी जोधपुर राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था।
1: मनोज, क्या ये वही है जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन शुरू किया?
0: जी हाँ, जी हाँ, बोल रहा हूँ अभी
1: जी।
0: उन्होंने 1960 से 1980 के दशक तक कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना की, जो आज भी फिल्मों का निर्माण कर रही है। उनकी मुख्य फिल्में मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों पर आधारित और परिवार केंद्रित होती थी। उनके द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं दोस्ती, जीवन मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, गीत गाता चल, अंखियों के झरोखों से, सावन को आने दो, मैंने प्यार किया आदि।
1: बट आपने एक फिल्म का नाम नहीं लिया।
0: कई फिल्में हैं।
1: दुल्हन वही जो पिया मन भाए।
0: जी हाँ, पहले एक मेडली सुनते हैं।
1: अच्छा मेडली।
0: हाँ, पहले एक मेडली सुनते हैं।

0: प्रमोद जी, आप एक फिल्म की बात कर रहे थे, इनकी ताराचंद बड़जातिया की।
1: जी बिल्कुल, दुल्हन वही जो पिया मन
0: जी।
1: भाए,
0: हाँ जी हाँ।
1: और वहां पे हमारे साउथ के सुपरस्टार सिंगर यशोदास,
0: हाँ,
1: उनका बहुत प्यारा गाना है।
0: जी हाँ
1: क्या
0: जी।
1: मैं सुना दूं उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आज जयंती है प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री नूरजहां की। उनका जन्म 21 सितंबर 1926 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के कसूर में हुआ था। उन्हें दक्षिण एशिया की महानतम और सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में गिना जाता है, जिन्हें मल्लिकाए तरन्नुम भी कहा जाता
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: नूरजहां ने अपने लंबे करियर में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी भाषाओं में 10,000 से अधिक गीत गाए।
1: Absolutely right. In fact, she had proficiency in Hindustani classical music as well as in other genres including ghazals. She made her directorial debut with the film Chhanwe in 1951, becoming the first female director in Pakistan. And she is recognized for her contributions to music in South Asia, particularly in Pakistan. And मैंने सुनने में आया है कि जब उन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान तो बहुत से लोग दुखी हो गए थे कि why did she migrate to Pakistan? And उन दिनों में she was a good pair with सुरैया। And इनका कौन सा गाना आपको याद आ रहा है मनोज भाई?
0: इनके बहुत ही सदाबहार कुछ गीत हैं, आप सुन लीजिए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे
1: जी।

0: आज जन्मदिन है गुलशन ग्रोवर का। उनका जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में अपने नकारात्मक किरदारों से प्रभाव छोड़ने की अपनी काबिलियत के कारण उन्हें हिंदी सिनेमा के बैड मैन के तौर पर जाना जाता है। उनकी अभिनीत फिल्मों में सबसे बड़ा खिलाड़ी, मोहरा, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, टार्जन द वंडर कार शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद।
1: गोलगप्पे? ओए कांस्टेबल, तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोलगप्पे आ गए?
2: आप मसरूफ थे सरकार।
1: ओ जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खाओगे गोलगप्पे?
3: मेरे पिताजी कहाँ हैं?
1: मेरे पिताजी को तड़के बड़े धाने ले गए, वहाँ जाकर ढूंढो।
3: लेकिन उनका जुर्म क्या है?
1: आतंकवादी है वो, मिले हुए आतंकवादी। तुझे मालूम है मेरे थाने में चिल्लाड़ा गैर कानूनी है।
4: राइट, टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फेमस कन्नड़ा क्लासिकल सिंगर कॉल्ड पंडेश्वर कलिंगा राव। He died on this day 1981 and he was an Indian Bhagavati and Sugama Sangeeta singer and composer in the Kannada language. Even though he was a primary school dropout, but he knew 6 languages and he was regarded as one of the most important doyens of classical music in Kannada. We have a rendition, let's listen to that.

0: जाने से पहले मुझे पूरे करने हैं कई अधूरे काम। मसलन करना है एक नदी से संवाद जो बहती है मेरे अगल बगल, लिखना है एक लंबा खत पहाड़ों पर उतरती सुरमई शाम के नाम, पूछना है प्रवासी पक्षियों से कि वे कैसे रखते हैं अपने परों में हजारों मील उड़ान का हौसला, पहाड़ों पर जाती पगडंडियों में खोजने हैं पुरखों के कदमों के निशान, भेजनी है ढेरों शुभकामनाएं। ये काव्य रचना है गुरमीत बेदी की। उनका आज जन्मदिन है। उनका जन्म 21 सितंबर 1963 को शाहबाद मारकंडा हरियाणा में हुआ है। उन्होंने 1983 से 1990 तक जालंधर से प्रकाशित हिंदी दैनिक वीर प्रताप में उप संपादक और फीचर संपादक के रूप में कार्य किया। आपको कविता संग्रह मौसम का तकाजा पर हिमाचल साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा पंजाब कला साहित्य अकादमी, राजस्थान पत्रिका उत्कृष्ट सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज जन्मदिन है अभिनेत्री करीना कपूर का
1: जी।
0: उनका जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। वे सन 2000 से हिंदी सिनेमा में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं और 2024 तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। आइए सुनते हैं उनका एक गीत
1: जी।

0: आज जन्मदिन है सिंगिथम श्रीनिवास राव का। उनका जन्म 21 सितंबर 1931 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ है। वे एक प्रसिद्ध और बेहद प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और संगीतकार हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे नवोन्मेषी और बहुमुखी निर्देशकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 60 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पुष्पक एक ऐतिहासिक मूक फिल्म थी, जिसमें कमल हासन ने अभिनय किया था। ये आधुनिक भारतीय सिनेमा की अनूठी फिल्मों में गिनी जाती है।
1: That's right. I think it's one of an amazing film, है ना मुकेश मनोज? उसमें बिल्कुल there was no dialogue in that.
0: एकदम
1: हमारे पास एक गाना है नाचे मयूरी का, वो ले सकते हैं?
0: पहले वो संवाद आप सुन लो।
1: ओ, हाँ, बिल्कुल।
0: उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में एक फिल्म बनाई है जो पिछले साल रिलीज हुई है, 2024 में रिलीज हुई है।
1: ओके।

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: That's right. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
5: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
4: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
6: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
4: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
9: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
8: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
10: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
8: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं।

0: कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के पांचवें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगी। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड अता किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से जबरदस्त जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे का आगाज कर रही हैं। वो कल एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब की सदारत करेंगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबियों को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड्स हर साल इत्तलात और नशरियात की वजारत की तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए

0: जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड्स भी अता किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितंबर तक मुनाकिद होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहस मुबाहसे के लिए अक्वाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली का ये 81वां इजलास एतमाद की बहाली यकसर तब्दीली का बंदोबस्त एक अक्वाम मुत्तहदा जो सबको खिदमात फराहम करती है के मौजू पर मुनाकिद किया जा रहा है। इस जनरल असम्बली में अक्वाम मुत्तहदा के सभी 193 रुकन ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा होंगे और बड़े बैन अक्वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौकिफ तय करेंगे। अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश ने आलमी रहनुमाओं से कहा है कि वह बैन अक्वामी ताउन को मजबूत करें, जैसा कि वह जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में यकजा हो रहे हैं। अक्वाम मुत्तहदा के मुताबिक 81वें इजलास में आलमी ताउन में नई जान पैदा करने, लगातार तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने और अमन वकार और बराबरी के लिए इज्तिमाई इकदाम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अपने ओहदे की खिदमात अंजाम देते हुए 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उनका सफर जन सेवा से देश सेवा के उसूल और अवामी खिदमत के तई उनके लगातार आजम पर मबनी है। हुकूमत जो खिदमात और अच्छी हुक्मरानी के तसव्वुर से मुतहर्रिक है, 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के तई काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी इख्तियारात के जरिए इस अजम से लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस जिम्न में हम पीएम किसान के बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी तादाद में पीएम किसान स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अहल किसान हर साल 3 बराबर की किस्तों में 6000 रुपए की माली मदद हासिल कर रहे हैं। ये रकम इन्हें बराह रास्त बैंक खातों में मिल रही है। ये मदद किसानों के लिए काफी फायदेमंद है कि वो कीमियावी खादों, बीजों और दीगर जरई कामों को पूरा कर सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की जरूरतों के पेश नजर लगातार काम कर रही है।
3: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
2: इस स्कीम का आगाज 2019 में किया गया था और अभी तक 4,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 24 किस्तों में किसानों को जा चुकी है। 23वीं किस्त से 9,49,00,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। मरकजी हुकूमत ने अब पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए की माली मदद मुख्तस की गई है। छिंदवाड़ा के एक किसान बसंत पटेल ने बताया कि किसान मजीद 5 साल के लिए इस स्कीम को जारी रखने के फैसले से काफी खुश हैं।
4: किसान सम्मान निधि ये 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
2: खातून किसानों को भी इस स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अभी तक 1,06,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खातून किसानों को दी जा चुकी है। इस स्कीम में डिजिटल तस्दीक, आधार तस्दीक और बराह रास्त फायदा मुंतकली का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रकम को बराह रास्त किसानों तक पहुंचाया जा सके। भोपाल से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: सदियों के इंतजार के बाद अजीम शान राम मंदिर की तामीर से अयोध्या के एक नए बाब का आगाज हुआ, जो भगवान राम का शहर है और जिसकी वजह से मजहबी सियाहत और तरक्की के आलमी नक्शे में ये शहर इम्तियाजी हैसियत का हामिल हो गया है। मरकजी और रियासती सरकारों की कोशिशों से अयोध्या में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ और ये शहर सनातन धर्म का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा। तफसील हमारे नामनिगार से।
5: साल 2014 में मरकज में हुकूमत की तब्दीली और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के

0: कायम होने के बाद से भगवान राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर बदलने का अमल तेज हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शानदार राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हुआ, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव जैसे प्रोग्रामों के जरिए अयोध्या के सकाफती और मजहबी शान और शौकत को नई पहचान देने की कोशिश शुरू हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये शहर आलमी सतह पर मजहबी सयाहत, सनातन संस्कृति और तरक्की की अहम अलामत के तौर पर उभरा है। इसी राम की नगरी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए हमें अपने अंदर भगवान राम के उसूलों को बेदार करना होगा।
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक अयोध्या में सकाफती, समाजी और माशी मैदान में बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि सैलानियों की तादाद में इजाफे के साथ साथ रामनगरी को आधुनिक सहूलियात से भी लैस किया गया है।
2: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, हर तरफ युगांतरकारी परिवर्तन हुए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: आज अयोध्या सिर्फ अकीदत का मरकज नहीं बल्कि मजहबी सयाहत, बेहतर राबते और रोजगार के मौकों के जरिए तरक्की की नई राहें भी हमवार कर रही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा कि उसने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी हैं। सदर ट्रंप का यह बयान ईरान के सदर मसूद पेजिशियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आए हैं, जहां वो अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी शरायत से आगाह कर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को ताइफ और यम्बू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के लिए खसूसी इजाजत हासिल करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन ने बताया कि यह पाबंदियां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हैं। मिशन ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी शहरियों पर जोर दिया है कि वह मोहतात रहें और तजवीज करदा हिफाजती इकदाम पर पूरी तरह अमल करें। यह अलर्ट यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है, जिनमें रियाज की जानिब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ताजा कशीदी के बाद पूरे सऊदी अरब में सिक्योरिटी इकदामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी हुक्काम ने फजाई हमले के मुमकिन खतरे के तनाजुर में हंगामे इंतबाह भी जारी किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुखासमत को कम करने और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के इकदामात पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बताया है कि राजस्थान के मजीद कुछ इलाकों और पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों से अगले दो दिन में जुनूब मगरबी मानसून के इख्तिताम की तरफ बढ़ने के हालात हैं। महकमे ने झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटा पड़ने की पेशगोई की है। इसी तरह के मौसमी हालात मशरकी राजस्थान, गुजरात, केरला, माहे, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के कुछ इलाकों में कल तक इसी तरह के मौसम का इम्कान जाहिर किया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 40वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें मरहले में भारत के मर्दों की शतरंज टीम

0: ने हॉलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय खवातीन टीम को पोलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के मर्दों की टीम ने मुसलसल 5 मैच जीतकर अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा और वो उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ लीडर बोर्ड्स पर मुश्तरका तौर पर सरफहरिस्त है। आर प्रज्ञानंदा ने चंद ड्रॉज के बाद शानदार वापसी करते हुए अनिश गिरी को शिकस्त दी। अर्जुन इरिग्यासी ने सख्त मुकाबले के बाद जॉर्डन वान फॉरेस्ट के खिलाफ मैच ड्रॉ किया। नेहाल सरीन ने तजर्बाकार लोइक वान वेली के खिलाफ आसानी से ड्रॉ हासिल किया, जबकि डी गुकेश ने अपनी बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखते हुए इरविन को शिकस्त दी और 5 खेलों में अपनी चौथी इन्फरादी फतह हासिल की। दूसरी जानिब भारतीय खवातीन टीम को टूर्नामेंट में पहली बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। आर वैशाली की शिकस्त महंगी साबित हुई, क्योंकि टीम की बाकी खिलाड़ी इस कमी को पूरा ना कर सकें, जिसके नतीजे में टीम को 1.5-2.5 से मामूली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद खवातीन की टीम 8वें नंबर पर आ गई है, ताहम वापसी के लिए अभी 6 राउंड बाकी हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, अक्वामे मुत्तहिदा जनरल इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर भारत की नुमाइंदगी करेंगे और आलमी अमन इकतसादी उमूर न्यूक्लियाई हथियार जैसे अहम मसाइल पर मुल्क का मौकफ रखेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर ईरान अमरीका जंग से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, जंग खत्म करने का फैसला अब अमरीका के सवाबदीद पर है ईरान का बयान। और इसी अखबार ने मशरक उस्ता में कशीदगी बढ़ने के खदशे से मुतालिक खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, अमरीका ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, डोनाल्ड ट्रंप कैंप डेविड का दौरा मुख्तसर करके व्हाइट हाउस वापस हुए।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगी। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड अता किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से जबरदस्त जीत हासिल की। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर आज को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बना लीजिए। आठ बजकर 46 मिनट और 27 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली की सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। स्वीकार करें पूजा का नमस्कार।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को

0: संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत चार हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका अब फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। उसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी गुट द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि टूर्नामेंट में अभी 6ठे दौर की बाजियां बाकी हैं और भारतीय महिलाओं के पास वापसी करने का पूरा अवसर है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर निशानेबाजी में अपना तीसरा पदक हासिल किया। सुचिका आज महिलाओं की 60 किलोग्राम ट्रेडिशनल एमएमए स्पर्धा के सेमीफाइनल में सिंगापुर की तेओ हुई हुन का सामना करेंगी। भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम कल स्वर्ण पदक के लिए श्रीलंका से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekatanagar Kevadia tomorrow. More from our correspondent.
2: Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections, feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. US President Donald Trump has said that he is in deciding mode over the Iran war, warning that big things are going to happen. His remarks came after Tehran said it has shared its conditions

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन भारत जैसे देश में पानी की कहानी सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है, ये खेती की कहानी है, गांव की अर्थव्यवस्था की कहानी है, महिलाओं के श्रम की कहानी है, स्वास्थ्य की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कहानी भी है। पिछले 25 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो जल प्रबंधन का विषय उनकी प्रशासनिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं में रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला जनसेवा से

0: डिजिटल से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में इकोनॉमी में क्या है, बट जो वाटर सेक्टर में जितना योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम के तौर पे किया था। बेसिकली उनके जो फिलोसफी थे वाटर के बारे में, ये वाटर एक बुनियादी रिसोर्स है जिसको हम मानते थे पहले कुदरत की देन है तो हमेशा आते रहते हैं, बट उसको भी संभालना है, उसको डेवलप करना है। ये उन्होंने 2001 में जब सीएम गुजरात बने थे तब से वो शुरू कर लिया था। कच्छ में वो पानी लेके उसको अच्छा वो खासा बनाया, ग्रीनरी बनाया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लाइन, उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था। प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था। जल का मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे, उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
1: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहां कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से, उन्हीं जो मिशन थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
2: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है। वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं, जमाने से चला आ रहा है, ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की वजह से, वो भी है। और चौथा जो है वो हर जगह आप देखने को मिलता है पूरे भारत में, जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है, नमक जहां से पैदा होता है, जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का आप प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पानी की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है। इस तरह का एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा।
1: जी,
2: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई, बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: जी हाँ, खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुँचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम।
2: और आप देखिए ना, पानी नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की संबद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
1: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
3: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल

0: रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुंच गई थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में ना जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुंचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था और पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था। और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात, विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, उसकी तस्वीर आप क्या मानते हैं किस तरह से बदल दी?
2: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज प्रभावित करती है, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहां पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके पापा वहां पानी ले लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बताया सौनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशनबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इम्प्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैचरेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान कैचरेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के। तो टू और थ्री इम्पोर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है, जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते हैं, नर्मदा डैम उन्होंने कम्प्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का

0: संचयन करने का काम शुरू करते हैं, देन एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व. ये कैच द रेन एग्जाम्पल है यहाँ पे.
1: जी जी.
0: सो जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितने भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते, उसको संचय करके देखेंगे, तो सबकी भागीदारी भी होता है. और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें तीन ये था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स. तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था. और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बगरानंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी
1: जी
0: पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. अमरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँ, हम सोनी योजना की बात करें थे, तो सोनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
2: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है. मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना. देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है. ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है. सोनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है. और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है.
1: जी.
2: और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है. तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है. और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह जो आप भेजते हैं, तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है. पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है. पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है, कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं. ये तो गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार.
1: बिल्कुल.
0: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था. इतना बहुत बड़ा संख्या है. एंड जैसे आपने बताया, ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है, वो सबके लिए यूजफुल भी होता है.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने. और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं, तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया, तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम. तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
0: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन अ वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था. एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो वेरी सक्सेसफुल भी रहा था.
1: जी हाँ. तो अगर अमरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है और ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
2: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है. अब देखिए, सुजलाम सुफलाम जो योजना है, ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया, लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है. और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है, उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो. और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है. नाम से ही लगता है कि हाँ, हरितिमा है, हरियाली है. तो ये सफल रही है योजना. और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है. बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए पानी को लेकर जब जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है। उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलम सुफलम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल पारंपरिक, आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं हैं, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके आपने कहा पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
2: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है। वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां का बात की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया, तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
0: देखिए ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वॉस ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM, तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठ को तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन देने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी के बजट का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने वन पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगनेंट वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे, तो ये एक नया सोच था। और सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
2: देखिए गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं
1: जी।
2: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की

0: जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे
1: जी,
0: बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहां बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी है और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
2: रीयूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर इज ए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बट आई वुड से दैट मोर देन रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, हमको व्हाट वी शुड लुक एट इज रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर। स्वेज वाटर को भी ट्रीट करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% वाटर यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, व्यवसाय होता है, तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर तो ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होते हैं वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का है, उससे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी।
2: उसी तरफ से हमको इन्वॉल्व करना है, और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट डुअल पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेस आते हैं उसमें डुअल पाइप लगाएं और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में लाइक फॉर इरिगेशन पर्पजेज या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पजेज के लिए ये यूज कर सकते, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को, उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
2: ये एक अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेडफोर्ट से, दैट वाज ही वाज हेडिंग एज द वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू द फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गांव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इम्पोर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है।

0: इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन हाउस फॉर द वुमन गिव सेविंग दम टू इम्पोर्टेंट थिंग्स वन ए ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया. सेकेंड अच्छा पानी पीने का पानी पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसके वजह गंदा पानी के वजह से जो होता था वो कम हो गया एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट. ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हुआ दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस ऑल इन यूएन में दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हम ये कर पाया. इतना बड़ा काम कैसे कर सके बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है और आज जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है. आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का प्लम्बर्स का लोकल करना ये सब जल जीवन मिशन का हिस्सा है एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस.
1: जी अमरेंद्र जी गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहां फोकस पानी पहुंचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ राज्य के जो पुराने अनुभव हैं और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है जुड़ गए हैं और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है. और जहां तक बात आगे के लिए है तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल उसकी संस्कृति जो विकसित हुई वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को जो जल के जो संकाय है जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले ये बहुत अच्छी बात है. हम लोगों को आज का नहीं देखना है आने वाले 25 सालों का देखिए जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए. देखिए अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी. लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और अब ये केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है. चुनौती है नल में नियमित पानी हो पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो.
1: जी
2: चुनौती यही है
1: यही चुनौती है और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना है इससे निपटना है. और
2: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए
1: जाना ही चाहिए
2: जी हाँ.
1: और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है. अशोक जी आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
0: दिस इज अ वंडरफुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर. पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें. बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स पानी जहां बरसते हैं वहीं को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है. तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं. एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं. सेकंड पार्टिसिपेशन हर व्यक्ति बूढ़ा बच्चा महिला मर्द सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं और अपने घर में अपने आंगन में जो भी बारिश आते है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल उसका बढ़ जाते हैं और हमारा एनर्जी भी सेविंग हो जाता है क्योंकि पहले हम देते थे कि ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे 2 HP मोटर 5 HP मोटर 10 HP मोटर तक किया. अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाता है और एनर्जी का भी सेविंग होता है. तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन.
1: जी अमरेंद्र जी कैच द रेन जो मूवमेंट था मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में लोगों के विचारों में लोगों के प्रयासों में किस तरह से बदलाव आया है?
2: देखिए ये अवधारणा तो नई तो है नहीं लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो यह है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच भी ठीक है. दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है आत्म प्रतिबद्धता वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है. और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की कि पानी की संभावना पानी की मौजूदगी कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो है वो विकसित की जाएं

0: उनको एडॉप्ट किया जाए। जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी जो मोटे अनाज है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है।
1: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: इंडिया में 85-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था। एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन पीएम केएसवाई हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रचार किया, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी कर लिया, और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वी विल बी सेविंग अ लॉट लॉट लॉट वाटर।
1: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर सिद्ध हो रही है, और इस तरह से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी है सिर्फ एक नल तक पहुँचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरिंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आपका स्वागत है। ये है म्यूजिकल दिल्लगी और अब हम आपको बताएंगे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष या उससे अधिक आयु को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है उनकी गुणवत्ता में सुधार, बुजुर्गों को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं देना, सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित करना, वित्तीय और शारीरिक सुरक्षा देना, कमजोर और जरूरतमंद बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना। इसके बारे में और भी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इसके बारे में पढ़िए, अपने स्मार्टफोन में जाइए और देखिए कि हाँ ये सब कुछ जो हम सबके लिए है हमें कितना पता है, इन योजनाओं की जानकारी के बारे में हम कितना जानते हैं। आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है म्यूजिकल दिल्ली की और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:53।

इसी तरह से आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल के साथ, क्योंकि बड़े सारे प्रोग्राम्स होंगे आपके पास। बस अब समय होने वाला है समाचारों का, और उसके बाद होगी आपकी हमारी मुलाकात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री

शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: was one of 12 films selected for this year's platform program, TIFF's only competitive section. Beginning with the 2026 prize, winning the TIFF Platform Prize gives a non-English language film a direct pathway to eligibility for consideration for the Academy Award for Best International Feature Film. Iran has ruled out reopening the Strait of Hormuz or returning to the previous framework of negotiations with the United States until Washington meets Tehran's conditions. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said as tensions between the two countries continue to escalate, Mr. Ghalibaf said Iran has conveyed its demands to the United States through intermediaries and would not reconsider its position until Tehran's conditions were fulfilled. The United States has issued a security alert for its mission in Saudi Arabia, requiring U.S. government employees working in the country to obtain special authorization for all official and personal travel to the cities of Taif and Yanbu. U.S. mission in Saudi Arabia said the restrictions were imposed due to the ongoing security situation and urged American citizens in the kingdom to remain vigilant and follow recommended security measures. The alert comes after Yemen's Houthi group launched attacks towards Saudi Arabia, including a ballistic missile directed at Riyadh. U.S. President Donald Trump will meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky in New York tomorrow to push efforts to secure de-escalation between Russia and Ukraine, with the two leaders expected to discuss steps towards reducing hostilities and reviving negotiations. The meeting is being organized on the sidelines of the UN General Assembly in New York. Trump repeatedly urged Zelensky during the call to halt Ukrainian strikes on Russian oil refineries, with the attacks being linked to disruptions in fuel supplies and higher diesel prices. In the Asian Games, India has clinched the third silver medal in the men's 10-meter air rifle team event in Nagoya, Japan. Suchika Tarial also won the bronze medal in the women's traditional mixed martial arts 60-kilogram event. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बीच अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की और एशियाई खेलों में भारत को 6 पदक, निशानेबाजी में 5 पदक मिले। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। कल से 25

0: या फिर समझौता करने का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जल्द मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच क्षेत्र में जारी अन्य संघर्षों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी प्रशासन यमन के हौसी विद्रोहियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हौसी समूह अमरीकी कर्मियों पर हमला न करने के लिए सहमत हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी गुट द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय मीडिया खबरों पर नजर रखने की सलाह दी है। इस बीच कतर ने भी सऊदी अरब पर हुए इन हौसी हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होने वाली इस बैठक में दोनों नेता संघर्ष कम करने और बातचीत फिर शुरू करने पर चर्चा कर सकते हैं। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार और विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारियों में जुटे हैं। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप और श्री जेलेंस्की के बीच हाल में हुई फोन पर बातचीत के बाद हो रही है। श्री जेलेंस्की ने इस बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि इससे कूटनीतिक प्रयासों को गति मिली है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने श्री जेलेंस्की से रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमले रोकने का आग्रह किया। इन हमलों को ईंधन आपूर्ति में बाधा और डीजल की बढ़ती कीमतों से जोड़ा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमले नहीं करने की गारंटी देता है तो यूक्रेन रूसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोक सकता है। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नागा फिल्म निर्देशक थेजा रियो की फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीत लिया है। फिल्म अंग ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। ये इस वर्ष के लिए चुनी गई 12 फिल्मों में शामिल थी। इस साल से लागू नए नियमों के तहत ये पुरस्कार जीतने के बाद अब इसे गैर अंग्रेजी नागा फिल्म को आस्कर अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शामिल होने का सीधा रास्ता मिल गया है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए ज्यूरी अध्यक्ष पाब्लो ट्रेपेरो ने निदेशक थेजा रियो के साहस, उनके अनूठे नजरिए और बेहतरीन फिल्म निर्माण कला की सराहना की। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता पर निर्देशक थेजा रियो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुरस्कार जनजातीय भाषा की फिल्म के लिए बेहद खास है। उन्होंने इसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों को समर्पित किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी निर्देशक थेजा रियो और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ये जीत पूरे भारत और नागालैंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जिसने नागा सिनेमा को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया है। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए रविवार रात मतदान समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का लगभग कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना तय माना जा रहा है। 3 दिन तक चले इस चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रात भर रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर भेजे गए थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान खत्म होने तक मतदान प्रतिशत 56.66% रहा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया।

0: है। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम 8वें स्थान पर खिसक गई। हालांकि टूर्नामेंट में अभी छठे दौर की बाजियां बाकी हैं और भारतीय महिलाओं के पास वापसी करने का पूरा अवसर है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत ने अब तक 6 पदक जीत लिए हैं। पार्थ माने, रुद्रांश पाटिल और हिमांशु ढिल्लों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में कल इलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने आज महिलाओं की 60 किलोग्राम ट्रेडिशनल एमएमए स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल स्वर्ण पदक के लिए श्रीलंका से खेलेगी। भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बीच अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। और भारतीय ग्रैंडमास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of the UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. Indian men scored emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. And in Asian Games, India clinched 3rd silver medal in the men's 10-meter air rifle team event at Nagoya, Japan. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
2: Dr. Jaishankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly will bring together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states, who will outline their priorities and positions on major international issues. UN Secretary General Antonio Guterres has called on world leaders to strengthen international cooperation as they gather in New York for the General Assembly. In a video message, Guterres said, "Come together for peace, dignity, justice and humanity. Only with international cooperation we can build a better world." Guterres, attending his final UN General Assembly as Secretary General, with his tenure set to conclude later this year. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. The UN General Assembly's high-level week will also feature discussions on global conflicts, development, climate change, humanitarian challenges, and other pressing international issues. The general debate is expected to provide a major platform for leaders to present their foreign policy priorities and engage on key global developments. Ashish Abraham for World News.
1: US President Donald Trump has said that he is in deciding mode over the Iran war, warning that big things are going to happen. His remarks came after Tehran said it has shared its conditions with Washington through mediators for reopening the Strait of Hormuz. Trump's comments come ahead of Iranian President

दिल का मेल बॉक्स भी बड़ा कमाल है, हर मेल में छुपा नाम है, सॉन्ग्स हैं, है ना ये कमाल की बात। दिल के मेल बॉक्स में इस वक्त हमारे साथ हैं रैया रोड राजकोट से राजेश कृष्ण, स्वाति और ख्याति कुमारी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंत सिंह जौड़ा, और ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हम आपका स्वागत करते हैं। 10:31 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में और बड़ा प्यारा सा दिन है क्योंकि ये सितंबर का महीना जो है, थोड़े से दिन अभी बाकी हैं लेकिन कई सारे प्लान हमारे पास हैं। और अगला नाम जो है वो है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी। और इसके अलावा गाने के बोल आपने बताए हैं, नाम बताया है, स्थान है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली पढ़रपुर तालुका है ये, और नाम है जाकिर मुलानी, समैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नासिर, चाचा और चाची भी हैं इनके साथ, और मैं हूँ आपके साथ।

सिर्फ मैं नहीं आई, आपकी बेल भी है हमारे पास। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजाल मलिक गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से हमारे साथ हैं। गगनदीप, तृप्ता कुमारी थाती, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी भी हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चौरी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। पसंद करता ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति। और आपका गाना कौन सा है? ये वाला दिल का मेल बॉक्स में, जो है इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

जाने मन कभी तो आइए दिल के मेल बॉक्स में FM गोल्ड AIRDelhi@gmail.com। कब तक आप दूसरों की रिक्वेस्ट सुनेंगे, अपनी रिक्वेस्ट आप हमें मेल कर सकते हैं और फिर उसको लेकर के हाजिर हो जाएंगे हम दिल का मेल बॉक्स में और बताएंगे ठीक वैसे ही जैसे कि इन्होंने कहा कि होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु, प्रोग्राम की सभी नगमे एक से बढ़कर एक हैं और हमें आप किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। इसके बाद मैं कहती हूँ आई लाइक इट। चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उसके अलावा श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से, कोल सिटी बरकाकाना से मैंने आपको बता ही दिया है, इनके नाम मैंने ले दिए हैं। गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से भी हमारे पास बहुत सारे बार बार जो मेल आ रहे हैं उसका भी जिक्र हमने कर दिया। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति और साथ में उनका पूरा का पूरा परिवार, कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, राष्ट्र राजकोट से जोली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी हैं और इसके अलावा कोपरगांव से सुरेश, वर्षा, श्रद्धा, मानसी। कोपरगांव से सुरेश, श्रद्धा के साथ साथ और भी उनके कई सारे फ्रेंड हैं। शिवगांव से श्रीराम और उषा हैं और इनका गाना है मेरे पास। 10:41 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

0: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा कहते हैं कि हमारा हर पल खुशियों से भरा हो, बस किसी भी फरमाइश में शामिल करें और शुक्रिया मेहरबानी आपकी। शुक्रिया मेहरबानी तो हम आपका करना चाहते हैं दिल का मेल बॉक्स में। और ये है बस छोटा सा ब्रेक, अब भी आती हूँ।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
7: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
8: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
9: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
10: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
11: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के

0: ईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

ये तो मुझे कहना चाहिए जरा होले होले, क्योंकि दिल का मेल बॉक्स आगे आगे और पीछे पीछे हम हैं। मैडम जी, हमारी बारी का इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम ही खत्म।

मुझे ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश ऐसा कहते हैं। और हमें नमस्कार भेजते हैं महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ हरियाणा से। और इसके बाद बड़ी दूर से हमारे पास मेल आया है वर्ली मुंबई से, आर जे जी नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान है। इसके साथ साथ हमारे पास बड़े सारे बड़े दूर दूर से इस पर आए हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, लो सबके नाम याद हो गए। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, अफरोज शेख, पता नैमुआ, सुपौल बिहार से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान। और ये सब अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में, जो है इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

और ये मेल है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन और उनके पूरे परिवार का। राजेंद्र जटोलिया उषा जटोलिया हैं फ्रॉम दिल्ली नांगलोई से, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव दिवेंशु भूषण, संस्कृति पौरुष और

हमेशा की तरह ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और उनके साथ साथ सारा अब्बासी परिवार, निगहत हैं, शाहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सारे मेंबर्स, रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अवंतिका, तनुश्री गुप्ता, महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़, और आपकी पसंद हमारे पास है, ये रही। लेकिन उससे पहले सब लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो आप बताइए गाना पूरा सुनना है या आपको अपना नाम सुनना है। वैसे जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये है नीटू मल्होत्रा, सुनील पाठक कहते भाई प्लीज हमें शामिल तो कीजिए तो कर तो लिया, ताज मोहम्मद है, और इसके अलावा बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी पसंद के सॉन्ग्स चले, वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद सुनते चले जा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

यूं ही लिख लिख के दिल के मेल बॉक्स में आप हमें भेजते रहिए। आपकी चॉइस हमारे पास है और हम उसे प्ले करेंगे। फिलहाल बजने वाले हैं 11, समय है ये समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर

0: को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के दो विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगनाना संबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का सिलसिला जारी है। हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और पार्थ राकेश माने की भारतीय टीम ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar Kevariya tomorrow. We have more from a correspondent.
2: Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections, feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dadasaheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. The 81st session of the UN General Assembly is scheduled to begin from tomorrow and will continue until the 28th of this month. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will flag off the fourth phase of the Nasha Mukt Punjab Yatra from Talwandi Sabo in Bhatinda today. He will be accompanied by Haryana Chief Minister Naib Singh Saini. The Yatra is focusing on three major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. The United States has issued a security alert for its mission in Saudi Arabia requiring U.S. company employees working in the country to obtain special authorization for all official and personal travel to the cities of Taif and Yanbu. U.S. mission in Saudi Arabia said the restrictions were imposed due to the ongoing security situation and urged American citizens in the kingdom to remain vigilant and follow recommended security measures. The alert comes after Yemen's Houthi group launched attacks towards Saudi Arabia, including a ballistic missile directed at Riyadh. Iran has ruled out reopening the Strait of Hormuz or returning to the previous framework of negotiations with the United States until Washington meets Tehran's conditions. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf said Iran has conveyed its demands to the United States through intermediaries and would not reconsider its position until Tehran's conditions were fulfilled. Ghalibaf's remarks came after Iran's Central Military Command warned that any renewed U.S. military action against Tehran would trigger attacks against American bases and interests across the region. India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka

11:10 हो चुके हैं। तस्वीर में कैद नहीं सफर दिखाते हैं, तस्वीर ट्रैवल शो में हम आपको पूरा भारत घुमाते हैं और बड़ी सारी कहानियां बताते हैं और बहुत सी ऐसी बातें जो आप सोचते हैं वो हम अपनी जुबान पे लेके आते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है तस्वीर, और आज तस्वीर हम लेकर के आए हैं दारिंगबाड़ी की, जो है ओडिशा में। प्यारी सी, छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, और अगर आपने यहाँ पे इन जा करके इस जगह का दीदार किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको कन्विंस करने वाली हूँ। पूरे एक घंटे हैं मेरे पास, आप जाइए और ये जगह घूम के आइए और हमें भी बताइए आपको कैसी लगी।

अगर आप भी हैं दीवाने घूमने के तो फिर आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। यह है तस्वीर दारिंगबाड़ी की, जहाँ पे पहाड़ों की पुकार है और सुबह इतनी चुपचाप खामोश है। पाइन के पेड़ों की सरसराहट आपको यहाँ पे सुनाई देगी। ठंडी हवा के साथ साथ जंगल में कोई बात ना भी करे तो भी लगेगा कि शायद ये चट्टानी, ये झरने कुछ हमसे बात करना चाहते हैं। और सोचिए, इसके साथ साथ कॉफी की खुशबू और फिर दूर गांव से आती कोई मीठी सी तान, तब आप कहेंगे कि न शहर का शोर है, न जल्दी है, न दौड़ है, न बाजार है। दारिंगबाड़ी में ठहर जाइए, थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए और फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये अपने आप को बोल के देखिए।

आपको क्या लगा कि ये जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, ये सिर्फ हम किसी और के लिए बोल सकते हैं? अपने लिए बोलिए, जगह के लिए बोलिए, या फिर दारिंगबाड़ी के लिए बोलिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खास मिल जाएंगी। पाइन फॉरेस्ट है, हरियाली है, कॉफ़ी है, पेपर गार्डन है, दारिंगबाड़ी और लूडू वाटरफॉल है, हेल व्यू पॉइंट है, वैलीज हैं, जंगल है, नेचर वॉक है, बर्ड वॉचिंग है, आसपास ट्राइबल विलेज है और उनके कल्चर हैं, और इसके बाद आप हैं और मैं हूँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और ये है तस्वीर दारिंगबाड़ी की।

पहाड़ों की ठंडी धरती दारिंगबाड़ी। वैसे तो हर जगह की अपनी कोई न कोई कहानी होती है और कुछ कहानियां ना एकदम सच्ची लगती हैं। जैसे कि दारिंगबाड़ी के चारों ओर जब घने जंगल थे, सड़कें नहीं थी और वहां के कंद आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति के साथ रहते थे। पहाड़, झरने, जंगल, सब कुछ उन्हीं का ये संसार था। तभी एक समय एक अंग्रेज अधिकारी ने इस इलाके में वो जब वहां पे आए तो फिर उन्होंने जब ये ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली देखी तो इतने इम्प्रेस्ड हुए कि बस उन्हीं के नाम पे, जिनका नाम था डारिंग, उन्हीं के नाम पे ये धीरे धीरे दारिंगबाड़ी पड़ गया। और उसके अलावा भी बहुत सारी कहानी होंगी, वो तो जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है जिसको कि हम और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 11:25 हो गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे ये है तस्वीर दारिंगबाड़ी की, जो है उड़ीसा में। अब आप कहेंगे कि जाएं कैसे? जैसे भी आपका मन करे। सबसे पहले पैसे इकट्ठे कीजिए, मन बनाइए, बजट फ्रेंडली, और फ्रेंडली अगर आपके पास आपके दोस्त हैं तो उनको ले लीजिए और फिर निकल जाइए। ट्रेन से, फ्लाइट से, गाड़ी से, जैसे भी आप जाना चाहें, वेल कनेक्टेड है और बड़े आराम से आप जा सकते हैं। उड़ीसा जाना चाहते हैं दारिंगबाड़ी, ये मैं आपको बता रही हूँ उसी का पता। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दिल्ली से भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर भी वेल कनेक्टेड है, और उसके बाद दारिंगबाड़ी, जो वहाँ का, बड़े आराम से आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर जा कर के क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे, जिसका नाम है तस्वीर।

0: प्यार का फलसफा तो आप जाने, हम तो आपको बता रहे हैं मंजिल जहां पे आपको घूमना है। तस्वीर है ये दारिंगबाड़ी की। उड़ीसा के कंधमाल जिले में स्थित बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे प्यार से उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। आप यहाँ जाएंगे तो फिर नेचुरल ब्यूटी भर भर के पाएंगे। हर जगह घने चीड़ पाइन के जंगल हैं, झरने हैं, हरी भरी घाटियों से एकदम घिरा हुआ है और यहाँ पे कॉफी और काली मिर्च के बड़े बड़े बागान हैं। घूमने के लिए अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हिल व्यू पार्क दिखेगा, लवर्स पॉइंट नजर आएगा, मिंदू बंदा जलप्रपात और डोलुरी नदी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और पाइन फॉरेस्ट में जब आप जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई दुनिया, हम किस दुनिया से आए हैं और ये कौन सी दुनिया है। दोनों दुनिया बहुत अलग होंगी और न चाहते हुए भी आप भी गुनगुनाएंगे और यही कहेंगे कि भाई हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, आखिर हमने आपको, यानी कि हमने आपको पहले क्यों नहीं बताया। आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे तस्वीर में दारिंगबाड़ी के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप गांव और घर का जीवन देख सकते हैं, पारंपरिक रूप से जो चीज़ें हैं एकदम नेचुरल, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं है। देखिए और उसके बाद फिर बताइएगा।
1: ओ रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या। रब्बा

मैं आपको बताऊंगी ना कि वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे क्या खाना है। ऑथेंटिक उड़िया कुजीन आप खाइए दरिंगबाड़ी में, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो फिर आप उड़िया थाली ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह का खाना सादे चावल के साथ डालमा, दाल और हरी सब्जियों को मिलाकर के एक बहुत अच्छा टेस्टी सा खाना बनता है। साग और टमाटर की खट्टी चटनी इसमें शामिल होती है, ये खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा वहाँ जाएँ और पकाला भात ना खाएँ, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अगर आप गर्मी या हल्के मौसम में जा रहे हैं तो पानी और हल्के फर्मेंटेड चावल से बना पखाला, आलू भरता और उसके साथ आप अपनी मनपसंद

0: जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है खाइए, और फिर आप कहेंगे भाई वाह ये आनंद कितना अच्छा है, और उसको बार बार खाना चाहेंगे। और इसके अलावा भी वहाँ बहुत कुछ है खाने को मिलता, बताऊंगी ब्रेक के बाद।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूँ?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: दिए।
1: ये तो हमने आपको बता ही दिया कि हम कहाँ चल दिए, ये है तस्वीर। और तस्वीर में आज हम चल दिए दारिंगबाड़ी, जो है उड़ीसा में। वहाँ के खाने के जिक्र हो और उसके आगे हम और बात ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो चकुली पीठा और पूरी सुबह के नाश्ते में, यहाँ पे चकुली पीठा दाल चावल के घोल से बना हुआ डोसे जैसा पीठा होता है, गरम गरम पूरी सब्जी खाइए, आहा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके अलावा मुआ पीठा भी, नारियल और गुड़ की मीठी स्टफिंग होती है, ये पीठा भी बहुत बहुत जगह आपको मिल जाएगा, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ऑर्गेनिक कॉफ़ी पीजिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। इसके साथ साथ जब आप कंदमाल की ऑर्गेनिक हल्दी का तड़का, यहाँ पे बहुत फेमस है, क्योंकि दारिंगबाड़ी जिस कंदमाल जिले में आता है वो अपनी भौगोलिक GI टैग, जो वहाँ की ऑर्गेनिक हल्दी है, उसके लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप इसको लेना चाहें, ख़रीदना चाहें, तो भी इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। ख़ास ड्रिंक भी है यहाँ पे, यहाँ की लोकल कॉफ़ी है। और दारिंगबाड़ी, जिसको कि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा का कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे खूबसूरत कॉफ़ी के बागान हैं, तो फिर वो कॉफ़ी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो उसका मज़ा लीजिए। और उसके बाद ये सोचिए कि हाँ, हमें हमारा साथ एक कॉफ़ी के मग के साथ कितना प्यारा लगता है। इन्जॉय कीजिए।

तो फिर रुक जाइए तस्वीर में, क्योंकि ये है दारिंगबाड़ी, जिसे कहते हैं ओडिशा का कश्मीर। और कहीं घूमने जाएं, वहां जाकर के हम थोड़ी बहुत खरीदारी ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो फिर आप कंदमाल हल्दी जरूर लीजिएगा, ऑर्गेनिक हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला हुआ, ये मैंने आपको बताया। काली मिर्च, दालचीनी, ये आप ले सकते हैं। कॉफी गार्डन है तो फिर जाहिर है कॉफी वहां बहुत अच्छी मिलेगी। अदरक बहुत अच्छी मिलती है, बड़े पैमाने पर यहाँ पे खेती होती है। चाहे तो सोंठ यानी कि सूखा अदरक भी आप ले सकते हैं। फ्रेश बीन्स आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा प्योर ऑर्गेनिक हनी, शहद, शुद्ध शहद आपको यहाँ पे मिलेगा। ट्राइबल जो हैंडीक्राफ्ट है, शॉल है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कपड़े हैं जो यहाँ की स्थानीय, जो लोकल हाट बाजार है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम घर से दूर जाते हैं तो सारी की सारी रुसवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, रूठे हुए मान जाते हैं, जो दूरियाँ हैं वो करीब आ जाती हैं, और कई बार कितने सारे गिले शिकवे सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है जादू घूमने का, इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि घूमिए। और उसके अलावा घूम के बड़ी सारी कहानियों को इकट्ठा कीजिए। जब भी महफिल में बैठे, एक कहानी निकाली और सुना दी, दूसरी कहानी निकाली, इम्प्रेस कर दिया। तो फिलहाल कहानी चल रही है दारिंगबाड़ी की, जो है ओडिशा में।

घूमने की दीवानगी अगर है तो फिर समझ जाइए कि आप जैसा कोई नहीं। ये दारिंगबाड़ी भुवनेश्वर से आप बड़े आराम से सड़क मार्ग से जा सकते हैं, जो कि 247 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको लगेंगे लगभग 5 से 6 घंटे। सड़क बढ़िया है, आराम से जाइए। बस भी आपको मिल जाएगी भुवनेश्वर से, बरमुरा बस स्टैंड है, वहां से आपको बसें मिल जाएंगी। और उसके बाद जब आप वहां जाएंगे तो फिर हमारी तरह आप भी गुनगुनाएंगे कि जहां पे जंगल बोलते हैं वो है दारिंगबाड़ी, जहां झरने गाते हैं, कॉफी की खुशबू आती है। क्योंकि पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, इनमें बड़ी सारी सदियों की बातें हैं, बड़ी सारी कहानियां हैं, पुरानी सौगात है। जंगल की हर पत्ती में कुछ न कुछ ऐसी खुशबू है जिसको लेकर ही आप लौटेंगे और तस्वीर कहेंगे कि भाई दारिंगबाड़ी की क्या लाजवाब है।

दीवाना घूमेगा और कुछ नहीं करेगा, और जहाँ तक बात है जमाने की, वो इसको अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे घूमिए घूमिए, कितनी अच्छी और लाजवाब बात है। तो भाई इसी के साथ दीजिए इंदु पांडे को इजाजत फिर से मिलने के लिए, क्योंकि हम तो चले घूमने। आप सुनिए, थोड़ी देर में होंगे समाचार, और ये FM गोल्ड के साथ गीतों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संत

आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए मेरे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी कि 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, साथ ही हमें आप ईमेल भी करते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से शेर के साथ कि दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, बजेंगे आपके दिल के भितार आहिस्ता आहिस्ता। तो दिल के तार जरूर बजेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बजा रही हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी ये खूबसूरत सा गीत आप फिल्म रफू चक्कर से सुन रहे थे, जिसे गाया शैलेंद्र सिंह और कंचन ने। और आज है 21 सितंबर, यानी कि एक ऐसा दिन जो हमें शांति, संवेदना और इंसानियत की याद दिलाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज विश्व शांति दिवस है। शांति सिर्फ युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी शांति हो, बातचीत में सम्मान हो और मतभेदों में भी हमारे भीतर इंसानियत बनी रहे। और इसके साथ ही आज एक और दिवस भी है जिसे हम जानते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। अल्जाइमर हमें ये समझाता है कि जब किसी की यादें कमजोर पड़ने लगे, तब हमें उनकी याददाश्त नहीं, उनका हाथ थामना है। धैर्य और अपनापन ऐसे समय में बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। और आज ही तिथि के अनुसार श्री नारायण गुरु का समाधि दिवस भी है। उन्होंने समाज को समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इंसान की जो पहचान होती है उसकी जाति धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होनी चाहिए। आज के इन तीनों अवसरों का संदेश कहीं ना कहीं एक ही है कि दिलों में शांति, रिश्तों में संवेदना और समाज में समानता, यही एक बेहतर दुनिया की शुरुआत हो सकते हैं। और देखिए ना, इसी बात पे किसी ने एक बड़ा प्यारा सा शेर कहा है कि सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। श्रोताओं, आज है एक और खास दिन, यानी कि विश्व आभार दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि आभार जताने से सिर्फ रिश्ते नहीं, जिंदगी भी आसान हो जाती है। कभी किसी ने आपकी मदद की हो, आपका हौसला बढ़ाया हो, या मुश्किल वक्त में बस आपका हाथ थामा हो, तो आज उसे दिल से कहिए धन्यवाद। आभार के लिए बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए। सुबह की चाय, परिवार का साथ, दोस्त की मुस्कान, सेहत, काम और जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां हैं, इन सब के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। क्योंकि जब हम शिकायतों से ध्यान हटाकर आभार पर लगाते हैं, तो तनाव भी कम होता है और रिश्तों में मिठास भी बढ़ती है। साथ ही हमारा जो मन है ना, वो भी बहुत हल्का हल्का सा महसूस करता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। याद रखिए, आभार कोई औपचारिकता नहीं, जीवन को आसान और

खुशहाल बनाने की आदत है। और देखिए ना कितना प्यारा सा एक शेर है इसी भाव पर कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और आज के इस विशेष अवसर पर आपके लिए एक खास गीत।

0: रब आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा।
1: श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोंसले ने। और आइए अब बात करते हैं जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए 20वें एशियन गेम्स की, जो 4 अक्टूबर तक चलेंगे, जहां एशिया के खिलाड़ी 43 खेलों में पदकों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि एशियन गेम्स के शुरुआती दौर में ही भारतीय महिलाओं ने बता दिया है कि मुकाबला जज्बे से कैसे जीता जाता है। तो शुरुआत करते हैं शूटिंग से, जिसमें एलावेनिल वलारीवान ने कमाल करते हुए 10 मीटर एयर राइफल की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता और फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया। टीम में उनके साथ सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद भी थी, यानी भारत के शुरुआती दोनों पदक महिलाओं ने दिलाए। वहीं सुचिका तारियाल ने महिलाओं की 60 किलो ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वे इस वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। और साथ ही आपको बताते हैं कि क्रिकेट में भी शेफाली वर्मा के शानदार शतक की बदौलत भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया है और फाइनल में जगह बना ली है और एक और पदक सुनिश्चित है। साथ ही हॉकी की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने शानदार शुरुआत करी है, यानी कि जो एशियन गेम्स हैं वो अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन लेकिन लेकिन जो भारतीय बेटियाँ हैं ना, उन्होंने भाई अपने जो इरादे हैं वो साफ कर दिए हैं कि मैदान कोई भी हो, भारतीय बेटियां अनाड़ी नहीं बल्कि असली खिलाड़ी हैं। तो आइए

दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई पढ़ाई के लिए किताब चाहिए होती थी तो लाइब्रेरी तक जाना पड़ता था, लेकिन आज किताबों की एक बड़ी दुनिया आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद है। जी हाँ, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ अलग अलग विषयों की किताबें, अध्ययन सामग्री, शोध सामग्री और शैक्षणिक संसाधन एक जगह पर मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के लिए हर बार महंगी किताबें खरीदना या दूर की लाइब्रेरी जाना ज़रूरी नहीं।

विद्यार्थी अपनी जरूरत और रुचि के अनुसार सामग्री खोज सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ना जो है वो बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर नाउ से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। नाम, ईमेल, पासवर्ड और जो आपकी शैक्षणिक जानकारी जैसी सामान्य जानकारी होती है वो भरनी होती है। और इसको जब आप भरेंगे फॉर्म को तो भाई आपको बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि निःशुल्क है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि NDLI की बहुत सी सामग्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको वहां पर कुछ व्यक्तिगत सुविधाएं और कुछ लाइसेंस प्राप्त सामग्री जो है उसका अतिरिक्त एक्सेस मिल सकता है। तो इससे जो है आपकी अतिरिक्त हेल्प भी हो जाएगी। तो भाई छात्रों से तो यही कहना है कि वो इससे जरूर जुड़े, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए भाई अब हम भी अपना कदम बढ़ाते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ और खुशी खुशी चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप प्यारा सा गीत जो सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से सुन रहे थे और इसे गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। और आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सेहत की। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान है, यकीन मानिए। और इसकी शुरुआत हमारी थाली से ही हो सकती है, यानी कि सही खान पान से हम खुद में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही खान पान का मतलब महंगे या मुश्किल डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रोज के खाने में थोड़ा सा संतुलन ही तो लाना है। थाली में आपको दाल, हरी सब्जियां और जैसे दूध है और दूध से बने उत्पाद हैं, पनीर है, मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी को जगह देनी है। और साथ ही बहुत ज्यादा तला भुना मीठा और पैकेट वाला खाना जो है वो आपको कम करना है या फिर नहीं ही खाइए। और इसका जो असर है वो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मूड और एनर्जी पर भी पड़ता है। तो पेट जब हल्का होता है तो काम में भी मन लगता है और दिन भर सुस्ती भी कम महसूस होती है। और एक अच्छी बात पता है क्या, इसके लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना, आज की ही जो आपकी अगली थाली है ना उससे ही शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि स्वस्थ जीवन की जो शुरुआत है वो किसी दवा की दुकान से नहीं बल्कि हमारी रसोई और हमारी थाली से ही होती है। सही खान पान, स्वस्थ तन और सुंदर शरीर, इनका बहुत गहरा संबंध है। और यकीन मानिए जब इनका संतुलन होता है ना तो आपकी जो जिंदगी है ना उसका सफर बड़ा ही सुहाना लगता है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म से, और ख़ास अंदाज में सुना रहे थे आपको ये गीत किशोर कुमार जी। तो आइए अब बात करते हैं कुछ शादी ब्याह की, कि भाई देखिए शादी का सीज़न जो है धीरे धीरे आएगा, तो शादी के लिए कई बार जो है वो रिश्ता आता है और परिवार को भी पसंद आ जाता है, लेकिन क्या सिर्फ रिश्ता पसंद आ जाना ही काफ़ी है? जिस व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है उससे कुछ सवाल पूछने भी तो ज़रूरी होते हैं। तो भाई सवाल ऐसे हों कि सामने वाले से जब आप पूछें तो आपकी उसके साथ जो जीवन की यात्रा तय करनी है उससे संबंधित सवाल हों। तो आप शादी के बाद कहाँ और किस तरह रहना चाहते हैं, नौकरी या करियर को लेकर आपकी क्या सोच है, घर के काम और जिम्मेदारियां आप कैसे बांटेंगे, पैसों को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और बच्चों को लेकर आपकी क्या राय है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि भाई मतभेद होने पर आप बातचीत कैसे करते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि बातचीत से समझिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में परिवार रिश्ता ढूंढ सकता है लेकिन एक दूसरे को समझने और जीवन साथ बिताने का जो फैसला होता है वो आखिरकार दो लोगों का ही होता है, इसलिए भी शादी से पहले सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो झिझकिए बिल्कुल भी नहीं, सही सवाल ही रिश्ते की शुरुआत को मजबूती देता है। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि भाई आजकल की जो दुनिया है वहाँ पर जो रिश्ते हैं वो मैट्रिमोनियल साइट से कई बार जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सही सही जानकारी आपको हो। तो जो बच्चे हैं यानी भावी जो कपल होने वाले हैं, दंपति होने वाले हैं, उनके जो माता पिता हैं उनको भी आपस में मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अच्छी तरह से एक दूसरे को जानना समझना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और उसके साथ ही जो लड़का और लड़की हैं भाई उनके लिए भी यही नियम है, उनको भी भले ही वो किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं लेकिन उनको आपस में मिलकर और विभिन्न विषयों पर बातचीत करनी चाहिए कि जीवन को किस तरह से बिताना है, और अच्छी तरह से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इन सब कामों के लिए भाई कभी चाय पर भी मिल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बिल्कुल नहीं,
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: श्रोताओं, अभी आप ये प्यारा सा जो गीत है सुन रहे थे सौतन फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने। और देखिए, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने ईमेल किया है। नवीन भाटिया जी ने कार्यक्रम वो सुन रहे हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की तारीफ भी की है। साथ ही सुदर्शन मुखी जी जो हैं, उनका भी ईमेल आया है तो, और उन्होंने पूरे घर आंगन परिवार को विश्व शांति दिवस की हार्दिक बधाई भी दी है। और उन्होंने लिखा है कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आपने जो विचार है वो दिया है। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई सुदर्शन मुखी जी ने एक वाक्य, एक जो कविता जैसी जो पंक्ति है वो हमें भेजी है, तो मेरे मन में भी कुछ भाव आ रहे हैं। तो मैं बस कुछ पंक्तियां कहती हूं कि वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। कभी बेटी बनकर हंसती है, कभी माँ की आवाज है। उसके सपनों का भी आसमान है, उसकी अपनी भी कोई उड़ान है। वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, उसकी अपनी भी कुछ तो पहचान है, उसकी अपनी कुछ तो पहचान है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं सोनाली और साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम खून भरी मांग। और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को आज के घर आंगन कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबह खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर

एयर राइफल स्पर्धा में दो पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम परिवार के साथ फिल्म देखना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर फिल्म का चुनाव करते हैं कि कौन सी फिल्म देखी जाए। लेकिन एक फिल्म मेकर ऐसे रहे हैं हिंदी सिनेमा में जिनकी फिल्में देखने से पहले सोचना नहीं पड़ता था, बल्कि भरोसा हुआ करता था कि अच्छी ही होगी, पारिवारिक ही होगी। याद है वो? नहीं? चलिए उनकी एक फिल्म का गाना सुनाती हूँ, आपको याद आ जाएगा मैं किन की बात करने वाली हूँ।

मैंने कहा था ना कि उनकी फिल्में जब देखते हैं, आज भी जब उनके प्रोडक्शन की फिल्में देखते हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि पारिवारिक होगी या नहीं होगी, कैसे कैसे सीन्स होंगे उस फिल्म में, है ना। तो ये जो गाना है, इसको सुनने के बाद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं आज किन की बात करने वाली हूँ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत तैयार किया। डायरेक्टर सत्येन बोस की फिल्म है और प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या, जिनकी कंपनी का नाम है राष्ट्रीय प्रोडक्शंस, और इस कंपनी की नींव रखी थी ताराचंद बड़जात्या ने। ताराचंद साल 1914 में राजस्थान के कुचामन में जन्मे थे। कहते हैं कि ताराचंद के पिताजी चाहते थे कि ताराचंद बीए करने के बाद वकालत करें, लेकिन ताराचंद को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने मोती महल थिएटर्स में ताराचंद को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इसके बाद क्या बने वो बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले ये गाना, कहीं ना जाना।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में पिया का घर फिल्म से बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। मिलते हैं बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आज बातें हो रही हैं फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की। दोस्तों, ताराचंद बड़जात्या ने 5 साल थिएटर में बेहतरीन काम किया, खूब मेहनत की और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बारीकियां सीखी। उन्हें चेन्नई भेजा गया जहां उन्होंने शानदार काम किया। इसी बीच उनकी जान पहचान एक बड़े व्यापारी जिन्हें टाइकून कहा जाता था एसएस वासन से हुई, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली थी। इत्तेफाक से वो फ्लॉप हो गई और ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें मशवरा दिया कि आप हिंदी और जो साउथ की जो भाषाएं हैं उनको आपस में मिला क्यों नहीं देते हैं, डबिंग का काम शुरू कीजिए। अब वासन को हिंदी भाषा की जानकारी नहीं थी तो उन्होंने ताराचंद को ये जिम्मेदारी दी और देखते ही देखते काम चल पड़ा। वासन ने ताराचंद को पूरे भारत में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम सौंप दिया। ताराचंद को इसके लिए अपनी खुद की कंपनी खोलनी थी जो कि बड़ा ही रिस्क वाला काम था, लेकिन ताराचंद ने ये रिस्क लिया और शुरू की अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम रखा गया राजश्री प्रोडक्शंस।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उपहार फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो किया था ताराचंद बड़जात्या ने, फिल्म मेकर जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल में। दोस्तों, शुरुआती दौर में ताराचंद बड़जात्या की जो कंपनी है वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम किया करती थी। ताराचंद एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे और उन्होंने हमेशा बेहतरीन डिसीजन लिए।

और कामयाबी से कारोबार किया। साल 1947 में उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की नींव रखी गई थी और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें शोले, धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, विक्टोरिया नंबर 203, रोटी कपड़ा और मकान, कुली, आनंद, गुड्डी, देवदास, मुन्ना भाई MBBS और बहुत सारी फिल्में, बहुत ही जबरदस्त फिल्में रहीं जिनका बहुत नाम रहा है। वैसे उन्होंने फिल्म बनाना कब से शुरू किया ये बहुत ज़रूरी है बताना, तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक ऐसा गाना जो सबके दिल की आवाज़ है बरसों से, इस गाने को आप सुनिए, ज़रा सोचिए ना आपकी आँखियों में कौन रहता है।

0: ऐसे गाने सुनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैं खुद ही खो जाती हूँ। हाँ, आंखियों के झरोके से उनका ये गाना है जिसे आवाज़ दी है हेमलता ने और संगीत है रविंद्र जैन का। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो किया है ताराचंद बड़जात्या ने, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं। कलाकार बेमिसाल में बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आज बातें हो रही हैं फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की। दोस्तों, साल 1960 में ताराचंद बड़जात्या ने फिल्म निर्माण के बारे में सोचा। उनका ये प्रयास भी सफल रहा। उनकी कंपनी की पहली फिल्म थी आरती, ये सुपरहिट रही। साल 1964 में उनकी दूसरी फिल्म आई दोस्ती, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे कि ये ब्लॉकबस्टर थी।

इसे 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले। इसके बाद की तो कहानी बहुत बहुत कामयाबी वाली है। बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, चितचोर, आंखियों के झरोके से, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, गीत गाता चल, हम आपके हैं कौन, जीवन मृत्यु, नदिया के पार, पिया का घर, सौदागर आदि। इस दौर में भी, यहाँ आंजी, इस दौर में भी उनकी कंपनी बहुत ही शानदार फिल्में बना रही है और कामयाब फिल्में बना रही है।

दोस्तों, मिसाल तो ताराचंद बड़जात्या थे, जिन्होंने बहुत सारे कलाकारों को काम दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रोशन का कंपोज किया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना आरती फिल्म से। प्रोड्यूसर के तौर पर ताराचंद बड़जात्या की ये पहली फिल्म थी और बेहद कामयाब रही। दोस्तों, ताराचंद बड़जात्या को सेठ जी और युग पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। फिल्म निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा के लिए। ताराचंद साउथ सिनेमा को हिंदी सिनेमा के करीब लेकर आए। उन्होंने राखी, सचिन और जरीना वहाब जैसे कलाकारों को अपनी फिल्मों में काम देकर सिनेमा से जोड़ा। उन्होंने रविंद्र जैन और राम लक्ष्मण जैसे म्यूजिक कंपोजर्स को भी मौका दिया और उनकी फिल्में कभी मोहताज नहीं रहीं बड़े बड़े एक्टर्स की। उन्हें जहां जो एक्टर पसंद आया, जिसका काम अच्छा लगा, चाहे वो बहुत मशहूर रहा हो या फिर एक आम कलाकार रहा हो, उन्होंने काम दिया लीड एक्टर के तौर पर, उसे लॉन्च किया। दोस्तों, उनका स्टूडियो आज भी बेहतरीन पारिवारिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी

को अपने काम के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। आज यानी 21 सितंबर 1992 को ताराचंद बड़जात्या ने दुनिया को अलविदा कहा था, इसलिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम में उन्हें याद किया। फिलहाल तो मैं आपको सुनाती हूँ उनकी कंपनी की डायरेक्ट की पहली फिल्म। वैसे डायरेक्टर इस फिल्म के रहे हैं सूरज बड़जात्या, लेकिन उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट मिला था ताराचंद बड़जात्या का।

मैंने प्यार के फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना, और इस फिल्म का प्रोडक्शन किया था ताराचंद बड़जात्या ने और इसे डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। जब उन्होंने अपने परिवार के सामने कहा कि मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है तो सबने मना कर दिया था, लेकिन ताराचंद ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि नहीं, आप करिए निर्देशन, और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम बस यहीं पर, लेकिन हाँ, 2:30 बजे मैं फिर से मिलूंगी आपसे। 2:30 पर इंतजार कीजिएगा, जुड़े रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ।

डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। जब उन्होंने अपने परिवार के सामने कहा कि मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है तो सबने मना कर दिया था, लेकिन ताराचंद ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि नहीं, आप करिए निर्देशन, और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम बस यहीं पर, लेकिन हाँ, 2:30 बजे मैं फिर से मिलूंगी आपसे। 2:30 पर इंतजार कीजिएगा, जुड़े रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ।

0: मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने नई दिल्ली में 7वां नेशनल फॉर्मुलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाह मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लिमानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। भारत अब तक 6 तमगे हासिल कर चुका है। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि फार्माकोविजिलेंस यानी दवाओं के महफूज होने और अद्वियात की निगरानी के शोबे में भारत का सफर गुज़श्ता वर्षों में खुद इन्हिसारी की एक काबिल कदर मिसाल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 7वें नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के रस्म इजरा के मौके पर यह बात कही। मोहतरमा पटेल ने कहा कि सरदस्त मुल्क में दवाओं के नामवाफिक असरात की निगरानी करने वाले 1100 से ज्यादा मरकज काम कर रहे हैं और सरकार ये तादाद प्राइमरी हेल्थ सहूलत की सतह तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि मुल्क अब आलमी सेहत तंजीम के मरीजों से मुतालिक सेफ्टी डेटाबेस के लिए फार्माकोविजिलेंस डेटा फराहम करता है। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने इस बात को उजागर किया कि WHO को यह डेटा फराहम करने के एतबार से भारत अब 8वें मकाम पर आ गया है, जबकि 2014 में 123वीं पोजीशन पर था। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के 25 ममालिक भारत की फार्माकोपिया यानी किताबुल अदविया को तस्लीम और कबूल करते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वह अपने तौर पर किसी भी तरह की दवा लेने से गुरेज करें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा खाएं और किसी भी दवा के अचानक या गैर मुतवक्के साइड इफेक्ट्स को भी नजरअंदाज न करें। आज बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की हालिया रायजनी पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुबान सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जनाब अंसारी ने 2019 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू फिरका वारियत से बड़ा खतरा हिंदू कौम परस्ती को मानते थे। जनाब त्रिवेदी ने मुबीना तौर पर कहा कि आज कांग्रेस बाएं बाजू की जानिब झुक गई है और कम्युनिस्ट नजरियात से बहुत ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक नायब सदर की रायजनी कांग्रेस के नजरिए की अक्कासी करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। वो कल केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबी को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड्स अदा करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड्स हर साल इत्तलातो नशरियात की वजारत के तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अदा किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। इशिका की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज बठिंडा में तलवांडी साबू में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे मरहले का आगाज करेंगे। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी उनके हमराह होंगे। इस यात्रा में उन 3 अहम चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिनका इस वक्त पंजाब को सामना है। ये हैं मनुष्यात की बढ़ती लानत, अमन कानून की खराब होती सूरत हाल और हुक्मरानी की सतह पर बदउनवानी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र

0: मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सम्त लगातार काम कर रही है। अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि इस नजरिए को राम मंदिर और तहजीबी बेदारी के अहिया के जरिए किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: साल 2014 में मरकज में सरकार बदलने और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तश्कील के बाद भगवान राम के शहर अयोध्या की कायापलट ने रफ्तार पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीमुशान राम मंदिर की तामीर के राह हमवार हुई और दीप उत्सव तकरीबात जैसे इकदाम से अयोध्या की खोई हुई सकाफती और मजहबी शान और शौकत बहाल करने का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान राम के इस शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा कि अगर भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो उन्हें अपने अंदर भगवान राम के अवतार को जगाना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
1: आज अयोध्या महज आस्था का एक मरकज नहीं बल्कि मजहबी सियाहती कनेक्टिविटी और रोजगार के मौकों के शोबे में नए पैमाने तय कर रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदे की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई नतायज के मुताबिक मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में रूस की हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल की हुई है। पार्टी को तकरीबन 57.5% वोट मिले हैं। हतमी नतायज 25 सितंबर को आने का इम्कान है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने इससे पहले इंतखाबात में 324 सीटें जीती थीं। ये इंतखाबात यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के दरमियान हो रहे हैं और कीव की जानिब से रात भर का एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी एहलकारों ने कहा है कि 1900 से ज्यादा ड्रोन इस हमले में शामिल थे जिसमें तकरीबन 2 अफराद की मौत हो गई और तेल की एक रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज अंडमान निकोबार जजायर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तीसरा तमगा हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लो ने चांदी का जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। हिमांशु ढिल्लो पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल पर मुश्तमिल भारतीय टीम दूसरे मकाम पर रही है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने खवातीन के 60 किलोग्राम रिवायती जुमरे के सेमीफाइनल में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने अब तक 6 तमगे जीते हैं। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीतने पर सुचिका तरियाल को मुबारकबाद दी है। उन्होंने रुद्रांश पाटिल पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों को भी मुबारकबाद पेश की है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने नई दिल्ली में 7वां नेशनल फॉर्मुलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लिमानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदे। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट

0: पर नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
3: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
4: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा

0: और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप सभी का स्वागत है संगीत.com में। और दोस्तों, तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वो राग दीपक गाते थे तो बुझे हुए दिए अपने आप जल उठते थे। साइंटिफिकली देखें तो साउंड वाइब्रेशंस में इतनी ऊर्जा होती है कि वो किसी कांच को भी तोड़ सकती हैं। तो संभव है तानसेन के जो सुर थे उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती थी जिनकी वजह से गर्म हवा और घर्षण से दिए जल जाते थे। ये होती है संगीत की ताकत, समझे? चलिए, संगीत का एक रंग तो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा रंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद अंग अंग खिल जाएगा खुशी के मारे। सुनिए ये गाना।

खटी पतंग फिल्म का ये गाना किशोरदा की आवाज में, इसका संगीत दिया है आर डी बर्मन साहब ने, अभी आपने सुना। बिल्कुल दोस्तों, 1970 में एक बंगाली फिल्म आई थी राजकुमारी, जिसमें एक गाना था आज गुनगुन कुंजे। ये गाना आशा भोसले की आवाज में था। उसी धुन को पंचम दा ने हिंदी में रीमेक कर प्यार दीवाना मस्ताना, ये जो गाना बिल्कुल अभी आपने सुना, ये बना दिया। हिंदी वर्जन इतना ज्यादा पॉपुलर रहा कि लोग असली गाने को शायद ही याद करते होंगे। बस पंचम दा का जादू ऐसा ही होता है भाई। एक और गाना बहुत ही शानदार, कहीं ना जाना, सुनते रहना आकाशवाणी फिल्म गोल्ड।

0: हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना है मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ में. बहुत खूबसूरत गाना है ये. और भी बहुत सारे गाने मैं आपको सुनाऊंगी. सुनते रहिए आकाशवाणी फिल्म गोल्ड.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम.
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं.
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान.
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार.
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक. मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं.
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी.
0: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. शबनम के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है जी हाँ संगीत.com. दोस्तों संगीत.com में अब आप सुनने वाले हैं एक ऐसा गाना जिसे कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ये गीत जो है ना इसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने. जैसे कि कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में ऑर्केस्ट्रा की बहुत ही खास भूमिका हुआ करती थी. वो अपनी टीम के साथ अक्सर बहुत सारे म्यूजिशियंस को बिठाया करते थे. अब जो गाना आप सुनेंगे ये पत्थर के सनम फिल्म से है और इसमें शुरुआत में धीमी आवाज में वायलिन बजता है. इस गाने की रिकॉर्डिंग में 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 35 वायलिन बजाए जाते हैं महबूब स्टूडियो में. वैसे ये जो गाना मैं आपको सुना रही हूँ ना सुनाने वाली हूँ इस गाने के जो बोल हैं वो भी महबूब वाले हैं. जी हाँ चलिए सुनाती हूँ आपको.

लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना पत्थर के सनम फिल्म से, और इस गाने में मुकेश जी का एक अलग ही अंदाज सुनाई देता है। धीर गंभीर गानों के लिए मशहूर मुकेश जी का ये रोमांटिक वर्जन है। गाने की रिकॉर्डिंग के समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया है, मुकेश से एक खास रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी आवाज को ज्यादा भारी मत रखना, बल्कि धीमी सी और मखमली सी आपको आवाज रखनी है, क्योंकि जो गाने का मूड है ना वो कुछ ऐसा ही है। मुकेश जी ने इस गाने के साथ पूरा न्याय किया और अपनी जानी पहचानी शैली से हटकर एक बेहद सॉफ्ट और लो पिच मेलोडी दी। लता जी के साथ मिलकर इस गाने का परफेक्ट वर्जन तैयार किया। एक और परफेक्ट वाला गाना है, किसकी आवाज में? किशोरदा की आवाज में।

मेरे जीवन साथी फिल्म का गाना आपको सुनाया बिल्कुल अभी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1972 में, किशोरदा की आवाज थी। इस गाने को तो आपने सुन लिया, आपको बहुत पसंद आया ये गाना। अब अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो गाना बहुत ही हटके है। वो गाना है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, जो कि 1992 में आई थी। और ये जो गाना है ये पहला हिंदी गाना है जो कि स्लो मोशन में शूट किया गया। इसे कोरियोग्राफ किया है फराह खान ने साल 1992 में जब ये फिल्म रिलीज हुई। और ये गाना बेहद कामयाब रहा, तो एक क्रांतिकारी गाना साबित हुआ। जी हाँ, इस फिल्म का जो संगीत है वो तैयार किया था जतिन ललित ने, और इस फिल्म के गीत लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। इस एल्बम के लिए मजरू सुल्तानपुरी को फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। तो चलिए आपको सुनाती हूँ ये वाला गाना, आपको कहीं नहीं है जाना।

0: और ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में, साथ में साधना सरगम की आवाज़ भी है। बहुत ही खूबसूरत ये गाना है और 2.5 मिलियन यूनिट्स इसके बिके थे भारत में। जतिन ललित के करियर को संवारने में इस एल्बम का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब समाचार सुनते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौता

0: सप्ताह दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा के सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुन टो से हार के बाद कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said the free trade agreement between India and New Zealand will come into force on the 20th of next month on the occasion of Dussehra festival. Addressing

सितंबर की धूप में आज एक अलग सी चमक है। हवा में जैसे मौसम के बदलने की आहट हो और इस सुहानी दोपहर में मन भी कुछ अधिक प्रसन्न और कुछ अधिक उत्सुक है। ऋतु अपनी चाल बदल रही है और शायद इसी के साथ दिन में भी एक नई ताजगी उतर आई है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यहाँ मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूँ, तो क्यों ना इस दोपहर को कुछ सुंदर धुनों के नाम करें। आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और संगीत की मधुर संगत के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम मन भावन। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और अपने संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो वो भी अपने मनपसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी इन भावनाओं को हम कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। अपने गीत के साथ अपना नाम, शहर और संदेश हमें भेजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप संदेश भेज दीजिए 9868886853 पर। हर गीत अपने साथ कितनी ही यादें जोड़ता है ना। कभी कोई चेहरा, कभी कोई मौसम, कभी कोई बीता हुआ दिन, तो क्या पता आज का पहला गीत आपकी भी ऐसी यादों का दरवाजा खोल दे। आइए सुनते हैं।

श्रद्धानंद आर्य, इनके साथ हैं अभियानंद और परमानंद। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा और इकबाल। इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी शायरी भी लिख भेजी है, आइए श्रोताओं आपको जरा सुनाएं। तुमसे बिछड़ कर भी तुम्हारे हैं, हम तो एक नदी के दो किनारे हैं। तन्हाई में घुट के मर ही जाते हम, अच्छा है साथ यादों के सहारे हैं। हंसते मुस्कुराते तुमसे ही बतियाते, अब तो दीवारों से हाल हमारे हैं। चांद ने देखा कभी तारों में ढूंढा, ना पूछ कैसे हमने दिन गुजारे हैं। ये फिजा, ये हवा, ये मौसम, ये घटा, मेरे साथ सभी तेरा नाम पुकारे। वाह, बहुत ही खूब लिख भेजा है आपने। अगला संदेश पढ़ते हैं श्रोताओं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु संस्कृति और पौरुष का मिला है हमें। गंज डोंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान फैजान अनु ने हमें लिख भेजा है अपना पसंद का गीत। और बलीमारन से नवाब अहमद भारती, शबाना अरहान और सूफिया, आइए श्रोताओं इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये रोमांचक गीत।

आइए श्रोताओं, फिर रुख करें अब आपके संदेशों का। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुंभार का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। दुगाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेर बिहार से हमारे साथ हैं अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखे लाल हमारे साथ जुड़े हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा जी नई दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, इन्होंने भी हमें अपना पसंद का गाना लिख भेजा है। नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश, चंद्र, डांगी, आइए श्रोताओं इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

कुछ गीत आपके और फिर अब कुछ बातें आपकी और इसी के साथ आगे बढ़ेगा हमारा मन भावन। आइए देखें, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मेघा और चंडीगढ़ से राहुल रचिता किशोरधान, इन सभी ने हमें संदेश भेजा है। लियाकत गुलफाम, शारू और नदीम ने हमें लोनी गाजियाबाद से संदेश भेजा है। पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर जसी ये भी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी लिख रहे हैं हमें श्री गंगानगर राजस्थान से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, इनके साथ हैं पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। मोहम्मद जाकिद मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबनाज, आलिब्सपा, अयान मंसूरी, यश और प्यारा नवासा नुमेर मंसूरी, ये लिख रहे हैं हमें मुंगीसापुर से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल सभी हमारे साथ जुड़ के सुन रहे हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब समय है फिर आपके भेजे हुए संदेश देखने का। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफार खत्री का। ये लिख रहे हैं हमें कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ के साथ और खरगोन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य लाड़ो कोयल, पापा जी नायक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगु भाविक सिक्का भी हमें सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महेंद्र पार्क से हमारे साथ हैं कैलाश, दिनेश, कौरांश, रुक्मणी और इन्होंने भी अपना गीत लिख भेजा है। खानपुर दिल्ली से राम पुकार जरीवाला और सोनू जरीवाला हमारे साथ हैं। किशन सपकाल, आशा और विशाल हमें सुन रहे हैं शास्त्री नगर से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मन भावन कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं तुरंत संगीत की इसी प्यारी रवानी के साथ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त।

0: पर।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में आप सभी के मन पसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अभी भी नहीं लिख के भेजा है तो जल्द ही हमें लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर, और भेज दीजिए हमें ईमेल माध्यम से fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और अगर आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहते हैं तो 9868886753 यानी 9868886753 पर संदेश भेज सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, अविलंब उन सुरों की ओर बढ़ें जो आपके भेजे खतों से हम टटोल कर लाए हैं। अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा जी की फरमाइश पर। आइए सुनें।

आइए श्रोताओं, अब फिर पढ़ते हैं आपके संदेश और देखते हैं किसने लिखा है, कहां से और कौन सा गीत भेजा है। जनकपुरी सहारनपुर दिल्ली से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस ने हमें संदेश भेजा है। निशीत परगीर जुड़े हैं हमारे साथ बरवानी मध्य प्रदेश से। गांव फारसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह होरा और भारत भूषण श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नाटका के महालिंगपुर से हमारे साथ हैं आइनुद्दीन बनहट्टी, मुमताज, रियाज, रुबीना, जुनैद, अंजुम, मारिया, हुमेरा सलमान और शीमा। और अब सुनते हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी की फरमाइश पर ये गीत।

आई श्रोताओं, अब कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले आपके कुछ और संदेश भी पढ़ लें। सलीम अख्तर रेशमा बेगम हमें लिख रहे हैं अलीगढ़ से, भवरपुर बसना से चंपा देवांगन राधेश्याम जी और गोविंद जी के साथ हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, इनके साथ हैं श्वेता, किशु, अर्णव और सत्यमानंद। बोहरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी जी इनके साथ हैं। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा, साइमा, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है दिलीप डाबरिया और शानू जी, ये सुन रहे हैं हमें मादीपुर कॉलोनी दिल्ली से। भगवती सुन रहे हैं हमें नई दिल्ली से। और अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा जी का। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा सुन रहे हैं हमें छत्तीसगढ़ पलारी से। दिलीप, महेश, शेखर और रीना देवी, नेहा कुमारी, सरोज, स्वप्ना, सरजाल, अमन, आयुष, ये सब हमें सुन रहे हैं। कहाँ से सुन रहे हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पे एक और गीत, पर उससे पहले आज का संगीत सफर आपकी पसंद, आपकी फरमाइशों और आपकी बातों के साथ ही पूरा हुआ। आपका हर संदेश हमारे लिए इस कार्यक्रम का एक अपना सा हिस्सा है। यदि समय के अभाव में आज आपकी

फरमाइश या आपका संदेश कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो सका हो तो कृपया इसे हमारी अनदेखी ना समझिएगा। आपकी पसंद हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है और अवसर मिलते ही वो फिर हमारे संगीत का हिस्सा बनेगी। तो अपनी पसंद यूं ही हम तक भेजते रहिए। मिलते हैं समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से सेवाओं, निवेश, पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच

0: लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं। ये संबंध व्यापार और निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्यों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। बठिंडा के तलवंडी में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की संभावना है। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंच गए हैं। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालन तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं और सुरों के सिलसिले को जारी रखते हैं। आइए सुने ये गीत कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले के सुरों में सजा, ओपी नैयर का संगीत और एसएच बिहारी के बोल थे।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं एक और कर्णप्रिय गीत। आरजू फिल्म से लता मंगेशकर के सुर हैं, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया और हसरत जयपुरी द्वारा लिखा है ये गीत।

श्रोताओं, अब से कुछ ही समय में सुनिएगा रोजगार समाचार और फिर 5:10 पर मैं मिलूंगी फिर आपसे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, एक पद MBA कृषि व्यवसाय, दो पद तथा वित्त एवं लेखांकन, एक पद। इन पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के संतोषजनक कार्य निष्पादन या संस्थान की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र, सभी संबंधित प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों सहित संस्थान के पते पर पंजीकृत डाक से भेजें। योग्यता, मानदेय तथा नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी संस्थान की इस वेबसाइट पर www.dnsricmpatna.org। भारी उद्योग मंत्रालय इस विवरण के अनुसार संविदात्मक आधार पर सलाहकार Grade 1 के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या 1 है। समेकित पारिश्रमिक 1,00,000 रूपए प्रति माह रहेगा। संलग्नता की अवधि रहेगी 2 साल, जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक योग्यताओं में शामिल हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य में CA, ICWA, CS, MBA अथवा वाणिज्य में मास्टर्स डिग्री। संलग्नता की विस्तृत शर्तों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है heavyindustries.gov.in। भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। व्यापार वित्त अधिकारी, कुल पद हैं 14। व्यापार वित्त अधिकारी IBG के लिए कुल पद हैं 21। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश, शुल्क के भुगतान के लिए निर्देश, दस्तावेज कैसे अपलोड करें, चयन प्रक्रिया, सामान्य जानकारी आदि के लिए विवरण संबंधित विज्ञापनों में दिए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers/current-openings। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया कॉन्टेक्टस या पोस्ट योर क्वेरी के लिंक के माध्यम से लिखें, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास। जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स। खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी एक नजर डालेंगे। और इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि और आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त होस्ट सायरा मुस्तफा।
4: यस, दोस्त होस्ट को होस्ट एंड ऑफ कोर्स नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड ऑफ कोर्स हस्बी दस्तूर लाते हैं हम आपके लिए ताजा तरीन खबरें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, दैट इज वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट प्रॉब्ली डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द न्यूज बुलेटिन, जो हार्ड न्यूज नहीं होती बट बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। सो दैट इज वाई वी ब्रिंग देम टू यू इन आवर शो परिक्रमा। एंड विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द शो दिव्या।
3: बिल्कुल,
4: लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज्ड कम्स इनटू फोर्स ऑन 20th October, सेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल।
3: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया

0: प्रक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण।
1: बीजेपी सेज कांग्रेस इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कंडेम्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारीज रिमार्क्स।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
1: रशियाज रूलिंग यूनाइटेड रशिया पार्टी टेक्स लीड इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन।
0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना।
1: एंड इंडियन शूटर्स विन 3 मेडल्स इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल, टेकिंग टोटल टैली टू 6 एट एशियन गेम्स इन जापान। And yes, as always, we start our show with our segment Dateline India, in which we take a look at some important developments or look at some important days. And today, apart from talking about the International Day of Peace, we'll also have another interesting topic, jiski baad mein hum charcha karenge. But first, let's talk about International Day of Peace.
0: बिल्कुल सायरा, जब हम पीस की बात करते हैं तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है एक तरीके से, और हम हमारे यहाँ जो वेद हैं उनमें ये पहले से ही लिखा गया है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति शांति शांति। तो जो दुनिया आज शांति की बात कर रही है, हमने बहुत वर्षों पहले उस शांति के साथ में हम जिए हैं, और भारत को सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री कहा भी जाता है। इसका मतलब हुआ, जो हमने आपके सामने पढ़ा उसका था, कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सभी का जीवन मंगलमय हो और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसमें किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या धर्म या जाति की बात नहीं की जा रही, बल्कि सब की बात की जा रही, यानी कि ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है। तो हजारों वर्ष पहले भारत की धरती से निकली ये प्रार्थना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी, और शायद पहले से कहीं और ज्यादा है आज के समय में, क्योंकि आज जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रही है, तब हमारे सामने युद्धों और संघर्षों की एक ऐसी तस्वीर है जिन्हें देख करके कई बार सायरा मन ठहर सा जाता है, सिहर सा उठता है। जब हम देखते हैं इतनी जगहों पर जो युद्ध चल रहे हैं और जिसमें मनुष्य किस तरीके से करा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मतलब किस स्थिति में हम पहुंच गए, तो ऐसे में शांति की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: That's right. In fact, it is rightly said that those who hold no weapons, they often pay the highest price for violence, because people who are actually getting affected by the violence that is happening, they were not the ones, you know, the common people never held up guns against each other. So well, peace is probably just one word, but what a vast world it contains, and what better way Divya to begin the International Day of Peace than with these timeless words.

0: And in fact, Divya, aajkal again, in the age of social media, we have seen that rage has become so much, in people.
1: मतलब इतना संघर्ष है ना अभी कि ये संघर्ष सिर्फ विश्व लेवल पे ही नहीं चल रहा है, ये व्यक्ति के भीतर भी चल रहा है.
0: Absolutely.
1: और हर व्यक्ति परेशान है अपने आप में.
0: Yes.
1: कहीं ना कहीं आप रोड पे जाते होंगे, जरा सी खटपट में लोग तुरंत से मारपीट पे आ जाते हैं, इतने रोड रेज हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं.
0: Yeah.
1: और तो मतलब कहीं ना कहीं ये माहौल कुछ इस तरीके का चल रहा है.
0: एग्जैक्टली. एंड आई थिंक द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज दैट हम लोग ने एक दूसरे से बातें करना छोड़ दी हैं. वी आर जस्ट इंटरैक्टिंग ऑन सोशल मीडिया एंड दैट इज नॉट इवन कॉल्ड इंटरैक्शन. हाफ ऑफ द टाइम पीपल हु आर एंगेज्ड दे आर जस्ट फाइटिंग टू अ फेसलेस एंटिटी के एक कमेंट आता है जिसमें वो उसको गालियां देता है, दूसरा देता है. सो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट इज बिल्डिंग अप.
1: कहीं ना कहीं ये चेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन गया है इसीलिए क्योंकि हम अब जैसे पहले शुरुआत होती थी दिन की, पहले लोग अपने परिवार के साथ बैठते थे, वहां बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते थे.
0: Yes.
1: तो अब वो नहीं है, गिले शिकवे लोग अपने दिलों के अंदर लेकर के घूमते हैं.
0: दैट्स राइट. इन फैक्ट बट यू नो एज महात्मा गांधी फेमसली सेड दैट बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. सो इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग अदर्स, एटलीस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट विद यू योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल थिंग, कि अगर सोशल मीडिया पर किसी ने आपको बुरा भला कहा है तो यू जस्ट डोंट रिएक्ट, यू नो, बिकॉज इट्स जस्ट अ वर्चुअल मीडिया. द पर्सन ऑन द अदर साइड इज जस्ट अ फेसलेस एंटिटी. सो इट्स best not to give any reactions on social media. In fact, there are so many people who are engaged to elicit, you know, the rage. So, aap unko kyun hi feed kare, you know. So, it's best to ignore and don't react.
1: तो शांति की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की थी और बाद में 21 सितंबर को अहिंसा और युद्ध विराम के दिन के तौर पर तय किया गया. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पारंपरिक रूप से पीस बेल यानी शांति घंटी बजाई जाती है जो शांति के लिए मानवता की सार्वभौमिक चाहत का एक सुंदर प्रतीक है.
0: And perhaps no country understands the language of peace quite like India's civilizational heritage. Whether it is the Jain philosophy principle of ahimsa, the Buddha's message of compassion, or the teachings of Sikhism of equality and brotherhood, or Mahatma Gandhi's unwavering commitment to non-violence, India has carried the spirit of peaceful coexistence across generations.
1: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. सो सारे मजहब जो है बात करते हैं शांति की, अहिंसा की, प्रेम की, भाईचारे की, सद्भाव की. और भारत की यही प्राचीन चेतना हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है. और ये संसार एक परिवार है और जब परिवार का कोई सदस्य पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा हमसे अलग कैसे हो सकती है.
0: राइट.
1: आज का दिन युद्ध की विभीषिका को स्मरण करने से आगे बढ़कर शांति की उस दुनिया की कल्पना और उसके निर्माण का संकल्प लेने का दिन है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल एक मंत्र ही न बनकर रहे बल्कि हर इंसान के जीवन की एक तरीके से
0: सच्चाई
1: बन जाए.
0: That's very true. And we come to our second topic, which is very interesting, especially these days. A lot of youth and Gen Zs are probably after
1: definitely.
0: That topic, that why are we so afraid of not having our life figured out?
1: बिल्कुल सायरा, हम लोग जब बचपन में थे तो अक्सर हमसे पूछा जाता था कि बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हैं. और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे सवाल थोड़े से बदल गए कि तुम्हारा करियर प्लान क्या है, अब क्या सोच रहे हो. करियर तय हो गया तो अगला सवाल होता है कि शादी कब कर रहे हो.
0: शादी हो जाती है तो बच्चा कब.
1: और जब एक बच्चा हो जाता है कहते हैं अरे दूसरा बच्चा कब आ रहा है.
0: That's right.
1: तो मतलब एक्चुअली सोसाइटी ने कहीं ना कहीं एक ना ढर्रा बनाया हुआ, एक पैटर्न बनाया हुआ. उनको लगता है कि अगर इसी पैटर्न में किसी की लाइफ चल रही है तो वो सही लाइफ है. उनके अकॉर्डिंग मतलब एक सिविलाइज तभी है जब इंसान की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर और बच्चे हो जाएं और फिर वो अपने परिवार में सुख से रह रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग बेहतर जिंदगी है.
0: एंड अगर लेकिन दोज हु हैव लिव्ड लाइफ, लेट्स आस्क देम, यू नो, डिड दे हैव लाइफ फिगर्ड आउट. एवरीबॉडी वुड से कि भाई लाइफ को फिगर आउट करने की जरूरत क्या है.
1: बिल्कुल नहीं है.
0: यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट, लिव टू द फुलेस्ट इन ईच मोमेंट यू हैव. ऑफकोर्स वी आर नॉट टेलिंग यू टू जस्ट बी हे वायर एंड नॉट हैव एनी प्लानिंग इन योर हेड अबाउट योर करियर्स और व्हाटएवर. दैट इज ऑफकोर्स देयर, बट यू डोंट हैव टू फ्रेट ओवर इट बिकॉज देर आर सम थिंग्स दैट आर जस्ट नॉट इन आवर कंट्रोल. और जो चीजें अपने कंट्रोल में ना हो उनके ऊपर एनर्जी स्पेंड करने से क्या ही फायदा.
1: और फ्रस्ट्रेशन आता है बल्कि जब वो मतलब हम पता है क्या, अभी हम जो जिस टाइम में चल रहे हैं, हम हर चीज को ना अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये कंट्रोल ही हमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की तरफ

0: जाता है. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे लाइफ को किसी सांचे तय सांचे के अनुसार चलना चाहिए.
1: yes, yes.
0: क्योंकि हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही चलनी चाहिए जिंदगी. लेकिन जिंदगी की खूबसूरती जो है इसमें है कि इसकी कहानी पहले से लिखी हुई नहीं होती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एंड इनफैक्ट वन कैन से दैट इनफैक्ट लाइफ इज लेस ऑफ अ सोशल क्लॉक सोसाइटल क्लॉक, इट्स मोर ऑफ एन एंडलेस चेकलिस्ट. तो वो एंडलेस है, यू नो, आप चेक करते जाइए ओके डन दिस बट यू नो सम न्यू थिंग्स विल स्टार्ट यू नो कीप क्रॉपिंग अप.
0: कि जिंदगी को एक तय समय में पूरा फिगर आउट कर ही लिया जाए या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होना, रास्ता बदलना, खुद को दोबारा डिस्कवर करना भी जिंदगी का हिस्सा है. और खुद को दूसरों की टाइमलाइन से प्लीज कंपेयर करना बंद कीजिए. और पूरी जिंदगी के जवाब मत ढूंढो, बस जिंदगी को जियो, जिंदगी जीने के लिए है.
1: दैट्स राइट. एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देयर सीम्स टू बी अ न्यू माइलस्टोन दैट इज वेटिंग फॉर अस, अनदर एक्सपेक्टेशन टू फुलफिल. दूसरों की नहीं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, यू नो यू हैव अ सर्टेन गोल दैट ओके नाउ आई विल मेक good healthier choices in life, you know, so that is something that I have to fulfill for myself, not to please others. But again, in that you can say don't fret over it, don't spend too much of your mental energy that you exhaust yourself. And well, almost by the age of 20-25 it feels like that we are expected to have a degree, a good job, some savings in our you know bank account, maybe a fulfilling relationship, a marriage plan, of course a 5-year plan for the next 10 years. But come on Divya, you and I both of us are smiling that you know probably we have lived through that and we all know that life always doesn't go as we probably planned.
0: मैं कैसे हमारी उम्र तक शायद ये पता चल जाता है.
1: That's true. And especially so, now in fact you know in the age of social media बहुत सी चीजें pros and cons हर चीज के होते हैं. But I too follow a lot of inspirational stories of people and there are so many inspirational people out there who put out their life stories over there.
0: Bilkul.
1: You know maybe a 50-year-old man and a woman who are thinking that okay it's just a number and let me just wipe out all the trauma that
0: अभी
1: I had.
0: मैं आजकल देख रही हूँ जैसे सोशल मीडिया खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्पेशली खोलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कोई अपना कैरावा लेकर के निकल गया है पहाड़ों पर, वहां वो चाय बना रहे हैं और जब लोग जो दूसरे लोग हैं ना वो जब वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते, हम क्यों नहीं कर पा रहे. अब वहां से शुरू होती है तुलना और जो तुलना होती है, मतलब कोई स्टार्टअप कर रहा है अपना, कोई यूरोप घूम रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, तो हम जब मॉर्निंग में ही अपना फोन उठाते हैं सबसे पहले हमारे अंदर खुद को लेकर के ना कंपैरिजन आ जाता है कि इतने लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम कैसे करें, हम क्या करें. और यही जो तुलना है वो कुंठा लेकर आती है इंसान के अंदर, कुंठा से असंतोष आता है और फिर हम एक लग जाते हैं एक ऐसी दौड़ में जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों.
1: दैट्स वेरी राइट. इनफैक्ट डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन ऑल्सो ओवर मार्क्स. यू वॉन्ट बिलीव दैट यू नो व्हेन माय डॉटर गोज टू स्कूल सो यू नो द टीचर वॉज कंप्लेनिंग कि इनका वर्क नहीं हुआ या नोटबुक नहीं. आई सेड दीस आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम नॉट अ पेरेंट हु विल पुश माय चाइल्ड टू एक्सेल इन मार्क्स. आई सेंड माय चाइल्ड टू अ स्कूल सो दैट यू नो ही और शी लर्न्स social skills, she has a good time, she interacts with people of her age of different temperaments, तो उसको टैकल करना चाहिए. बिकॉज इवेंचुअली यू टेल मी, यू एंड आई वी आर सिटिंग हियर, आज तक हम लोग की मार्कशीट सिवाय डेट ऑफ बर्थ के किसी और चीज के लिए काम नहीं आई. नोबडी लुक्स एट द मार्कशीट वेदर वी हैव गॉट 50% और 99.98%.
0: और वो हमने ऐसे ही किया है. इसके लिए एक है कि हम इक्कीगाई यानी कि जीवन जीने का मकसद, और मकसद हमेशा बदलते रहते हैं. क्यों सायरा, हम जब बचपन में थे तब हमारे मकसद कुछ और थे, आज हमारे मकसद कुछ और होते हैं. और जब हमें कुछ अच्छा लगने लगता है, अब जैसे हमें रेडियो पर बोलना बहुत अच्छा लगता है तो हम धीरे धीरे जब बोलते रहे तो इसी से कहीं ना कहीं हम इसमें माहिर होते गए और आज हमारा ये प्रोफेशन बन गया जिसे हम बहुत ज्यादा रुचि से करते हैं.
1: दैट्स राइट. And yes, of course, with that we should wrap up.
0: और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने बहुत देर से शुरुआत की है तो मान कौर को याद करें. उन्होंने 93 साल की उम्र में एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया था. हाँ 93, तो हो सकता है कि आप देर से नहीं हैं, हो सकता है कि आप बस अपने समय पर शुरुआत कर रहे हों. जिंदगी किसी ढरे से नहीं चलती है या फिर समय सीमा से नहीं चलती है. सबकी जिंदगी का समय अलग अलग है.
1: yes.
0: सबकी लाइफ में अलग अलग आता है टाइम. जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें एक तय उम्र तक सारे जवाब लिख देने हैं.
1: That's right. So stop demanding a lifetime plan from yourself because perhaps the goal was never to have life completely figured out. Perhaps the goal is to keep figuring it out.

0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
1: लेट्स गो टू राजस्थान फर्स्ट।
0: जी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर आज राजस्थान में लोक आस्था के दो प्रमुख केंद्र जैसलमेर का रामदेवरा और नागौर का खरनाल श्रद्धालुओं से गुलजार है। प्रदेश भर में लोक देवता बाबा रामदेव जी और वीर तेजाजी महाराज के मेलों की धूम है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे 9 दिवसीय वार्षिक मेले का आज अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।

0: लोक देवता बाबा रामदेव को राजस्थान के जनमानस में सामाजिक समरसता और समानता के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है। रामदेव स्थित उनकी समाधि पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी के अनुयायियों में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग शामिल हैं। उधर नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर 2 दिन का वार्षिक मेला कल शाम आरती के साथ शुरू हुआ। मुख्य मेला आज भर रहा है। विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खरनाल पहुंच रहे हैं। लोक मान्यता में वीर तेजाजी को शौर्य, वचन पालन और लोक कल्याण के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को नाग देवता के ढसने के बाद उनका निर्वाण हुआ। इससे पहले कल रात खरनाल में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने तेजा गायन और भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा तथा यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी।
1: बिल्कुल, राजस्थानी कल्चर एकदम भाव विभोर कर देता है, एकदम नाचने पर मजबूर कर देता है सबको। और अब राजस्थान के बाद हम चलते हैं परिक्रमा में केरला की तरफ। तो सायरा, केरला में क्या स्पेशल होने जा रहा है?
2: वेल दिव्या, द ट्रेडिशनल बोटरी सीजन हैज एंटर्ड अ न्यू फेज विद द 6th एडिशन ऑफ द चैंपियंस बोट लीग गेटिंग अंडर वे। द लीग बिगैन इन अलापुरा अ डे बिफोर यस्टरडे एंड द ओपनिंग रेस सॉ अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। अरोमा चंदन रोड बाय द अरोमा बोट क्लब ऑफ कोल्लम इमर्ज विक्टोरियस। And well, and you know, 9 snake boats are taking part in the 6th season. Let's hear more from our correspondent.
3: Races are scheduled at Kallada in Kollam, Pandanada in Alappuzha, Kottapuram in Thrissur, Marine Drive in Kochi, Piravam, Thazhathangadi in Kottayam, Pulinginnu, Kanakari and Kayangulam. The season will conclude with the President's Trophy boat race in Kollam on November 21st. Along the banks, large crowds turn the races into a vibrant community celebration. The races bring together sports tradition and tourism, offering the visitors a glimpse of cultural heritage that continues to thrive. The boat league thus gives a contemporary sporting format to a centuries-old tradition. The river, the boat, the rowers, and the people gathered on the banks become part of one celebration. And the chundan vallam slides through the water to the rhythmic calls of the rowers. Kerala's enduring love for the boat racing traditions comes alive once again. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियन गेम्स की। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। और वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।
2: And if we talk about news from the business world, well, benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. Sensex surged 564 points to close at 74,859. Nifty also gained 68 points to settle at 23,414. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: इन टुडेज एपिसोड वी रिमेंबर द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सौराष्ट्र इन द प्रेजेंट डे गुजरात, उच्चंग राय नवल शंकर ढेबर। यूएन ढेबर वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1905 इन हैमलेट नियर जामनगर।
5: अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, Dhebar gave up his legal career to join the Indian independence movement in 1936 in his hometown Rajkot. Dhebar led the satyagraha in the princely state of Rajkot between 1938 and 1942 and actively participated in the individual, Satyagraha and Confederation movement.
4: For his role in the Indian independence movement, he was imprisoned thrice by the British colonial government. Most of the princely rulers engaged in the policy of high taxation, imposing a heavy economic burden on the populace while ignoring the interest of the people.
5: The British provided them immunity from domestic and external aggression, and in return, the princely rulers used to support the British imperialistic policies, thereby acting against the development of nationalist sentiments. With nationalistic movement rising in India and many revolutionaries fleeing British authority and coming to the princely states in the first and second decades of the 20th century, pro-independence movement also gained ground in the princely states.
4: Dhebar emerged as one of the most prominent freedom movement leaders in the princely state of Rajkot.
5: Dhebar was instrumental in the creation of United Saurashtra. In October 1947, when the Nawab of Junagadh tried to integrate the state of Junagadh into Pakistan, Dhebar led the movement from front and declared a total economic boycott, forcing the ruler of Junagadh to go underground.
4: Later, the boycott method was used by other smaller states, prompting intervention by the Indian government. Thus, with the efforts led by Dhebar, freeing the powerful Junagadh state from the grip of its autocratic ruler.
1: पुण्यतिथि है राजा सवाई जयसिंह द्वितीय की. वे आमेर के वीर और कुंडीतिक राजा थे. जयसिंह ने विभिन्न खगोलीय ग्रंथों का अध्ययन कराया. उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया और ग्रहों, तारों, सूर्य तथा चंद्रमा की गति के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया. उनकी वैज्ञानिक रुचि ये साबित करती है कि वे युद्ध और राजनीति तक सीमित शासक नहीं थे. विज्ञान, गणित, विज्ञान को भी राज्य के विकास का हिस्सा मानते थे. जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया है और जयपुर का जंतर मंतर आज भी उनकी वैज्ञानिक सोच और वास्तु प्रतिभा का प्रमाण है. ये केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है. आज पुण्यतिथि है रामानुज प्रसाद की. वे आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वाचक थे. वर्ष 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबे समय तक आकाशवाणी पर समाचार वाचन किया. सुबह, दोपहर और शाम के प्राइम टाइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे. वे कवि और साहित्य कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के अनुज सत्यनारायण जी के बेटे यानी दिनकर जी के भतीजे थे.
2: We are also paying tribute to Noor Jahan, the Malikai Tarannum, and of course, ek daur tha jab singing stars hote se, they used to act also, they used to sing also, and nobody could match Noor Jahan, of course, who had proficiency in Hindustani classical music as well as other genres, including ghazals. She is recognized for her contributions to music in the entire South Asia. And I think kisi artist ke baare mein zyada baat karne se achha tha ki kyun na unki art ko hi dekha ya suna jaye. To aaj hamare पास बहुत खूबसूरत सा गाना है इन नूरजहां's वॉइस.

और जब पारिवारिक फिल्मों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है राजश्री प्रोडक्शंस का, और आज उन्हीं की नींव रखने वाले ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि है। और उन्होंने 1960 से लेकर 80 तक के दशक तक कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना की थी जो आज भी फिल्मों का निर्माण कर रही है। उनके द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं दोस्ती, जीवन, मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, अखियों के झरोके से, सावन को आने दो, मैंने प्यार किया नदिया के पार। और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म के ये गीत।

दिन है अभिनेत्री करीना कपूर का और वे सन 2000 से हिंदी सिनेमा में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। कपूर को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं और 2024 तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। आइए सुनते हैं उनका ही गाया हुआ ये गीत।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर, साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर करता है। इसमें भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय

0: उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 साल तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। जापान में एशियाई खेलों में आज पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। उधर भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
3: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans.
4: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
3: A delegation from Fuji Film India, led by its managing director,

मोहब्बत एक ही रंग में कहाँ ठहरती है, कहीं उसमें मिलने का इश्तियाक है, कहीं अनकहीं बातों की खामोशी, कहीं दिल की शरारत है और कहीं साथ मिल जाने की खुशी। एक ही एहसास और उसके कितने रूप हैं, हर बार एक नई धुन, एक नया रंग। आज गाते गुनगुनाते में उन्हीं रंगों से मुलाकात है, कुछ नर्म, कुछ चंचल, कुछ गहरे और कुछ ऐसे जिनमें प्रेम अपनी पूरी रंगीनी के साथ खिलता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज की इस शाम कुछ पुरानी रुमानी और प्यारी धुनों को लिए मैं प्रियांशी भटनागर हूं आपके साथ। तो फिर इस सिलसिले की शुरुआत हो उस साथ की ख्वाहिश से जिसमें सफर भी अपना लगता है और हम सफर भी। जुदाई की रात लंबी हो सकती है मगर इस गीत का यकीन अडिग है, मोहब्बत की मंजिल कहीं दूर नहीं। कयामत से कयामत तक के इस गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द हैं, आनंद मिलिंद का संगीत और उदित नारायण और अलका याग्निक के सुर हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
13: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
12: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
13: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
12: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
13: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

कहानी जहाँ कुछ देर के लिए ठहरी थी वहीं से फिर शुरू करते हैं। प्रेम अब थोड़ा और चंचल हो चला है और उसके साथ हमारी सुर भी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। तो आइए इस मधुर शाम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, दिल चुराने की शिकायत भी कैसी है ना, लहजे में शिकवा है मगर भीतर कहीं उसी चोरी की खुशी भी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के इस

गीत को रानी मलिक के शब्द, अनु मलिक का संगीत और कुमार सानू और अलका याग्निक के सुर मिले हैं। और सुरों की ये प्यारी रवानी चाहे कुछ देर थम भी जाए, उनकी झनकार फिर भी हमारे साथ रहती है। किसी भूली हुई धुन की तरह, किसी पुराने ख्याल की तरह, जिसे याद करके होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ जाए। तो इसी ख्याल और इस गीत के साथ आज की इस रुमानी संगीत महफिल से अब मुझे इजाजत दीजिए। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रियांशी भटनागर का आप सभी को सस्नेह नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फार्मर्स।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हेलो फार्मर्स, फोन इन लाइव कार्यक्रम में सभी किसान साथियों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा शर्मा।
2: बिल्कुल, मैं हूँ गौतम झा, और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं।
1: और कार्यक्रम के जरिए जहां खेती बाड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हम सीधी और सार्थक बात करते हैं, तो सबसे पहले नोट कीजिए साथियों हमारा विषय और टेलीफोन नंबर। विषय है भविष्य के लिए स्मार्ट एवं टिकाऊ खेती की तकनीक और टेलीफोन नंबर्स।
2: बिल्कुल, आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342108 पर। दूसरा जो लाइन है हमारा वो है 2342108 3, और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो दिल्ली का जो एसटीडी कोड है 011 लगाना ना भूलें।
1: बिल्कुल ना भूलें। और चलिए साथ ही बताते हैं कि हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर राज सिंह, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जब तक हमारे कॉलर्स का फोन ना कॉल ना आ जाए, तब तक पहला सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहा है किसान भाइयों की तरफ से कि स्मार्ट खेती क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है।
3: देखिए, हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश का लगभग 46.2 जो वर्क्स फोर्स है, जो लोग हैं, जो जिनको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और उसके अलावा 50% से अधिक जो लोग हैं उनकी आजीविका का साधन है। यह खेती के द्वारा हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 145 करोड़, और जो पशुओं की संख्या लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है हमारे यहाँ लगभग 535 मिलियन जो है, उसके लिए अनाज और चारा जो वो खेती से ही आता है। जो हमारे देश का कुल एक्सपोर्ट है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 53 बिलियन डॉलर है। तो हमारे देश में कृषि अर्थव्यवस्था की, जो हमारे देश की जीडीपी है, उसमें भी लगभग 18-19% जो योगदान है वो कृषि का है। इसलिए कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और लाइवलीहुड, आजीविका को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और गौतम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने सभी किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि देखिए, खेत आपका है, फसल आपकी है, तो सवाल भी आपके ही होने चाहिए। जवाब हमारी ओर से आएंगे तो जरूर पूछिए। हमारा जो विषय है, हमने पहले ही बताया कि भविष्य के लिए स्मार्ट एवं टिकाऊ खेती की तकनीक क्यों जरूरी है और स्मार्ट खेती क्या है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने विषय से संबंधित ही सवाल पूछे तो हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, पारंपरिक खेती और स्मार्ट खेती में आखिर अंतर क्या है?
3: जी, जो अभी हमारी कृषि है, हमारा अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस साल 25-26 में लगभग 376 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होने वाला है। लगभग 378 मिलियन टन जो हमारे हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है उनका प्रोडक्शन होने वाला है। लेकिन हमारी कृषि आज एक चिंता के विषय के सामने खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि हम जो हमारे जो संसाधन है उनका बहुत दोहन कर रहे हैं, चाहे पानी है, हमारी जमीन है, या फर्टिलिटी है, या दूसरे संसाधन है, उनका दोहन जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे देश के काफी क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं। पानी का जमीन का स्तर नीचे डाउन होता जा रहा है। जो भूमि में पोषक तत्वों की जो मात्रा है, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सबकी मात्रा में कमी होती जा रही है। इसके अलावा हमारी जमीन के बंटवारे के कारण हमारी जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो कृषि जोत है, उनका आकार छोटा होता जा रहा है। और इसके अलावा सबसे मुख्य समस्या जो कृषि जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो वर्षा के वितरण में जो असमानता हो रही है, तापमान में जो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो ये सब मिला के हमारी कृषि के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कृषि योग्य जमीन जो है वो कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग हो रही है, जो पानी है उसका भी दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमको अभी आवश्यकता है ऐसी तकनीकों की जो कम क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन दे।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम स्मार्ट और सस्टेनेबल खेती की जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी?
3: तो स्मार्ट एंड जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये एक ऐसी खेती है। स्मार्ट खेती में हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डिजिटल जो अभी जो नई टेक्नोलॉजीज है उनका समावेश करके जमीन में हमको जितना पानी की आवश्यकता होती है, जितने न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है, जितने हमारे कीट या जो बीमारी, जो उसका राइट अमाउंट, यानी कि 4R का जो एक सिद्धांत है, सही मात्रा, सही समय पर, सही जगह में और सही चीज को अगर अप्लाई करें तो हम जितना अप्लाई करें उसका हमको रेस्पॉन्स, उसका जो फायदा है वो ज्यादा मिलेगा। जबकि अभी जैसे किसान भाई, एक उदाहरण के तौर पर, किसान भाई खेत में जब सिंचाई करते हैं तो फ्लड इरिगेशन करते हैं, यानी कि खेत में पानी एक तरफ से भर देते हैं और उसमें बहुत पानी जो है, काफी जो नमी है वो नीचे लीच हो जाती है, उससे वेस्टेज होता है, खेत से बाहर बह के पानी का नुकसान होता है और फसल को उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो भी उसमें भर देते हैं। अगर इसी की जगह किसान भाई उन्नत सिंचाई विधियां जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन, इनको अगर अपनाकर सिंचाई करें तो कम पानी में भी

0: अधिक फसल जो है उसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसलिए जो हमारी स्मार्ट एग्रीकल्चर है, स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि हमारे संसाधन जो हैं उनकी बचत करते हुए जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार हम अपनी इनपुट्स, चाहे वो पानी हो या पोषक तत्व हो या कीट या बीमारी कंट्रोल करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स प्रयोग करते हैं उनको उतनी मात्रा में दें जिससे कि किसानों की लागत भी कम हो और उसका प्रभाव भी अधिक हो और फसल को अच्छा लाभ मिले, अच्छा उत्पादन हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे एक सवाल मेरे जहन में और है, जैविक खेती जो है वो टिकाऊ कृषि को किस प्रकार से सहायता कर सकती है?
0: जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जैविक खेती जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है और सरकार ने एक प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, परंपरागत कृषि विकास परियोजना। तो जैविक खेती के द्वारा हमारे जो सिंथेटिक इनपुट्स हैं उसको हम यूज नहीं करते, यानी कि जो रासायनिक इनपुट्स हैं, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उनको हम इसमें प्रयोग नहीं करते। इसमें केवल हम जो जैविक उत्पाद हैं, चाहे गोबर की खाद है या कंपोस्ट खाद है या हमारे जितने भी पौधों की बीमारी या कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए जो जैविक उत्पाद होते हैं, जैसे नीम का तेल हुआ अगर कीड़े बीमारियां, ट्राइकोडर्मा हुआ या दूसरे, उनका प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी जो जमीन पर उनका एडवर्स इफेक्ट भी ना हो, जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी में किसी तरह का दूसरा बुरा प्रभाव ना पड़े और हमारी फसल का उत्पादन अच्छा हो, उसकी पोषक तत्व अच्छे हो उसमें और किसानों को उत्पादकता अधिक मिले और लाभ अधिक मिले।
1: जी
2: तो डॉक्टर साहब, स्मार्ट खेती की जब हम बात करते हैं तो बहुत सी चुनौतियां भी आती होंगी हमारे किसान भाइयों के समक्ष। कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है?
0: देखिए, स्मार्ट खेती इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट्स, ड्रोन, ये जब सब डिजिटल टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे किसान, काफी किसान भाई ऐसे हैं जिनको उसके बारे में ज्ञान की उतनी नॉलेज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनको प्रयोग करने के लिए जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए कम ज्ञान के कारण इनका जो किसान भाई है, काफी किसान भाई खास तौर से जो इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं वो प्रयोग नहीं कर पाते। दूसरे इसमें इंटरनेट, हालांकि हमारे देश में इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो बहुत ही विस्तार से फैला हुआ है और लगभग 120 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं देश में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स हो रहे हैं। इसका काफी प्रसार एंड प्रभाव पड़ा हुआ है। मोबाइल जो है, स्मार्टफोन काफी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशंस है, सभी किसान भाइयों तक इसकी अभी भी पहुंच नहीं है। दूसरे कीमत जो कुछ जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रोन, रोबोट्स हुआ या ये हुआ, इनकी कुछ कीमत जो है, काफी किसान भाई ऐसे हैं जो गरीब स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं वो बियर नहीं कर पाते। हालांकि सरकार ड्रोन पे सब्सिडी दे रही है, काफी स्कीम्स हैं, जैसे ड्रोन दीदी स्कीम्स है उसमें भी सब्सिडी दे रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू सब्सिडी मिल रही है, कुछ एफपीओ हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन फिर भी काफी कुछ जगह जो गरीब किसान हैं उनकी पहुंच से ये बाहर हो जाता है। इसलिए जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है इनको थोड़ा जो प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं, ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसमें काफी प्रयास हो रहे हैं, काफी संस्थानों में प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि किसान भाई स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके।
2: तो डॉक्टर साहब, आपने कहा लिमिटेशन की भी बात कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो क्या सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस हैं इस दिशा में?
0: नहीं, सरकार ने स्मार्ट एग्रीकल्चर को पॉपुलर करने के लिए काफी स्कीम चलाई हुई है, काफी प्रोग्राम चलाए हुए, जैसे एक भारत विस्तार

0: इसमें इसके थ्रू जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उसका एक नेटवर्क है और उसमें एक नंबर है, किसान भाई उस पे कॉल करके अपना जो भी कृषि से संबंधित समस्या है, मौसम से संबंधित है या सरकार की जो योजनाएं हैं उस पे मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि मित्र जो है वो भी एक प्रोग्राम है, वो भी सरकार का, जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसानों को अनुदान के रूप में जो प्रधानमंत्री सहायता दी जाती है उसमें, या जो दूसरे प्रोग्राम है जो किसान क्रेडिट कार्ड, उनके बारे में उसके कृषि मित्र के द्वारा जो है किसान भाई मालूम कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो इसी प्रकार से सरकार ने काफी प्रोग्राम, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम्स है जो किसान भाइयों के खेतों में जो बीमारी और कीट लगते हैं उसमें किसान भाई उसका फोटो अपलोड करके और रीजनल लैंग्वेज में भी इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। देश भर में लगभग 10,000 एक्सटेंशन वर्कर इसमें कार्य कर रहे हैं और किसान भाइयों की खेतों में जो भी इंसेक्ट, ये कीड़े और बीमारियों से जो समस्या होती है उसका बहुत ही कम समय में उचित निदान जो है, उसका जो रोकथाम के उपाय है वो बताए जाते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात की उन्हीं की भाषा में,
0: उन्हीं की भाषा में जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने काफी योजनाएं चला रखी हैं जो डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में भी किसान भाइयों को काफी ज्ञान जो है उसमें है। बताते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत सारी अभी और भी बातें हैं और इससे पहले कि आगे बढ़े गौतम, हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और छोटे से अंतराल के बाद फिर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। कार्यक्रम चल रहा है हेलो फार्मर्स।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
7: पर हम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फार्मर्स, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और गौतम, एक बार हम अपना टेलीफोन नंबर और बता देते हैं सभी सुनने वालों को, 011 लगाएं अगर यदि आप बाहर से कॉल कर रहे हैं। हमारा नंबर है 2342108181 और 83।
10: बिल्कुल प्रतिमा, और विषय हमारा जो है वो एक बार फिर से पुनः मैं दोहरा देता हूँ, भविष्य के लिए स्मार्ट एवं टिकाऊ खेती की तकनीक विषय है हमारा। और विशेषज्ञ हमारे जो है पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। आप अपना प्रश्न जो है कॉल करके पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब विस्तार से आपको जवाब देंगे।
9: वाकई में गौतम, बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत अच्छा विषय है, सस्टेनेबल टिकाऊ खेती, स्मार्ट खेती, और आज तो देखिए डिजिटल इंडिया बन चुका है।

0: और इसकी जानकारी डॉक्टर साहब हर एक किसान भाइयों को होनी चाहिए। मोबाइल चलाना आता है तो किस तरीके से इंटरनेट पर हम अपने काम, घंटों के काम जो होते हैं वो मिनटों में कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्मार्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम्स हैं, वो क्या क्या है?
1: जो हमारा खास तो जो टिकाऊ खेती की अगर हम बात करते हैं, टिकाऊ खेती होती है कि हम आज की आवश्यकता अपनी पूरी करते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो रिसोर्सेस है उनको उस तरीके से प्रयोग करें कि हमारी खेती के उत्पादन पर भविष्य में भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब यह है कि हमको लॉजिकली ऐसे रूप में प्रयोग करने हैं अपने रिसोर्सेस जिनका हमारी कृषि पे आगे दुष्प्रभाव ना पड़े। यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि टिकाऊ खेती में इसकी आजकल कई विधियां चल रही हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण खेती। संरक्षण खेती में हमारी जो जमीन है संरक्षित खेती में, उसमें हम उसकी जुताई कम करते हैं, अपनी एनर्जी की भी बचत होती है, जो भूमि का डिग्रेडेशन है वो भी कम होता है, मास्टर लॉस भी कम होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा बाई प्रोडक्ट है यानी कि जो फसल का उत्पाद है, रेजिडू है, उसको हम रिसाइकिल करते हैं, खेत में ही बिछावन के रूप में प्रयोग करते हैं या उसको जमीन में मिला देते हैं जुताई के साथ में। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन, उचित फसल चक्र, क्योंकि फसल चक्र का जमीन की जो अपनी न्यूट्रेंट पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है, जो भूमि की उर्वरता होती है, उसको बनाए रखने में उचित फसल चक्र बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि लगातार एक ही फसल को लंबे समय तक ना उगाएं।
2: जी,
1: फसलों को जैसे एक अनाज वाली फसल बोई है तो उसके बाद में किसान भाई दूसरी यानी कि दलहन या तिलहन फसल ले। इसलिए उचित फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि फसल चक्र के बहुत फायदे हैं। इसमें हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति तो बनी रहती है। जैसे अगर हमने दलहन फसल बोई तो दलहन फसल में क्वालिटी होती है कि वातावरण से जो नाइट्रोजन होती है उसकी जड़ें जो हैं उसमें गांठें होती हैं, वो वातावरण की नाइट्रोजन को संग्रहित करके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। दलहन फसलों की पानी की आवश्यकता अनाज वाली फसलों की अपेक्षा कम होती है। उनके जो खरपतवार होते हैं, काफी खरपतवार ऐसे हैं जिनको हम फसल चक्र द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाजरा है, बाजरा में काफी खरपतवार ऐसे हैं जो पैरासाइटिक वीड्स होते हैं, स्ट्रिगा स्पीसीज, उनको फसल चक्र द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। सरसों के काफी खरपतवार हैं जिसको हम ओरोबैंकी भी कहते हैं, उसको उचित फसल चक्र के द्वारा ही प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए फसल चक्र बहुत आवश्यक है। और पानी हार्वेस्टिंग, क्योंकि हमारे देश की अभी भी लगभग 50% कृषि जो है वो वर्षा पर आधारित है, और उसकी औसत उत्पादकता बहुत कम है क्योंकि वो मानसून पर ही डिपेंड करती है। बरसात अच्छी हो जाती है तो उसमें अच्छा उत्पादन हो जाता है, नहीं तो कभी कभी किसान भाइयों को उसमें जितना बीज देते हैं उसको भी वापिस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो वर्षा के रूप में जो भी पानी मिलता है उसको उचित तरीके से खेत में या खेत के पास में दूसरी स्ट्रक्चर बना के उसको हार्वेस्ट करें, और जब फसल में पानी की आवश्यकता हो तो उसको इमरजेंसी में या सिंचाई के रूप में काम में ले सकते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है, तरीका है। इसके द्वारा किसान भाई फल के पौधे या जो टिम्ब जो इमारती लकड़ी है उसके पौधों के साथ फसल उगा के अधिक लाभ और अपने रिसोर्सेस की बचत कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं आप, और किसान भाइयों के लिए वाकई में ये बहुत ही लाभकारी बातें हैं। साथ ही साथ हम ध्यान रखते हैं कि अपने किसान भाइयों को इस तरीके की जानकारी तो मिले ही, साथ ही हम उनका मनोरंजन भी कराते हैं। तो हमने एक बहुत ही प्यारा सा, कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ एक गीत चुना है, और मुझे लगता है आपके साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं को भी गौतम बड़ा पसंद आएगा। आइए सुनते हैं।

0: वाकई में गौतम जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, वो भी सच्चे इंसान और सच्चे भगवान से कम नहीं है, जो रात दिन मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, हम सबके घर तक पहुंचाते हैं, और वाकई में यही अन्न जल हम सबके जीवन का आधार भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ निर्भर करती है कृषि पर। और डॉक्टर साहब, एक सवाल, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है कृषि में कितना महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में?
2: जी देखिए, सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार ने इसमें काफी स्कीम भी चलाई हुई है। सोलर पैनल जो हैं, अगर हम खेत पर लगाएं तो हम अपने खास तौर से जैसे इरिगेशन के पंप हैं उनको चला के एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो आजकल एनर्जी का वैसे ही जो है काफी क्राइसिस होती जा रही है। इसलिए जो हमारी ये नॉन कन्वेंशनल जो ये एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है और इसको कृषि में कई प्रकार से स्प्रेयर में, सोलर पैनल स्प्रेयर आ रहे हैं उनके द्वारा पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड जो खरपतवार मारने वाली जो दवाई है उनका इस छिड़काव कर सकते हैं। आप कम समय में जो अपने मैनुअली जो हम स्प्रे करते हैं उनके मुकाबले अधिक काम भी कर सकते हैं और हम अपनी बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है कि अगर हम लागत में कमी करें तो उसका डायरेक्ट फायदा किसान के लाभ को मिलेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल ये कि अगर कोई किसान भाई, कोई किसान साथी स्मार्ट खेती को अपनाना चाहता है तो कौन से ऐसे पहले 3 स्टेप हो सकते हैं जिसे उसे अपनाने चाहिए?
2: जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को चाहिए कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त करे। जो भी उनके पास में कृषि विज्ञान केंद्र है या जो कृषि विभाग के ऑफिस हैं या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है या कृषि विश्वविद्यालय है, वहां जाकर उनके बारे में जरूर मालूम करें। और सरकार ने काफी स्कीम चलाई हुई है, उनका मालूम करें, क्योंकि अगर हमको मालूम होगा तो तभी हम जो है उस चीज को अपना सकते हैं। दूसरा, किसान भाइयों को चाहिए कि उसकी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे जो संबंधित संसाधन है, क्योंकि स्मार्ट एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारी खास तौर से जो इनपुट्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनकी सेविंग करने में और रियल टाइम डिसीजन में जो हमको सही समय पर कोई चीज अप्लाई करनी है उसका बहुत महत्व होता है। और जो हमारी कृषि में पेस्ट के द्वारा या दूसरे उसके द्वारा जो नुकसान होता है, उस होने वाले नुकसान को हम रियल टाइम में अप्लाई करके सेविंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जितने भी अपना ज्ञान में वर्धन करें और देखें, जहां भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं तो एक होता है कि अगर हम देखेंगे तो हम उसको अपनाएंगे भी, ज्ञान होगा तो जरूर प्रयोग करेंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, भविष्य के लिए स्मार्ट एवं टिकाऊ खेती की तकनीक पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने डॉक्टर राज सिंहपुर, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिवरंजन लाल, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
1: और गौतम झा ने।
0: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषधि सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश

में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम का विषय है ग्रामीण समृद्धि, गांव तक पहुंचती विकास की ताकत। देश में गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। रोजगार, खेती, पशुपालन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पीने का पानी और ग्रामीण आवास, इन सभी क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव स्तर पर काम करने वाले हजारों लाखों लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी, स्वच्छता दीदी, आवास मित्र और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP। देश भर में 9 लाख से ज्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन काम कर रहे हैं। इनमें करीब 4,08,000 आजीविका से जुड़े CRP हैं। लेकिन सवाल है कि गांव के स्तर पर काम करने वाले ये लोग आखिर क्या करते हैं? खेती से लेकर बैंकिंग और स्वास्थ्य से लेकर साफ सफाई तक इनकी भूमिका कैसे बदल रही है और किस तरह ये स्थानीय लोग गांव के दूसरे परिवारों के लिए मददगार बन रहे हैं, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से।
2: ग्रामीण विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए केवल योजना बनाना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि योजना की जानकारी गांव के लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंद परिवार की पहचान हो, कागज तैयार हो और सही व्यक्ति को सही समय पर सहायता मिले। यही काम आते हैं गांव स्तर पर काम करने वाले कम्युनिटी कैडर। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे प्रशिक्षित लोग हैं जो अपने ही समुदाय के लोगों को अलग अलग सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने में मदद करते हैं। इनका काम केवल जानकारी देना नहीं है, ये लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़ने में मदद करते हैं, बैंक और दूसरी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाते हैं और कई मामलों में नई आदतें अपनाने के लिए लोगों को समझाते भी हैं। उदाहरण के लिए खेती के क्षेत्र में काम करने वाली कृषि सखी किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों और खेती से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देती हैं। पशु सखी पशुपालन करने वाले परिवारों को पशुओं की देखभाल और बेहतर प्रबंधन में मदद करती हैं। मत्स्य सखी मछली पालन से जुड़े लोगों को सहायता देती हैं और वन क्षेत्रों में वन सखी गैर कास्ट वन उत्पादों यानी जंगल से मिलने वाले ऐसे उत्पादों के संग्रह, उपयोग और मूल्य बढ़ाने से जुड़ी जानकारी देती हैं। यानी गांव में विकास का मतलब अब सिर्फ सरकारी कार्यालय तक सीमित नहीं है, गांव के बीच से ही ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है जो अपने आसपास के परिवारों को जानकारी, प्रशिक्षण और सेवाओं से जोड़ सकें। इस पूरी व्यवस्था में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मिशन के अंतर्गत देश में 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को करीब 92 लाख स्वयं सहायता समूहों यानी SHGS से जोड़ा गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: इस तरह गांव में रोजगार और आय बढ़ाने का प्रयास खेती के साथ साथ छोटे कारोबार और स्थानीय उद्यमों तक भी पहुंच रहा है। लेकिन ग्रामीण विकास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच। अब सुनते हैं दूसरी रिपोर्ट।
3: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा हर गांव में हो ये जरूरी नहीं, ऐसे में बैंकिंग सेवाओं को गांव के लोगों के करीब पहुंचाने में बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC सखी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता गांव में ही कई बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करती हैं, जैसे खाता खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, धन का ट्रांसफर और खाते का बैलेंस जानना। वित्तीय जानकारी को बढ़ाने के लिए 56,727 फाइनेंशियल लिटरेसी CRP भी काम कर रहे हैं। साल 2025-26 में 3,81,00,000 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। इस बदलाव को असम के नागांव की देवाश्री गोगोई बोरा की कहानी से भी समझा जा सकता है। देवाश्री ने BC सखी के तौर पर गांव में बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया। बाद में उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर की ID लेकर अपना कस्टमर सर्विस पॉइंट भी शुरू किया। वे पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। बैंकिंग के साथ साथ वे TDP, फोटोकॉपी और फोटो प्रिंटिंग का काम भी करती हैं। अब बात स्वास्थ्य और पोषण की। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी के रूप में आशा कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रही हैं। 31 दिसंबर 2025 तक देश में 10,40,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी थी। आशा कार्यकर्ता समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करती हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा की दिशा में काम करती हैं। वे बच्चों में कुपोषण की पहचान करने, पोषण संबंधी सेवाएं देने और माताओं को बच्चों के भोजन, स्तनपान, स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूक करने में भूमिका निभाती हैं। पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत आंगनवाड़ी व्यवस्था में बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मार्च 2026 तक 10,58,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका था। बस्तर की कहानी बताती है कि स्वच्छता और आजीविका को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने स्वच्छता दीदी के रूप में गाँवों में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है। ये पहल बढ़कर 114 गांवों और 71 ग्राम पंचायतों तक पहुंची, जहां ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन यानी SLRM केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर कचरे को इकट्ठा करना, अलग करना, उसका प्रसंस्करण और पुनः चक्रण किया जाता है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
4: इस तरह स्वच्छता के साथ महिलाओं के लिए आय का एक अवसर भी तैयार हुआ। अब बात करते हैं दो ऐसी जरूरतों की जिनका सीधा संबंध हर ग्रामीण परिवार से है, पानी और घर। आइए सुनते हैं तीसरी रिपोर्ट।
5: ग्रामीण विकास का मतलब केवल एक सुविधा देना नहीं है, एक परिवार के लिए जरूरी है रहने के लिए सुरक्षित घर हो, पीने के लिए पानी हो और स्वास्थ्य की सुविधा हो, बैंकिंग तक पहुंच भी हो और आय का साधन भी हो। इसी सोच को कन्वर्जेंस यानी अलग अलग योजनाओं और सेवाओं को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पानी के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत गांव स्तर पर लोगों की भागीदारी को महत्व दिया गया है। ग्राम पंचायतों और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी यानी पानी समिति या पानी समिति जैसी स्थानीय संस्थाओं को गांव में पानी की व्यवस्था की योजना बनाने, उसे चलाने और उसकी देखभाल में भूमिका भी दी गई है। इन समितियों में कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड के अनुसार देश भर में 5,33,000 से ज्यादा विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटियां या पानी समिति

0: 95 लाख ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सुमति अपनी बेटी के साथ एक जर्जर कच्चे घर में रहती थी। बारिश के मौसम में घर की कमजोर छत और दीवारों के कारण परिवार को परेशानी भी होती थी। आवास मित्र की मदद से उन्होंने सहायता प्राप्त की और 2022 में अपना पक्का घर पूरा किया। उन्हें निर्माण की प्रगति के आधार पर 3 किस्तों में 1,30,000 रुपए की सहायता मिली। ये था एक महान उदाहरण। आवास मित्र ने दस्तावेजी प्रक्रिया से लेकर निर्माण की निगरानी और प्रशासन के साथ समन्वय तक उनकी मदद की। इस उदाहरण से समझ आता है कि किसी योजना का लाभ केवल धन मिलने से पूरा नहीं होता। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कन्वर्जेंस, यानी एक ही परिवार की अलग अलग जरूरतों को अलग अलग नज़र से नहीं बल्कि एक साथ देखना। इसी तरह जेंडर से जुड़े कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक हिंसा और असमानता जैसे मुद्दों पर समुदाय के बीच भी काम करते हैं।
1: तो आज के विश्लेषण में हमने समझा कि ग्रामीण विकास की बड़ी तस्वीर केवल बड़े प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से नहीं बनती। इस तस्वीर में गांव की वो महिला भी शामिल है जो बैंक सखी बनकर पड़ोसियों को बैंकिंग सेवा देती है। वो कृषि सखी भी है जो किसान को खेती की बेहतर जानकारी देती है। वो आशा कार्यकर्ता भी है जो स्वास्थ्य सेवाओं से परिवार को जोड़ती है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है जो बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा पर काम करती है। गांव तक योजना पहुंचना पहला कदम है, लेकिन गांव के लोगों को उस योजना का सही लाभ दिलाना ही असली लास्ट माइल डिलीवरी है। इसी के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यः च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सः सूचितवान् यत् न्यूजीलैंड देशेन अस्य सन्धेः अन्तर्गतं भारतदेशे 2,00,000 कोटि रूप्यकाणां प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशाय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता अस्ति।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: अयम संधि भारतीय निर्यातेभ्यः वस्त्र परिधानयोः औषधीनां कृषिजन्य वस्तूनां प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थानां चादिषु क्षेत्रेषु नूतनान् अवसरान् उद्घाटयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् औषधि सुरक्षा निरीक्षणस्य क्षेत्रे भारतस्य वर्षेभ्यः यात्रा स्वावलम्बनस्य महत्वपूर्णं उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय औषधि सूच्याः सप्तम संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,00,000 प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया निरीक्षण केन्द्राणि कार्यं कुर्वन्ति। प्रशासनस्य लक्ष्यं च एतां संख्यां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरं पर्यन्तं वर्धयितुमस्ति। सा एतदपि उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति तथा स्वकीयेषु दत्तांशेषु तां समावेशयन्ति। भारतं सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य रुग्ण सुरक्षा दत्तांश भण्डाराय औषधि सुरक्षा सम्बन्धान् दत्तांशान् प्रददाति। मन्त्रिणा संसूचितं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य स्थानं 14,000,000 वर्षे 23,000,000 आसीत्, यत् स्थानं 25,000,000 वर्षे अभिवर्ध्य अष्टमं जातम्।
4: Today we have around 1150.
5: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: Which will make a big change in times to come.
1: पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तं वक्तव्यमालक्ष्य भाजपेति दलेन अद्य कांग्रेस दलस्य निन्दा कृता। दलस्य मुख्यालये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् अंसारीवर्यः 21,000,000 वर्षे लिखितस्य पुस्तकस्य उद्धारणं दत्तवान्, यस्मिन् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरूवर्यस्य मतानुसारं हिन्दुराष्ट्रवादः साम्यवादस्य अपेक्षया बृहत्तरा विभीषिका आसीदिति। श्रीत्रिवेदीवर्यः आरोपितवान् यत् अद्य कांग्रेसदलं वाममतानुपथे गतम्, साम्यवादविचारधारया गभीरतया प्रभावितः च अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् पूर्व उपराष्ट्रपतेः वक्तव्यानि कांग्रेसदलस्य मनोवृत्तिं प्रतिबिम्बयन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेश मंत्री अस्य मासस्य षड्विंशति दिनांके संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81 तम

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे की इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स, सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,400। The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ। देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा।
0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
0: So benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई। HCL टेक को 3.4% का और इटरनल को 2.6% का लाभ हुआ। इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई। पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ।
0: एंड इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड अपवर्ड। अमंग द टॉप गेनर्स रियल्टी इंक्रीज्ड 1.7%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रोज 1.6% एंड हेल्थ केयर एडेड 1.1%। इन कॉन्ट्रास्ट टेलीकम्युनिकेशन लॉस्ट 1.6%, मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स इक्विटी टिल्ट ड्रॉप 0.5% and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced and 250 remained unchanged.
1: नजर डालने यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ।
0: And we are joined in by our first caller from Mumbai, Mukund. Mukund, yes, welcome.
3: Yes, Mantra.
0: Namaskar. Sawal
3: Namaskar. मुझे ये पूछना है सर जी, SCST यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूएबल रह सकता है, 6 महीना, 10 महीना, यही 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे।
2: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
0: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक, कितने टेनर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका।
2: नहीं मुकुंद जी देखिए, जहां तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें।
1: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बढ़

0: लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है। बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
1: नहीं देखिए मनु जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं। जो भी डेटा हो, चाहे वो आपका जीडीपी का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है, खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है। साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है। लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास, आत्मविश्वास थोड़ा लौटा होगा क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं। अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद एफआईआईज का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में एफआईआईज ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है।
0: जी आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: हेलो गुड इवनिंग सर, मेरा यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू।
1: देखिए रत्नाकर जी, जहाँ तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पर रजामंदी जरूर दे दी है, लेकिन अभी उस पर आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पर लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज जो रिएक्शन था उसकी किसी वजह से था। हाँ ये जरूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहां पे बॉन्ड यील्ड्स हाई थी, वहां की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी। और आपका एक और सवाल था
0: आईटी सेक्टर,
1: तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूं इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफी पिटाई हो चुकी है और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है और दुनिया में जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है उसमें एक बड़ा विषय यही होने वाला है, तो मुझे लगता है कि और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं, तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
3: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
4: हाँ नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं जानना चाहता था कि आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है, और दूसरा सर मैंने आईटीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लूं क्या कि मेरा आईटीआर प्रोसेस हो गया है?
1: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला? आपने
4: रिफंड मिल गया है सर, मुझे सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
1: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है, और साथ साथ वो एक जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें अब कोई मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और

0: जो बॉन्ड यील्ड्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेज़ी थी जो $100, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहाँ भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीज़न वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाज़ार में हमने तेज़ी देखी।
1: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय फोन लाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज़ धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज़ हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज़ सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
2: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality, affecting the market in the coming days?
0: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not in within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yeah, yes, by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors, plus I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence, because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are two, three major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा। उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 1.3% और लंदन का फुटसी 100 1.1% मुनाफे के साथ कारोबार कर रहे थे। यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है। क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यदि विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
0: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्राइमरी रीजन, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में, तो मुझे लगता है इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है। तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के।
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश। स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार मार्केट मंदिर टीम को, नमस्कार। मेरा
1: जी नमस्ते,
3: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी मतलब क्रिप्टो अगर खरीदते हैं मतलब क्रिप्टो करेंसी तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बस बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो जैसे नेक्सा वगैरह हो गया तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा ये जानना था प्लीज।
0: नहीं अविनाश जी, देखिए जहाँ तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है उसको आपको अपने ITR में दर्शाना होगा और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी। ऐसा कोई TDS देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उससे अगर आपको कोई भी इनकम अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देनी होगी।
2: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई, वेलकम।
1: रवि जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट मित्रा।
1: नमस्ते।
4: मेरा क्वेश्चन है कि ये FII जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे उसका जो है विड्रॉ कर लिए हैं, ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं। और DIIs जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब SIP के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है कॉम्पनसेट हो रहा करके वहां तक तो ठीक है, इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा, तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है ये जानना चाह रहा हूँ। थैंक यू।
0: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है। पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि पीछे जो बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशंस दिए थे उनको उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश FIIs का बढ़ा था, लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका सिद्धांत है निवेश का FIIs का वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं एशिया की बाजार हैं चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो वहां पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं, तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे तो इसलिए वो जा रहे हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा मुझे नहीं लगता, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं।
2: राइट, एंड इन द सम अदर स्टोरीज द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI रिकॉर्डेड क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ 4.8% ईयर ऑन ईयर इन ऑगस्ट, दिस इज स्लाइटली लेस देन द डाउनवर्डली रिवाइज ग्रोथ रेट ऑफ 5% रिकॉर्डेड इन जुलाई अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टिमेट्स released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year-on-year basis.
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव। केशव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार।
1: नमस्ते।
5: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है पीले रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है उसके एक गोल्ड और होता है कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
0: नहीं केशव जी, देखिए जो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें।
2: An India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
6: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
2: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
1: इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए।
7: नमस्ते, नमस्ते सर। सर ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
0: नहीं देखिए रंजन जी, जैसा कि आपको पता ही है फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं, और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है। और जहां तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 basis points का कोई बहुत ज्यादा बाजार पे कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो, हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन पर ₹2,000 तक का लेन देन मुफ्त रहेगा, इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल UPI के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेन देन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने UPI के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार UPI का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा है कि MDR से प्राप्त राजस्व का उपयोग UPI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा, ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए NPCI ने कहा कि यह व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
8: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। इसमें क्या आप है गुल्लक करके एक ऐप है जो वे एक्चुअली टेक्स द
2: यूनिट
8: फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड। सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट एंड परचेज?
0: नहीं देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें।
2: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
1: भारतीय सर्राफा आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 153,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स। सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स अबव 23,400। Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
9: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहराखेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijaya Dashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
3: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans. He said New Zealand have committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. Mr. Goyal said India and Canada have also agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th October. He said the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units or APUs for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The ministry said induction of indigenously developed APUs will further strengthen the operational readiness, reliability and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said that India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. She also said 25 countries in the world recognize and accept the Indian pharmacopoeia, and added that the country now provides pharmacovigilance data to WHO patient safety database. The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation.

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गॉव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल

0: के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया, यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमलीजामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी, जी।
2: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
2: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे, उस मुहिम के वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा। जी, जी। तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई, आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के जमाने में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
2: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य से। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
2: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में, एक योजनाओं में, एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख में याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहाँ पर सुरेश जी, हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया?
2: बिल्कुल। देखिए, याद रखिए, आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
1: जी,
2: 2 अक्टूबर
1: जी।
2: और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होके हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल,
2: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा।

0: एक जागरूकता
1: जी
0: जनता के अंदर पैदा भी हुई है।
1: सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आई। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। यहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे गिव इट अप अभियान यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं। राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहां पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
2: देखिए, आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि गिव कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना LPG गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो PNG के इस दौर में, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, जहां भी घर घर PNG की पाइप बिछ गई है और लोग PNG का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है और जन भागीदारी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता भी सहजता भी आई है और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी धुआं से आजादी मिले, कि सेहत सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है और जिसका परिणाम यह है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
0: सुरेश जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना, जो खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके TB जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था
1: जी,
0: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक LPG की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा PNG के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है कनेक्शन मिल गए, जिसके बाद LPG की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए
1: जी।
0: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था
1: जी, जी।
0: हम एडिशनल भी हमने एक ले लिया था क्योंकि
1: जी, जी।
0: कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से PNG आया घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा,
1: जी,
0: तब जाके जो है ये होगा।
1: जी, जी।
0: इसी तरीके से राशन कार्ड है।

0: आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था
1: जी।
0: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं
1: जी, जी, जी,
0: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए। इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है, उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
1: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूं मन की बात कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में
1: जी।
0: तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे। अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया
1: जी।
0: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आमतौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन। वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है, और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु, उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है।
2: नहीं बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी

0: बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है, और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर, अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
2: देखिये, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
1: जी।
2: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
1: जी, जी,
2: आज जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, उससे और का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है, तो और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है, इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है, आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से, इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है, आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है, तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो

0: नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था। यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है। निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। कैसे यह परिवर्तन आया?
1: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
0: जी,
1: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
0: जी
1: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति हैं उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको मान्यता देना, उनका जाति उनका मजहब उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
0: जी।
1: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का
0: जी,
1: मैं
0: जी,
1: समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
0: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहने के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है। और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान रहन सहन रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले इस दौरान एक कार्यक्रम चलता था, अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहाँ जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
0: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कहने की आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे?
1: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
0: एक किया पूरे भारत
1: वर्ष, पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
0: बिल्कुल,
1: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और
0: सांस्कृतिक
1: एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल के प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
0: लोग जीवन में
1: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वीकार्यता, ये राष्ट्रीय एकता का और मजबूत होने का एक प्रतीक है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में ये दूरियां कम होगी, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो, ये बहुत जरूरी है, और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
0: अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, भारत विकसित हो ये हम सब की कामना, इस विकसित भारत में लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
1: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है, और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया, और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है, और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है
0: जी,
1: मैं
0: जी।
1: समझता हूँ कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है उसका निश्चित ही कारण।
0: सुरेश जी आपने बहुत जानकारियां

0: दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद
0: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: टिकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली और दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता, अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश तथा संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली की जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 19 सितंबर को इन 7 की नियुक्ति की घोषणा की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के चेयरमैन पद की शपथ ली। परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और परिषद की बैठक के पीठासीन अधिकारी प्रवेश साहिब सिंह ने शपथ दिलाई। नगरपालिका ने कहा कि ये अवसर NDMC के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरूआत का प्रतीक है। इसमें कुशल नागरिक सेवाओं, नागरिक केंद्रित प्रशासन और नई दिल्ली के विकास पर निरंतर जोर दिया जाएगा। दिल्ली भाजपा ने आज एक प्रदेश संयोजक और 3 प्रदेश सह संयोजक के नामों की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार महेंद्र नागपाल राजधानी में पार्टी के संयोजक होंगे। इसके साथ ही मीरा अग्रवाल, कैलाश सांकला और रोशन कंसल को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज जनता दर्शन में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि संवाद के दौरान उन्होंने नागरिकों की बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान ही सरकार का संकल्प है। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस बुधवार राजधानी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन नामक कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं और परिवारों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
5: टुडे वी हैव अराउंड 1150।
6: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
5: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
6: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
5: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्लीवासी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण solar.delhi.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
7: पोर्टल पर सोलर के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता पोर्टल पर अपना CA नंबर दर्ज कर आवश्यक जानकारी भरेंगे, अपनी सहमति देंगे और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप सरकार बिना किसी लागत के लगा कर देगी। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट से अधिक के सोलर रूफटॉप पर केंद्र सरकार 78,000 रूपए और दिल्ली सरकार 78,000 रूपए की सहायता देगी।
8: दिल्ली के उपभोक्ता 400 यूनिट के ऊपर की कैटेगरी में आते हैं और 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी, जिसमें 78,000 जो रुपीज है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और हमने भी केंद्र सरकार जितना पैसा दे रही है उतना दिल्ली राज्य की ओर से भी 78,000 हम देंगे।
7: दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक दिल्ली के 2,30,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे एक और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर परिवारों को बिजली के खर्च में बचत करने का अवसर मिलेगा। रीशु जायसवाल के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
4: दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान श्री सिंह ने कहा कि बस डिपो और चार्जिंग ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को बिना किसी देरी के सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य साफ सुथरी और ग्रीन क्लीन दिल्ली का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजधानी में 40 बस डिपो से लगभग 5,088 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके अलावा 3 और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी के दौराला और झुलझुली में भी 2 नए बस डिपो बना रही है, जिनकी क्षमता 250 और 500 बसों की है। इससे दिल्ली के

0: ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी और वे दिल्ली की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलवे स्टेशनों, कार्यस्थलों और रेलवे आवासीय कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जल भंडारण और फिल्ट्रेशन टैंकों की व्यापक सफाई तथा अवसंरचना उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है। इसमें यमुना को न केवल जीवन देने वाली नदी के रूप में बल्कि यादों, संस्कृति, इतिहास और कल्पना की एक जीवंत धारा के रूप में भी देखा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की। भटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरूआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में। कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने आज एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सभी 12 जोन में 44 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन इलाकों में आज इस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई उसमें गांधीनगर, मंडावली, फजलपुर, न्यू अशोकनगर, ईस्ट विनोद नगर, नारायणा, न्यू मोतीनगर, इंद्रपुरी और शालीमार बाग जैसे इलाके शामिल हैं। निगम ने कहा कि अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर 9289094044 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को भी बधाई दी है। श्री मोदी ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान उनके फोकस और अनुशासन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को और पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। उन्होंने भविष्य में इन खिलाड़ियों के लिए और भी जीत की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुचिका तारियाल को महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई दी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि MMA में ये भारत के लिए पहला एशियन गेम्स पदक है। राजधानी दिल्ली में

0: आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
6: This strategic partnership.
7: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
5: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी जल विवाद बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में होने के कारण विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद अधिकरण के पास लंबित मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:10 और 29 सेकंड। आप हैं मधुरिमा कार्यक्रम में अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ। हम शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन एक मधुर धुन वर्षों तक हमें याद रहती है। यही संगीत की सबसे बड़ी खासियत है, शक्ति है। सीधे आपके मन से जुड़ता है संगीत, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरता है संगीत। तो क्यों ना आज मधुरिमा में कुछ ऐसे ही विशेष गीतों को सुने जो राग पर आधारित हों। जी हाँ, मधुरिमा शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों पर लेकर आए हैं हम आज फिल्म जगत के गीत जो शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। राग का नाम है पीडू। और लीजिए, पहला गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म अनीता से। गीत के बोल लिखे आरजू लखनवी ने, संगीत से सजाया संवारा, संग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर मुकेश साहब का।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ।

0: रखोगे।
1: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए, एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, जहां ये वक्त है मधुरिमा कार्यक्रम का। आज मधुरिमा में हम आपको सुनवा रहे हैं राग पीलू पर आधारित गीत। अब जो गीत आप सुनेंगे ये भी ताल कहरवा में तालबद्ध है। जैसा कि इससे पहले जो गीत हमने सुनाया आपको अनीता फिल्म से, वो गीत भी ताल कहरवा पर आधारित था। और जो गीत अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसकी लोकप्रियता की कई वजह बनी। इसका मधुर संगीत, जी हाँ, SD बर्मन साहब द्वारा संगीतबद्ध, लता जी की जादुई आवाज़ और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म इश्क पर जोर नहीं का शीर्षक गीत, आइए सुनते हैं।

राग पीलू का अगर हम परिचय दें तो राग पीलू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही लोकप्रिय चंचल और मधुर राग है। इसकी प्रकृति चंचल, श्रृंगार, भक्ति व करुणा रस प्रधान होती है। थाट है इसकी काफी, वादी और संवादी स्वर इसके ग यानी गंधार, नी यानी निषाद। और अगर गायन समय की बात करें तो गायन समय है इसका दिन का तीसरा प्रहर, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक। रागों पर आधारित या राग सुनने के लिए वैसे तो कोई भी समय में हम इसको सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर इनके विशेष समय में आप अगर इन्हें सुनेंगे तो इस राग की सुंदरता और भी बढ़ जाती है।

और आइए अब राग पीलू पर ही आधारित सुनते हैं ये गीत, जिसे हम शामिल कर रहे हैं जंगली फिल्म से। ताल कहरवा की ताल पर सजा ये गीत, जिसके बोल लिखे हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और स्वर है किसका, जी हाँ, स्वर है लता मंगेशकर जी का। तो सुनते हैं ये जंगली फिल्म का खूबसूरत सा गीत लता जी और मोहम्मद रफी साहब के स्वर में।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों, ओपी नैयर, एसडी बर्मन या शंकर जयकिशन, इन सभी संगीतकारों ने फिल्म जगत को राग पीलू पर आधारित गीत दिए। फिलहाल मधुरिमा से विदा लेते हैं रूपा, नमस्कार।

जोश है, जुनून है, जीत का अरमान है, एशियाई खेलों में भारत की अलग पहचान है। मैदान में पसीना, आंखों में सपना, तिरंगे को ऊंचा रखना ही है अपना। नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों के इस रोमांचक सफर में हर दिन सामने आ रही एक नई कहानी, नया संघर्ष और नई उपलब्धि। एशियाई खेल के हर अपडेट और खेल जगत की तमाम खबरों पर रहेंगी नजर। तो आइए शुरू करते हैं खेल खबरों के साथ 15 मिनट का ये सफर। एक नजर प्रमुख खेल सुर्खियों पर। एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज का दमदार प्रदर्शन जारी, हिमांशु ने सिल्वर और रुद्रांश ने जीते कांस्य पदक। टीम स्पर्धाओं में भी भारत का पदक सुनिश्चित। भारत की सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वुशु में रोशिबीना और आर्यन का बेहतरीन प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां निशानेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक खिलाड़ियों ने जीते हैं। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज निशानेबाजी में भारत ने 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता।
1: Bronze going to Rudraksh Patil, 230.9 in the final, and takes the bronze medal here.
2: Himanshu, and he will receive his silver medal, his first medal at the multi-sport event.
0: Rudraksh Patil ne jeet ke baad kya kuch kaha, aaiye sunte hain.
3: फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि कंट्री के लिए 2 मेडल ला पाया। ऑफ कोर्स थोड़ा बेटर हो सकता था और गोल्ड का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम लोग ब्रॉन्ज एंड सिल्वर ला पाए हमारे दोनों 2 फ्लैग से पोडियम पे, सो आई एम वेरी हैप्पी। शूटिंग से ही स्टार्ट होता है मेडल, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शूटर्स की टू ब्रिंग अ मोमेंटम फॉर द एंटायर कंटिजेंट। हम जितने मेडल्स मारेगी उतनी हमारी पूरी कंटिजेंट उतना ज्यादा स्ट्रांग फील करेगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीत लिया है, कितना रोमांचक रहा उनका मुकाबला?
4: जी प्रशांत, दोनों निशानेबाजों ने कड़े मुकाबले के बाद पदक अपने नाम किए हैं। हिमांशु ने कुल 252.4 अंक हासिल किए, जबकि रुद्रांश ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक पर कब्जा किया है। प्रशांत, मैं आपको ये भी बताऊं कि चीन के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है।
0: मुकेश, ये तो हुई व्यक्तिगत स्पर्धाओं की बात, लेकिन टीम इवेंट में क्या कुछ रहा निशानेबाजों का प्रदर्शन आज?
4: प्रशांत, टीम स्पर्धा में निशानेबाजों ने रजत पदक हासिल किया है। हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की भारतीय पुरुष टीम ने भारत के लिए पदक जीता। रुद्रांश ने क्वालिफिकेशन में 631.8 अंक बनाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि हिमांशु ने 630 के स्कोर के साथ 7वां और पार्थ ने 628.3 के स्कोर के साथ कुल 1890.1 अंक हासिल किए। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में ये रुद्रांश का दूसरा एशियाई खेल पदक था। इससे पहले उन्होंने हांगचू में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। चीन ने 1899 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता और दक्षिण कोरिया ने 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: जी मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इससे पहले कल एलाबेनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक भी हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात करते हैं मार्शल आर्ट्स पर। भारत की सुचिका तारियाल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने पारंपरिक 60 किलोग्राम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
5: 36 वर्षीय सुचिका ने नया इतिहास रचते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश को पहला पदक दिलाया। सुचिका और सिंगापुर की हुई तियो के बीच 60 किलो वर्ग का बेहद संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। ओवर टाइम तक चले इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं आया। इसके बाद सुबह के वजन के नियम के आधार पर सुचिका को सिर्फ 700 ग्राम के अंतर से मुकाबला हार गई और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने मंगोलिया की अल्ता चिमेग बेलगमा को हराकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। कभी जूडो की खिलाड़ी रही सुचिका ने वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक का मुकाबला खेला था। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी पहला पदक अपने नाम किया, और आइए सुनते हैं सुचिका ने क्या कहा पदक जीतने के बाद।
6: जान से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने हर जगह ट्राई किया, वहाँ से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ से मुझे एक मेडल मिला है तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत ट्राई करते आ रहा हूँ।
0: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियन गेम्स का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। एक तरफा मुकाबले में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
7: लक्ष्य सेन ने भारत को मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत दिलाई। उन्होंने बांग्लादेश के ऐमान इब्त जमन पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा। लक्ष्य ने पहले गेम को एक तरफा अंदाज में 21-4 के बड़े अंतर से अपने नाम किया। लक्ष्य अपनी इसी लय को दूसरे गेम में भी बरकरार रखने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे गेम को 21-12 से अपने नाम करते हुए मुकाबले में भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। लक्ष्य के जबरदस्त स्मैश का जमान के पास कोई जवाब नजर नहीं आया। वहीं आयुष शेट्टी ने दूसरे मैच में कमाल का खेल दिखाया। आयुष बांग्लादेश के गौरव सिंघा पर पूरी तरह से हावी नजर आए और पहले गेम को 21-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी आयुष का दबदबा कायम रहा और उन्होंने 21-13 से गेम जीतकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। तीसरे मैच में किदाम्बी श्रीकांत का प्रदर्शन भी बेमिसाल रहा। उन्होंने बांग्लादेश के जुमार अल अमीन को शिकस्त देते हुए भारत की तीसरी जीत सुनिश्चित की। हालांकि श्रीकांत को पहले गेम में जीत के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वह गेम को 21-15 से अपने नाम करने में सफल रहे। दूसरे गेम में श्रीकांत ने जुमार को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 21-10 से गेम को जीत कर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला कल जापान से होगा। भारतीय पुरुष टीम अगर जीत दर्ज करने में सफल रहती है तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर वुशु में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। भारतीय वुशु खिलाड़ी आर्यन और रोशिबीना देवी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान की साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दो बार की एशियन गेम्स मेडलिस्ट रोशिबीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को पॉइंट्स के अंतर से मात देकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब दोनों ही खिलाड़ी पदक सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर हैं। आर्यन और रोशिबीना कल क्वार्टर फाइनल में पदक और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। दो बार की एशियन गेम्स मेडलिस्ट रोशिबीना ने 2023 हांगझोउ गेम्स में सिल्वर और 2018 जकार्ता गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और अब बात हॉकी पर। सविता पुनिया भारतीय महिला

0: हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हॉकी इंडिया ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता की सराहना की। इस खास उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने कहा कि ये सविता के करीब 2 दशकों के अनुशासन, मेहनत और बेहतरीन नेतृत्व का नतीजा है। उनके शानदार योगदान को सम्मान देने के लिए हॉकी इंडिया ने उन्हें 10 लाख का नकद इनाम देने की घोषणा की है। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराने के बाद टीम ने दूसरे मैच में इंडोनेशिया को 17-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से दीपिका, ऋतुजा पिसाल और नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोलों की अपनी हैट्रिक पूरी की। वहीं सुनलिता टोप्पो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सनीमा टेटे और इशिका ने भी 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पूल बी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला क्रिकेट एशियन गेम्स में कल भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशेष, अब तक भारतीय टीम का कैसा सफर रहा है और कल होने वाले मुकाबले से क्या कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि लगातार अच्छा खेल करते आ रही है भारतीय खिलाड़ी?
1: सफर की बात करें प्रशांत, तो भारतीय टीम एशिया कप जीत कर आई है। ऐसे में पदक की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं भारतीय टीम से स्वर्ण पदक की, क्योंकि भारत ने एशियन गेम्स में अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एशिया कप में भी भारत का जो फाइनल था वो श्रीलंका से हुआ था, जहां भारत ने अपने ही डोमिनेटिंग अंदाज में 72 रन से जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम किया था। वैसी ही कुछ उम्मीदें भारतीय टीम से कल होंगी। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ के साथ साथ पूरी टीम को एक यूनिट के साथ खेलना होगा और अपने स्वर्ण पदक का जो खिताब है उसको जीतना होगा।
0: विशेष, भारतीय पुरुष टीम भी कल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे, किनसे होगा मुकाबला?
1: भारतीय पुरुष टीम का कल मुकाबला जापान से होगा। ये एक फ्रेंडली मैच है और इसके बाद भारतीय टीम जो है एशियन गेम्स में अपना सफर शुरू करेगी 28 सितंबर से, जहां पहले ही अपनी रैंकिंग के आधार पर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और साथ ही साथ भारत भी स्वर्ण पदक पिछले संस्करण में जीती थी, तो इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी कि वो आए और अपना स्वर्ण पदक डिफेंड करें।
0: विशेष, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और कल भारत फाइनल मुकाबला खेलने भी उतरेगी, टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतरेगी। लेकिन जो पुरुष टीम है, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए मुकाबला करेंगे?
1: अगर पुरुष टीम की बात करें तो पुरुष टीम जो है 2026 में विश्व कप जीती है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कमाल की ओपनिंग जोड़ी है। उसके बाद तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में टीम को संभालते नजर आएंगे और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर सभी अपनी भूमिका निभाएंगे और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते नजर।
0: और यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उन पर भी विशेष निगाहें होंगी। और विशेष, कल एशियन गेम्स में क्रिकेट के अलावा कौन कौन से प्रमुख खेलों पर नजरें होंगी?
1: कल के मुकाबलों की अगर बात करें प्रशांत, तो बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोनों ही टीमें कल जापान से भिड़ेंगी।
0: बैडमिंटन में किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशेष?
1: बैडमिंटन में काफी उम्मीदें होंगी पुरुष टीम की अगर बात करें तो, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत। वहीं महिला टीम में तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, पीवी सिंधु जो है वो भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करती नजर आएंगी।
0: और कौन कौन से मुख्य खेल हैं जो कल होंगे और जिन पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी?
1: कुश्ती में महिलाओं के 51 किलोग्राम में साक्षी और पुरुषों के 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे। महिला क्रिकेट का जैसा बताया कि गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा। हॉकी में भी भारत की पुरुष टीम कल श्रीलंका से मुकाबला करेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला कोरिया से होगा। वहीं सेपक टकरा में भारतीय पुरुष टीम मलेशिया से प्रतिस्पर्धा करेगी। शूटिंग में कल 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम का फाइनल होना है। स्कीट और अन्य मुकाबले भी खेले जाएंगे। वहीं अगर टेबल टेनिस की बात करें प्रशांत, तो महिला टीम कल थाईलैंड से राउंड 1 में मुकाबला करेगी। वहीं पुरुष टीम कोरिया का सामना करेगी।
0: विशेष, कल ई स्पोर्ट्स में भारत के सामने क्या कुछ चुनौती होंगी
1: प्रशांत? कल ई स्पोर्ट्स में भारत का एक इवेंट है जिसमें कल उज्बेकिस्तान से भारत की टीम फुटबॉल मैच खेलेगी।
0: और विशेष, श्रोताओं को आप भारत की स्थिति भी बता दें कि एशियन गेम्स में भारत की इस पोजीशन पर कितने पदक है भारत के पास?
1: एशियन गेम्स की अंक तालिका में भारतीय टीम अभी 12वें स्थान पर है। 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 पदक भारतीय टीम ने जीते हैं।
0: और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि आज

0: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सुनील कुमार की कप्तानी में धमाकेदार जीत दर्ज की है। भारत ने मेजबान जापान को एक तरफा मुकाबले में 49-23 से हराया। वहीं तैराकी में श्रीहरि नटराज ने आज पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और टेबल टेनिस ने एशियन गेम्स का आगाज शानदार जीत के साथ किया है। सुतार्थी मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रेजा अकुला की तिकड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव

0: शिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
1: सहायक विद्युत इकाइयां एपीयू, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित एपीयू को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
3: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
4: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने

0: व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुँच को रेखांकित किया।
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
2: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
0: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पामफिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: नमस्कार, आपके अपने मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी, आज हम ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा में की गई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, या कहिए कुछ अंतराल के बाद, सरकार का ये कदम जो है वो देश के संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना जा रहा है। अब तक जो कर्मचारी एक निश्चित सैलरी ब्रैकेट से बाहर होने के चलते पीएफ और पेंशन के फायदों से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। लेकिन इस वेज सीलिंग के बढ़ने से आपकी इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा? आपकी कंपनी के योगदान में अचानक क्या कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा? और रिटायरमेंट का वक्त आते आते आपके हाथ में आने वाला फंड लगभग अंदाजन कितना बड़ा हो सकता है? जैसे तमाम सवाल लोगों के मन में प्राय उठते रहते हैं, और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद मुनीश जी।
0: जी सर, आज हमारा विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमारे नंबर हैं लैंडलाइन के 0112331048। अगला नंबर है 2371711023717106 और 2331444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं, एनसीआर के बाहर से फोन कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो हम दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का। और हम आपको फिर से विषय बता दें एक बार, कामगारों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। और चर्चा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, और मैं देख रहा हूं कि नाम जो यहां फ्लैश हो रहा है, राय बरेली उत्तर प्रदेश से रमा शंकर जी। कहिए रमा शंकर जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो सीलिंग रेडिंग हुई है, इसमें जो है कामगारों के जो है फंड ईपीएफ का रास्ता प्रशस्त हो गया, तो इसकी सुरक्षा क्या गारंटी है?
0: जी, आप रमाशंकर जी अपना सवाल कृपया दोहराएंगे एक बार।
2: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामगारों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है
0: जी,
2: तो इससे इनके ईपीएफ का रास्ता तो खुल गया।
0: जी हाँ, ईपीएफ का रास्ता आप कह रहे हैं कि खुल गया, ईपीएफ के दायरे में और कर्मचारी आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपका क्या है?
2: हमारा यही प्रश्न है कि क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा?
0: क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न
2: रहेगा
0: रमाशंकर जी का? जी सर,
1: बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्रीय सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो जितने आप जैसे जितने कर्मचारी हैं उनके जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे

0: पास आपके नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो जमा करते हैं हर महीने, हम ये जितने भी अपनी राशि है इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड और ऐसे सब बहुत ही सुरक्षित जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। और इसके बाद हर साल में एंड में हम इंटरेस्ट घोषित करते हैं। पिछले साल 8.25% इंटरेस्ट रेट हमने घोषित किया था। और इस पे जितने भी आपके पीएफ का बैलेंस बचा है हमारे पास, उस पे 8.25% जो है हम आपके पीएफ के अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं। ये क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, ये आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है।
1: तो रमाशंकर जी, आशा है कि आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, पब्लिक स्पीक में आज विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ की वेतन सीमा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी। आपसे ये हम जानना चाहेंगे अपने ऐसे श्रोताओं के लिए जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं और बहुत तकनीकी रूप से शायद नहीं जानते, कि ये जो ईपीएफओ की वेज सीलिंग या वेतन सीमा बढ़ाई गई है, इसका सीधा अर्थ क्या है और आम तौर पर ये कर्मचारियों को किस तरह से प्रभावित करेगा?
0: ये मैं सारे आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये 1952 का एक्ट है जो कि अभी हाल ही में 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो जितना भी वेतन है, प्राइवेट सेक्टर में जितने कर्मचारी हैं उसमें मैंडेटरी कवरेज जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य कवरेज जो है वो 15,000 की वेतन सीमा तक की थी। 2014 में इसको 6,500 से 15,000 किया गया था और अब जो है हाल ही में 17 तारीख को इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी 25,000 का वेतन कमाता है उसका 12% जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, जो कि आपका वेतन से कट के हमारे तरफ कंट्रीब्यूट होगा वो, और आपका जो नियोक्ता है, आपके एम्प्लॉयर जो है, वो अपने तरफ से 12% वो जमा करेंगे ईपीएफओ के आपके खाते में। तो ये जो पैसा जो जमा होके आएगा, ये 3,000, जैसे कि आपका अगर सैलरी 25,000 है तो 3,000 रुपया आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर 3,000, टोटल 6,000 रुपये
1: जी
0: कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा प्रति माह, जब तक कि आप काम कर रहे होंगे इसी एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले ये राशि जो है ये 15,000 के वेज सीलिंग पे था, अब बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पहले जितने भी अगर लोग को कोई अगर 16,000 कमा रहा था या फिर 20,000 कमा रहे थे तो उनको पीएफ का कोई भी फायदा नहीं था। दे ये वॉलंटरी, अपना वॉलंटरी
1: जी
0: स्वेच्छा की
1: हाँ
0: तरह से अगर कंट्रीब्यूट करें तो
1: जी
0: अलग बात है, लेकिन अगर मैंडेटरी कवरेज नहीं था, अब ये लोग सब ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अब सुरक्षित अपने आप को पाएंगे।
1: हाँ और देखिए, एक और हमारे श्रोता छतरपुर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं लाइन पर, राशिद अहमद खान। राशिद साहब, क्या सवाल है आपका, बताइए।
2: सर नमस्ते। सर
1: नमस्कार। नमस्कार
2: आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई।
2: जी सर, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जैसे कोई भी कर्मचारी है एक कंपनी में काम कर रहा है, तो बाय द वे दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है तो क्या उसका मतलब प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा उसका, यह चेंज हो जाता है? एक बात। दूसरी बात, जैसे 12% का आपने बताया कि 12% कर्मचारी, 12% नियोक्ता, ये तो क्या इसको मतलब प्लस माइनस किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या, या मतलब फिक्स है ये नियम, ये बताना सर प्लीज। थैंक यू सर।
0: धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसमें यह बताना चाहूंगा कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको वो यूएएन बोलते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, एक बार आपने ले लिया तो वही आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। जब भी आप अपना नौकरी चेंज करते हैं तो आप अपना यूएन और दूसरे एम्प्लॉयर को आप दे देंगे, वो उसी हिसाब से आपका जो है पीएफ काट के जमा करना शुरू करेंगे। आपका दूसरा सवाल जो है

0: वो ये था कि क्या ये 12% चेंज हो सकता है? नहीं, ये कानूनी या फिर लीगल तरीके से ये फिक्स किया गया है एक्ट में, तो इसका जो है ये 12% ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन जो है आप अगर आप 30,000 कमा रहे हैं या 40,000 कमा रहे हैं, ये आप और आपके नियोक्ता दोनों मिलके कंसेंट, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कंसेंट, आप ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से ऊपर हम नहीं कटवाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट जो है वो 25,000 तक ही अनिवार्य है कटना। अगर आप उसके ऊपर, आप 40,000 के वेतन पे आप 12% जमा करना चाहते हैं, आपका और आपके नियोक्ता का ज्वाइंट कंसेंट के साथ, मतलब सहमति के साथ, वो 40,000 पे भी कट सकता है। लेकिन अनिवार्य जो राशि अब रहेगा और वेतन जो रहेगा वो है 25,000। 25,000 पे 12% बनता है 3,000, तो 3,000 आपका और 3,000 नियोक्ता का मैंडेटरी है। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
1: तो आशा है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों के जो हैं जवाब राशिद साहब मिल गए हैं। और आपसे अगला प्रश्न हमारी ओर से ये है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है, टेक अवे जो सैलरी, घर ले जाने वाला जो विशुद्ध वेतन है, उस पर क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा?
0: देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 15,000 जब आपका मैंडेटरी सीलिंग, वेज सीलिंग था,
1: जी
0: तब आपका जो 12% है वो 1,800 था। अब
1: जी
0: जब 25,000 हो गया, तो जो 15,000 से कम कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी 12% दे रहे थे। जैसे किसी का, समझ लीजिए, मान लीजिए 10,000 PF का वेजेस है, तो पहले वो 1,200 रुपया कटवाता था, अभी भी 1,200 रुपया ही कटेगा उसका। इनका इसमें सिमिलरली, जब जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं, तो उनका जो है, पहले अगर वो वॉलंटरी, स्वेच्छा, अपने इच्छा से ज्यादा अपना 12% जमा कर रहे थे, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो 15,000 और 25,000 के बीच में थे, और जो पहले PF के बाहर थे कंप्लीटली, जो जिनका PF कवरेज होता नहीं था, अब उनको जो है अब उसका PF कवरेज देना पड़ेगा। जो जैसे कि किसी का अगर 20,000 रुपये वेतन रहा, तो उसको 2,400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और नियोक्ता का 2,400 रहेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो 24,000 20,000 है, 20,000 में से अगर 2,400 आपका डिडक्शन हो जाता है, तो आपका जो टेक होम रहेगा वो 17,600 रुपये आपके टेक होम रहेगा। लेकिन मैं सब सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए ऐसा है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने वाली बात हो गई। जैसे कि ये जो 2,400 है, ये कहीं नहीं जा रहा, वो आपके बैंक के खाते को छोड़कर आपके PF के खाते में जमा हो रहा है। और PF के खाते से अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया, उसमें 75% जो है स्ट्रेट अवे, किसी भी कारणवश अगर आपको जरूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो
1: जी
0: इफेक्टिवली ये हो गया कि ये पैसा आप ही के पास है, इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट में या आपके पॉकेट में हो, ये PF के अकाउंट में है, और PF का खाता जो है उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन ये प्राय ये भी एक प्रश्न जो है वो सुनने में आता है कि क्या उसका एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत है जिसे आप रिटायर होने से पहले भी निकाल सकते हैं, या पूरा का पूरा आप निकालने की स्थिति में होते हैं?
0: देखिए, हमारे जो जो प्रावधान है, दो दो दो तरीके के प्रावधान है। एक है एडवांस, या
1: जी
0: जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो PF खाता है उसमें से 75% आपका और नियोक्ता का जो शेयर है, दोनों को मिला के जो भी आपका उसमें आपके बैंक अकाउंट PF अकाउंट में जो खाता में जो राशि है, वो 75% आप कभी भी किसी समय किसी कारणवश आपको निकालना हो, चाहे वो आपको बीमारी की वजह से हो, हेल्थ के वजह से हो, एजुकेशन, हाउसिंग, या फिर आपको शादी के लिए, या किसी भी वजह से आपको चाहिए, तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका परमानेंट जॉब लॉस हो गया,
1: जी
0: तो आप 1 साल से जॉब से वंचित हैं, तो 75% के अलावा जो बाकी के जो 25% है वो भी आप 1 साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये
1: उसमें शर्त ये
0: रिटायरमेंट
1: है
0: तक
1: कि
0: वेट
1: यदि
0: करने की
1: एक
0: जरूरत नहीं है।
1: वर्ष हो गया है आपको नौकरी से बाहर हुए दुर्भाग्यवश, तो वो उस स्थिति में आप पूरा भी उसको निकाल सकते हैं। जबकि सामान्य तौर पर जैसा आपने बताया कि यदि आप अपने नियमानुसार समय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उससे पहले 75% तक निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपने कुछ वजहें बताई कि जो देनी होती हैं, जो शायद अब बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं। पहले उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शंका होती थी कि क्या वो वजह हो सकती हैं, तो जैसे शायद शिक्षा और विवाह है, और या
0: हाउसिंग
1: मकान का निर्माण कर रहे हैं या खरीद रहे हैं,
0: या बीमारी कोई भी,
1: या कोई रोग है, तो उस स्थिति में उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ पक्ष हैं जिनमें ये आशंका व्यक्त की जाती है कभी कभी कि जो छोटे उद्यम हैं, MSME, जिनके प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये नए नियम उनके लिए कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे?
0: देखिए, EPF में जो कवरेज है वो अगेन वो मैंडेटरी तभी है कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब वो 20 से अधिक कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। तो एक तो सेफगार्ड यहाँ पे रखा गया है कि थोड़ा सा मतलब मीडियम से भी ज़्यादा अगर कोई उद्यमी है तो उन्हीं को ये PF वाला पूरा कानून लागू होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट, अभी तो जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको अभी 20-25 साल का दूरी दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अभी से आप अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आपका समझ लीजिए कि जब आपके आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो
1: जिम्मेदारियां बढ़ जाती
0: हैं, हाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एजुकेशन के लिए खर्च होना पड़ता है, तब आपके पास जो सेविंग्स है, जो जमा पूंजी है, वो कहाँ से मिलेगा? तो PF एक ही इस पूरे प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है जिसके जरिए आप समय समय पर आपका सेविंग्स बनता रहता है, और इसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भी और आपका भी कंट्रीब्यूशन साथ में जुड़ता है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 8.25% इंटरेस्ट हम देते हैं, एक समझ लीजिए एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आज का जो 25,000 का जो वेज सीलिंग बना उससे अगर 6,000 रुपया आपका 3,000 आपका और नियोक्ता का 3,006 रुपया प्रति माह आपका सेविंग्स बनता है, तो एक साल में आपका सेविंग्स बनता है 72,000। और ये अगर आप 35 साल तक अगर इसको कंटिन्यूसली बिना विड्रॉल के आप जमा करते हैं 30-35 साल तक, तो करीबन आपके 7% कम भी आप लेके इंटरेस्ट चलेंगे तब भी आपका 1 करोड़ का जमा पूंजी बनता है। तो ये रिटायरमेंट सेविंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो मैं ये जरूर मैं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये तो हमारे तरफ से एक 1200 रुपये का एडिशनल, कोई अगर पहले PF में नहीं था और अभी उसको देना पड़ रहा है तो 3,000 रुपये का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, या फिर वो पहले 15,000 कटवाता था अब 25,000 रुपये कटवाना है तो 1200 रुपये का एडिशनल उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉई जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, आपका वफादार है, आपका लॉयल्टी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट जो है उसको भी आश्वासन देता है, उसको भी ये मैं बोलूंगा प्रिवेंट करता है कि वो अलग अलग नौकरी छोड़ के जाने का सोचे ना, वो यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये एक तरीके से ये इंसेंटिव है कि आप अपने एम्प्लॉय रिटेंशन जिसको बोलते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ ही काम करते रहे, तो उनको आप जितना आप वेलफेयर जितना भी आप कुछ अच्छा करके देंगे
1: लाभ दे सकते हैं
0: तो फिर वो उतना आपके साथ वो जुड़ के काम करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं सासाराम बिहार से, अमित उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, क्या है आपकी जिज्ञासा, कहिए
2: जी। नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मान के चलिए PF अकाउंट है और कोई जॉब करते हैं और मान के 20 साल या 25 साल तक जॉब किए या फिर अपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिए, बिजनेस कर दिए, तो PF अकाउंट को क्या वैसे ही रहता है या फिर उसको कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि जो आम आदमी उपभोक्ता है, जो मान लीजिए जो नॉर्मल श्रमिक लोग हैं, उसमें होता है PPF अकाउंट, जो PF और PPF में थोड़ा सा भी इसका डिफरेंट थोड़ा बता दीजिएगा। जी
1: जी,
0: हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि ईपीएफ में क्या है, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपने पैसा जमा किया, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल तक काम किए उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये जो पैसा है 55 साल तक जो रिटायरमेंट जो एज है 58 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है, तब तक आप अपना सेविंग्स ईपीएफ के अकाउंट में आप रख सकते हैं। हर साल ये आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, इसमें से जब चाहे जैसे मैंने कहा अप टू 75% आप निकाल सकते हैं। इस टाइम हमने जो अभी जून में जो स्कीम जो निकाला है, नोटिफाई किया है, उसमें हमने ये भी कहा है कि किसी कारणवश, मतलब आपको ये नहीं हो कि कोई बीमारी हो या आपको घर चाहिए या फिर घर बनाना है या फिर विवाह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी और रीजन से भी आपको निकालना है पैसा, तब भी पीएफ अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टअप में अगर आपको कुछ पैसा इसमें से पीएफ से निकाल के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये अकाउंट जो है आपके 58 इयर्स उसके बाद 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा, आप यहाँ पे पैसा सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट ऑनलाइन पासबुक आपका आपको हमेशा दिखता रहता है, तो इसमें बैंक से कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो इसमें आप पैसा जरूर जोड़ के रखिएगा। सेकंड, आपने बोला कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आप अपने आइदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट के खाते में आप खोलते हैं, इसमें हर वर्ष में आप मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये ईपीएफ से काफी कम मिलता है आपको, और ये हर 15 साल तो रहता है, उसके बाद हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, तो ये आपका कंप्लीटली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है और आपके एम्प्लॉयर आपके नियोक्ता जो है वो भी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डिफरेंस है।
1: जी जी जी, तो आशा है आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर चर्चा कर रहे हैं और आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी, और हम आपको बता दें कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं रमेश जी, और उनसे अब हमारा जो ये सवाल है वो ये है अगला कि प्राय ये हमारे एक साथी ने ही दरअसल हमसे अनुरोध किया कि ये भी पूछिए कि क्या ऐसा है कि ये जो ब्याज दर है या जो सरकार की ओर से जो उस पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है क्या वो मार्केट लिंक्ड है या वो जो दर घोषित कर दी गई वही है या उसमें जो उतार चढ़ाव है उसका आधार क्या रहता है।
0: हाँ, तो मैं ये अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम घोषणा करते हैं ये हमारा जितना भी आप जैसे जितने कर्मचारी हैं जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन से हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है उनका बनाया हुआ जो अधिनियम है जो रेशियो है कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं उसके स्ट्रिक्टली उसके अनुपालन हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा करीब करीब 85% जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब जो फिक्स्ड ब्याज देने वाली सिक्योरिटी है जैसे केंद्र सरकार का बॉन्ड हो गया हो या फिर रिजर्व बैंक का बॉन्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स हो इसमें हम निवेश करते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 15% जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है इस पे हम जो इंडेक्स फंड्स हैं इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहता है और इसमें से जो हमारा हर साल में इसका जो रिटर्न आता है वो हम सबको एट नो कॉस्ट बेसिस, मतलब हम इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं रखते, हम इसको बांट देते हैं। हम इसी हिसाब से हम ये हर साल में हम जब अपना जो जैसे कि बही खाता टाइप का हम जब निकालते हैं कि हमने कितना कमाया और हमको कितना ब्याज देना है ब्याज की वजह से कितना हमारा खर्चा आएगा, ये दोनों का हिसाब बराबर करके उसके हिसाब से अगर 8.25% बना तो हम इंटरेस्ट 8.25% देते हैं, अगर कम ब्याज मिला हमको, कम रिटर्न मिला तो हम 8% या जो भी है ज्यादा मिला तो 8.5% हम ब्याज देंगे। तो ये मार्केट लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड है और हर साल के एंड पे घोषणा किया जाता है और इसका जो भी राशि है आपका पीएफ बैलेंस से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
1: जी, मौजूदा दौर में देखें तो सामाजिक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं और लोग अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा भी देखा

0: रहता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी एक कंपनी यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है, तो वो कई बार होता है कि दो दो जगह भी वो काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ दोनों जगह उसको ये जो प्रोविडेंट फंड है उसका उसकी व्यवस्था है, तो क्या उसे उन दोनों का लाभ मिलेगा या दोनों जगह उसके कटवाने की अनिवार्यता होगी?
1: ज़रूर, ये जो है ये अगर जिसको बोलते हैं कि काफ़ी आज के यूथ जो हैं सुबह सुबह कुछ काम कर लेते हैं, शाम को और कुछ जगह पे काम कर लेते हैं, तो अगर दोनों जगह से उसका पीएफ अगर कट रहा हो तो ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके खाते में दिखेगा, दो एम्प्लॉयर दिखेंगे, दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो है उससे लिंक जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में दिखेगा। इसमें कोई भी हमारे तरफ से पीएफ ईपीएफ कानून में कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रुकावट नहीं है, ये कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है ये
0: जी
1: जमा
0: जी
1: हो
0: जी ये
1: सकता है
0: नियोक्ता और कर्मचारी के बीच
1: बीच
0: में
1: में।
0: है कि यदि
1: हाँ
0: उन्हें ये आपत्ति
1: बिल्कुल
0: नहीं है कि आप
1: बिल्कुल
0: दो जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते, और वो लेकिन इस स्थिति में जो उनका जो नंबर है जो वो वही रहेगा,
1: वो
0: लेकिन
1: यूएएन नंबर
0: वो वही
1: एक
0: है।
1: आदमी का हमेशा वो परमानेंट है, वो
0: हाँ
1: यूएएन नंबर हर जगह हर एम्प्लॉयर को उसको यूएएन नंबर देना है।
0: जी। और इसमें एक और जो प्रायः एक समस्या यदि आती है तो देखें कि ऐसी स्थिति में कि यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है काम करते हुए और उन्होंने बनाया था किसी को अपना नॉमिनी, तो वो जो स्थिति है वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो काफी जटिल हो जाती है, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको ये बताइए
1: तो
0: कृपया।
1: ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो ये वेज सीलिंग जो सीमा सीलिंग जो इंक्रीज हुआ
0: जी
1: तो उससे ना ही प्रोविडेंट फंड बट इवन पेंशन स्कीम में और ईडीएलआई दोनों में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी आएगा। तो हमारा जो पेंशन स्कीम था वो 15,000 से सीमित था, इसका मतलब अगर कोई 16,000 रुपया भी कमा रहा हो तो हमारा पेंशन स्कीम का पात्र नहीं था, वो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ, वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था। अब जब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है तो इसका जो है ही बिकम्स वो अब पेंशन स्कीम का भी पात्र बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% डाइवर्ट होके वो उसके खाते में पेंशन खाते में चला जाता है। अगर 10 साल तक वो अगर नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये भी एक बहुत मेजर फायदा है इसमें। और जैसा कि आपने कहा कि ईडीएलआई जो हम बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो
0: जी
1: ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेंबर की मेंबर को मेंबर का डिमाइस हो जाता है तो उसके सर्वाइवर जो नॉमिनी हैं तो उनको जो है ना केवल फैमिली पेंशन बट ईडीएलआई में 2.5 लाख से 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी उसको प्राप्त मिलेगा। अच्छा,
0: जी
1: इसमें जो है आपने सही कहा, इसमें अगर नॉमिनी होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड है हमारे वेबसाइट में, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तुरंत जो नॉमिनी को पूरा पैसा ईडीएलआई का इमीडिएटली मिल जाता है। उसको अगर ई नॉमिनेशन किया हुआ है तो उसको क्लेम फॉर्म एक भरना है और क्लेम फॉर्म के भरते ही उसको पैसा मिल जाता है। तो ये एक एडिशनल फायदा है। अगर 25,000 तक का वेज सीलिंग है, अगर वो कोई भी एम्प्लॉय पर 33 साल काम करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन जो है 12,500 रुपये, अगर वो 25,000 पे कंटिन्यूसली
0: हाँ
1: पे कर रहा है तो उसको
0: जी,
1: पेंशन 12,500 रुपये का मिलेगा।
0: लेकिन क्या केवल नॉमिनी का नाम भर देना ही पर्याप्त है या वो ई साइन होना चाहिए इस विषय में
1: नहीं तो
0: जी
1: मेंबर को ई साइन करना पड़ता है
0: करना है?
1: और नॉमिनी का आधार भी उसको देना पड़ता है।
0: जी। तो ये जानकारी तो काफी महत्वपूर्ण रही और मैं समझता हूं कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपनी तमाम जिज्ञासाओं के जो हैं जवाब इसमें जरूर मिले होंगे। और दोस्तों अब समय हो रहा है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त तो रमेश कृष्णमूर्ति हमारे स्टूडियो में पधारे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल करके बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही

0: end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। अगले महीने की 5 तारीख से अगले दौर की वार्ता शुरू होगी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे तथा रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मख्तूम का आज 76 वर्षीय आयु में निधन हो गया। दुबई मीडिया कार्यालय ने बताया कि पूरे अमीरात में 10 दिनों का आधिकारिक शोक घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान झंडे आधे झुके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मख्तूम के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर श्री जयशंकर ने कहा कि भारत की संवेदनाएं शाही परिवार और दुबई की जनता के साथ हैं। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। ये रोग आमतौर पर बढ़ती उम्र से जुड़ा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे होने वाले बदलाव शरीर और दिमाग में इसके लक्षण दिखाई देने से काफी पहले शुरू हो सकते हैं। अब एक नए शोध से पता चला है कि रक्त परीक्षण के जरिए अल्जाइमर से जुड़े शुरुआती बदलावों को प्रौढ़ अवस्था में ही पहचाना जा सकता है। ये शोध द लैंसेट में प्रकाशित हुआ। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान की वायुसेना ने आज

0: लड़के अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। अफगान मीडिया के अनुसार कुनार प्रांत के नूरगल जिले में तड़के करीब 3 बजे हमला हुआ। पक्तिका के बर्मल जिले में भी करीब 4 बजे 2 हवाई हमले किए गए। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की तत्काल जानकारी नहीं है। कुनार और पक्तिका दोनों प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं। ये घटना उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक पुलिस ठिकाने पर हमले के 2 दिन बाद हुई है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने आज कुनार और पक्तिका में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री करजई ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान के हवाई हमलों में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान को वर्तमान सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की निंदा की और चेतावनी दी कि वो इन हमलों का उचित जवाब देगा। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन नौवीं स्टेट ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल करके बहुमत बरकरार रखा है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: रूस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम्फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे रहा। उसके बाद रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 59.32 रहा, जो 2021 के 51.72% से अधिक है। रूस की स्थायी विधायी संस्था स्टेट ड्यूमा है, जिसमें 450 सांसद होते हैं। चुनाव में कुल 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित होने की संभावना है। ये 2022 में यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के बाद पहला संसदीय चुनाव था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: गूगल पर यूरोपीय संघ के गोपनीयता नियमों के उल्लंघन के लिए लगभग 46 करोड़ 30 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने उपयोगकर्ताओं के स्थान संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन में नियमों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया। जांच में पाया गया कि गूगल ने अपनी वेब एंड ऐप एक्टिविटी और लोकेशन हिस्ट्री सेवाओं के जरिए जुटाई गई स्थान संबंधी जानकारी को कानूनी और पारदर्शी तरीके से संचालित नहीं किया। डेटा गोपनीयता नियामक ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकेशन एक्यूरेसी फीचर के जरिए व्यक्तिगत आंकड़ों के इस्तेमाल में भी कमी पाई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैच में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सुनील कुमार की कप्तानी में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने मेजबान जापान को एक तरफा मुकाबले में 49-23 से हराया। आशु मलिक और राहुल भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में जीत के नायक रहे। भारत कल साउथ कोरिया से खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। अगले महीने की 5 तारीख से अगले दौर की वार्ता शुरू होगी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। चलो आज कहीं दूर चलते हैं, थामे हुए हरियाली की डोर, गांव की गलियों की ओर, जहां हवाओं से खुशबू आती है, जहां कोयल मीठा गीत सुनाती है। आज चलो कहीं दूर चलते हैं।

गांव बहुत प्यारा लगने लगा है, है ना। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है, मानसून अपने पीछे छोड़ गया है यादों के सुहाने मंजर, घटाओं से रिमझिम की कहानियां, हवाओं से पेड़ों की अटखेलियां। ये सब यूं ही तो नहीं होता ना। संसार की हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वो मौसम का बदलना हो, हमारा हंसना हो, रोना हो, या गाना, या फिर गुल और बुलबुल का मिलना, ये सब यूं ही तो नहीं होता। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गुल और बुलबुल की कहानियां सुनाता ये गीत फिल्म जब जब फूल खिले से आपके लिए।

एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों गीत गाते थे, प्यार भरी बातें करते थे। वैसे बातें तो प्यार भरी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो जहनों दिल में मिश्री की तरह घुल जाती हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो नश्तर सी चुप जाती हैं। कुछ मोहब्बत भरी बातें दिल में ही रह जाती हैं, तो कुछ बातें इजहार बन के लबों पर आ जाती हैं, और कुछ बातें गीत बनकर धड़कनों पर बजने लगती हैं। कुछ ऐसी बातें फिल्म साथी के इस गीत में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। कभी तुम भी नजर आओ सुबह से शाम तक हमको, बहुत से लोग मिलते हैं निगाहों से गुजरते हैं, कोई आवाज तुम जैसी कोई हम नाम तुम जैसा, बहुत बेचैन फिरते हैं बहुत बेताब रहते हैं, मगर तुम ही नहीं मिलते, मगर

प्यार के पुकारने पर जब वो आ जाते हैं तो खिजाओं में भी बहार आ जाती है। उनसे आंखें चार होते ही दिल कह उठता है, रोग दिल को लगा गई आंखें, एक तमाशा दिखा गई आंखें। उसने देखा था किस नजर से मुझे, दिल में गोया समा गई आंखें।

ये आंखें, ये चेहरा, ये रूप का जलवा, अगर इनकी रोशनी, इनकी जलवा नुमाई ना होती तो ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, ये जिंदगी मुस्कुराती नहीं। और कुछ ऐसा ही कह रहा है फिल्म बेटी बेटी का ये गीत।

इसी गीत के साथ ही हरसिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर आइए जुड़ते हैं हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचारों से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100

0: प्रतिशत शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ki is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Aaj subah hai aur aaj ke din hamare karyakram mein aap bhi hua karte hain sammilit. Humse aaj bhi aap pooch sakte hain arthniti, karobar ya share bazaar se juda koi bhi sawal. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स. सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबाउट 23,400. द कंट्रीज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 4.8% इन ऑगस्ट दिस ईयर. एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू कम इन टू फोर्स ऑन द 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. 100% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स टू गेट ड्यूटी फ्री एक्सेस हैज यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ. देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा.
0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे. हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई.
0: So benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई. HCL टेक को 3.4% का और इटरनल को 2.6% का लाभ हुआ. इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारती एयरटेल के शेयर रहे जिसमें 1.9% की गिरावट हुई.

0: पावर ग्रिड को 1.2% का और इन्फोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ.
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
0: नजर डाल लें यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ.
1: And we are joined in by our first caller from Mumbai, Mukund.
2: Mukund, yes, welcome.
1: Namaskar. सवाल
2: नमस्कार. मुझे ये पूछना है सर जी, SC ST यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया है तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने तक की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूएबल रह सकता है, 6 महीना, 10 महीना, यही 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे.
3: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
1: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिसर्स वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक, कितने टर्नर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका.
3: नहीं मुकुंद जी देखिए, जहां तक सीनियर सेविंग स्कीम्स की बात है उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें.
0: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है, बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
3: नहीं देखिए मनोज जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो भी डेटा हो, चाहे वो आपका जीडीपी का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है, साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है. लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास, आत्मविश्वास थोड़ा लौटा होगा क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद FIIs का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में FIIs ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा, ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है.
0: जी आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को. रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: हेलो गुड इवनिंग सर, यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? तो दूसरा सवाल है कि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू.
3: देखिए रत्नाकर जी, जहां तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि

0: तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूं इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफी पिटाई हो चुकी है। और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है। और दुनिया में जो जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है, उसमें एक बड़ा विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि, और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं। तो मुझे, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
1: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
2: नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता था कि ये आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है। और दूसरा सर मैंने आईटीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लूं क्या कि मेरा आईटीआर प्रोसेस हो गया है?
0: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला? आपने
2: रिफंड मिल गया है सर, मुझे सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
0: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है। और साथ साथ वो एक, जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेजी थी जो $100, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहां भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीजन वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेजी देखी।
3: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय फोन लाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
4: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट कंडीशंस टुडे and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one. And of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality affecting the market in the coming days?
0: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not in within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yeah, yes, by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices, so we might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors, plus I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence, because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever

0: that the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. Mm-hmm. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So mm-hmm. I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा. यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है. क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यदि विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
0: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्राइमरी रीजन, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में
1: जी.
0: तो मुझे लगता है इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है. तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के.
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश. स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार मार्केट मंदिर टीम को, नमस्कार. मेरा
1: जी नमस्ते.
2: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी, मतलब क्रिप्टो, अगर खरीदते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी, तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो, जैसे नेक्सा वगैरह हो गया, तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा, ये जानना था प्लीज.
0: नहीं अविनाश जी, देखिए जहां तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है, उसको आपको अपने ITR में दर्शाना होगा. और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी, ऐसा कोई TDS देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, उससे अगर आपको कोई भी इनकम, अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल, तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देनी होगी.
3: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई. वेलकम
1: रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मित्रा.
1: नमस्ते.
4: मेरा क्वेश्चन है कि ये FIIs जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे, उसका जो है विड्रॉ कर लिए हैं, ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं. और DIIs जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब SIP के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है, कॉम्पनसेट हो रहा करके, वहां तक तो ठीक है. इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा, तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है, ये जानना चाह रहा हूँ. थैंक यू.
0: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है. पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि पीछे जो बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशन दिए थे उनको, उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश FIIs का बढ़ा था. लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका सिद्धांत है निवेश का FIIs का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं, एशिया की बाजार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहां पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं. तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं. इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं.

0: Right, and in some other stories, the combined index of core industries, ICI, recorded cumulative growth of 4.8% year-on-year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year-on-year basis.
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव. केशव जी, स्वागत आपका. सवाल पूछिए.
2: नमस्कार.
1: नमस्ते.
2: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है क्लियर रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और होता है कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
3: नहीं केशव जी, देखिए जो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है. तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें.
0: An India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
0: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
1: इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में. स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए.
5: नमस्ते. नमस्ते सर. सर ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
3: नहीं देखिए रंजीत जी, जैसा कि आपको पता ही है फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं, और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है. और जहां तक उसके निगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 बेसिस पॉइंट्स का कोई बहुत ज्यादा बाजार पे कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा. हाँ ये जरूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो, हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं.

0: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन पर 2000 रुपए तक का लेन देन मुफ्त रहेगा। इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल UPI के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेन देन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने UPI के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार UPI का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा है कि MDR से प्राप्त राजस्व का उपयोग UPI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा, ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए NPCI ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
1: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या आप है गुल्लक करके एक ऐप है जो वे एक्चुअली टेक्स फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट इन पर्चेस।
2: जी देखिए रजत जी, जहां तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
0: Bharatiya Sarrafa Abhushan Nirmata Sangh ke aankdon ke anusar Bharatiya Sarrafa bazar mein 24 karat sone ka moolya 0.2% ghatkar 153,337 rupaye prati 10 gram par tha. Chandi 2,34,992 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दोनों को भी धन्यवाद।
3: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।
1: एक बात बताइए।
2: क्या?
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा
1: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। इससे पहले आप सुन रहे थे आह फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म अनारी का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म सीआईडी के इसी गीत के साथ ही हरसिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। राखी आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर राखी आ गई हैं, लेकिन कुसुम को अब दीजिए इजाजत, जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। अगले महीने की 29 तारीख तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

कभी किसी की एक झलक दिल को यूं छू जाती है कि नजरें ठहर जाती हैं और दिल बस उस चेहरे को निहारते रहने की ख्वाहिश रखता है। हुस्न जब पर्दे में हो तो उसकी कशिश और भी बढ़ जाती है और फिर दिल की यही गुजारिश होती है, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए तर्क नहीं बस दिल की जरूरत होती है, और जब यही दिल किसी की याद में धड़कने लगे तो उसकी हर धड़कन एक ही बात कहती है, ये दिल तो दीवाना है। इश्क पर जोर नहीं फिल्म से आपने ये गीत सुना। लता मंगेशकर और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

नजरों का भी अपना एक खेल है। सामने कोई हो और बीच में एक पर्दा, तो बेचैनी और बढ़ जाती है। दिल चाहता है कि ये दूरी, ये रुकावट जरा हटे और सामने वाले का दीदार हो जाए। महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 12 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

इस खूबसूरत गीत की कल्पना में आने वाले कल की एक ऐसी तस्वीर है जहां आसमान सितारों से सजा हो, सावन की फुहारें मन को भिगो रही हो और जिंदगी किसी हसीन सपने की तरह महसूस हो। उम्मीद, प्यार और साथ से बुना ये गीत जैसे कहता है कि जब अपना कोई साथ हो तो साधारण सी जिंदगी भी एक खूबसूरत सपना बन जाती है। जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आपने सुना रफी और लता की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो आंखें भी उसके उजाले से रोशन हो जाती हैं, और फिर दिल यही ख्वाहिश करता है कि उस खूबसूरत एहसास की लौ कभी ना बुझे। अनुराग फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

11:46 और ठीक 47 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहब्बत में साथ निभाने का वादा जब दिल से किया जाए तो हर दूरी छोटी लगने लगती है। कुछ ऐसे ही अटूट भरोसे और साथ की बात करता है ये अगला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, जहां दो दिल एक दूसरे से जुदा ना होने की कसम लेते हैं।

कुछ रिश्ते सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं होते, बल्कि उम्र भर एक दूसरे का हाथ थामे रहने का वादा होते हैं। जहां मोहब्बत में कोई फासला मायने नहीं रखता, बस एक ही यकीन दिल में रहता है कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191

0: 1000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आई स्टेम पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ परविंदर मैनी ने की। इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
3: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations.

वक्त हुआ है 1:10 और वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

कभी कभी मोहब्बत के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती, एक नजर, एक मुस्कान और कुछ अनकहे इशारे ही दिल तक पहुंच जाते हैं। कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

कभी किसी को अपने ख्वाबों में देखा हो और फिर वही शख्स हकीकत बनकर सामने आ जाए तो दिल की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहां महबूब को देखकर लगता है जैसे बरसों पहले दिल ने जिसकी तस्वीर बनाई थी आज वही सामने आ खड़ी हुई है। हिमालय की गोद में फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

जब दिल में मोहब्बत पहली बार दस्तक देती है तो रातें भी छोटी लगने लगती हैं और नींद आंखों से जैसे रूठ सी जाती है। दिल में हजारों सवाल उठते हैं और हर सवाल का जवाब बस आने वाला वक्त जानता है। हरियाली और रास्ता फिल्म से आपने ये गीत सुना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: कुछ मुलाकातें खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, उनकी याद दिल में एक अगली मुलाकात की उम्मीद लगा देती है। इसी मीठे इंतजार और फिर मिलने की चाहत को इस खूबसूरत गीत ने आवाज दी। 20 साल बाद फिल्म का गीत आपने सुना, माफ कीजिएगा, ये रात फिर ना आएगी फिल्म का ये गीत आपने सुना रफी और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा SH बिहारी ने और संगीत दिया OP नैयर ने।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद।

जाने वाले को रोक लेने की वो मासूम सी कोशिश, जब दिल अपनी बेचैनी को शब्दों में कह देता है, मोहब्बत में कभी कभी एक छोटी सी गुजारिश भी बहुत कुछ कह जाती है, बस लौट आने की आस और साथ बने रहने की चाह। 20 साल बाद फिल्म का ये गीत आपने सुना, हेमंत कुमार की आवाज़।

याद जब किसी खास शख्स की आए तो मौसम भी जैसे उसी के नाम का हो जाता है। बहार झूमती है लेकिन दिल को तलाश रहती है उस आवाज की जो दूर होकर भी बहुत करीब महसूस होती है। पतिता फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी आपके साथ। जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है और खामोशी धीरे धीरे चारों ओर उतरने लगती है, तब दिल को बस एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो बिना कुछ कहे मन की बात समझ ले। ऐसे ही नर्म सुकून भरी रात में पुराने फिल्मी गीत यादों की खिड़की खोलते हैं और हमें अपने साथ उन खूबसूरत पलों में ले जाते हैं जहां बस संगीत है, एहसास है और दिल की हल्की सी धड़कन।

कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, बस सिर छुपाने को थोड़ी सी जमीन, सपनों को छूने को थोड़ा सा आसमान और तिनकों से बना एक छोटा

सा आशियाना जहां अपनेपन की गर्माहट हो और सुकून से भरी सांसें। सितारा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मासूम सी शरारत, प्यार से भरी हुई कल्पना और अपने प्रिय के लिए कुछ कर गुजरने का मीठा सा एहसास, इसी भावनाओं को समेटे था ये प्यारा सा खूबसूरत गीत। नमकीन फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। आरडी बर्मन ने दिया संगीत और इस गीत को लिखा गुलजार ने।

रात की खामोशी जब धीरे धीरे अपने आगोश में सब कुछ समेट लेती है तो लगता है जैसे चांदनी भी ठहर गई हो और आसमान ने भी आंखें मूंद ली हो। ऐसी ही एक शांत सुहानी रात और उसमें घुली एक बेहद खूबसूरत धुन, नीला आसमान सो गया। सिलसिला फिल्म का ये गाना आपने सुना अमिताभ बच्चन की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बीते हुए लम्हों की यही तो खूबसूरती है। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर यादें वहीं ठहर जाती हैं। कोई पुरानी बात, कोई चेहरा, कोई मुलाकात और अचानक गुजरा हुआ कल फिर से आंखों के सामने आ जाता है। बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी भूपिंदर की आवाज में। इसे लिखा बहार नवाज ने और संगीत दिया खयाम ने।

कुछ रिश्ते जिंदगी में इस तरह शामिल हो जाते हैं कि उनकी मौजूदगी अलग अपने आप से महसूस होती ही नहीं, वो हमारी हर खुशी, हर एहसास और हर पल का हिस्सा बन जाते हैं। आप तो ऐसे न थे, फिल्म का ये गीत आपने सुना रफी की आवाज में, निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज्म सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा अमीर मीनाई ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 13 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां एपीयू टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट

0: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और एक मजबूत आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish B. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन बाद आपसे गुफ्तगू करने हम फिर से आ गए हैं और हम भी उदास हो जाते हैं अगर आपसे ज्यादा दिन तक बातचीत ना हो। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? फासले मिट गए तो ये जाना, फासले मिट गए तो ये जाना, वक्त लगता है अपनों को पाने में।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म राम लखन से अभी आपने गीत सुना। खुली आंखों से देखा था जो सपना कभी, खुली आंखों से देखा था जो सपना कभी, वो आज मेरी तकदीर बन गया। तेरे होने से मेरा ये जिंदगी का सफर एक खूबसूरत तस्वीर बन गया।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बरसात की एक रात से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब हम किसी को चाहते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये बंजर दिल फूलों की तरह खिल गया हो और चेहरा खुशी से सरोबार हो जाता है। फिर चाहे ये खता हो या फिर सजा, दोनों ही अच्छा लगता है।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म छोटी सी मुलाकात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।
1: हुस्न जब जब

वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो हाथ ही क्या जो मुश्किल में छूट जाए। अगर किया है वादा किसी से साथ निभाने का, तो फिर चाहे जमाना भी हमसे क्यों ना रूठ जाए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हाथ की सफाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कभी कभी से आपने अभी ये गीत सुना। और दोस्तों, प्यार का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, और चोरी चोरी से ये रिश्ता एक खूबसूरत सी डोर में बंध जाता है, और फिर उस रिश्ते के बिना जीना नामुमकिन सा लगने लगता है। आइए सुनते हैं मुकेश।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी से अभी आपने गीत सुना। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरों से बचाने के लिए कार्ययोजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को इस सुहानी सुबह में मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह का समय है और मौसम ने भी अब थोड़ी सी करवट ले ली है और ऐसी सुहानी सुबह में दिल चाहता है कि कहीं चला जाए। अब कहाँ चला जाए ये आप तय करेंगे अपने इस समय को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए।

मुकेश की आवाज में फिल्म इशारा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन के दिन तो छोटे ही हैं, ये हम सभी को पता है, पर फिर भी हम उसे नाराजगी, गुस्से, नफरत में ही बिता देते हैं। क्यों ना जिंदगी को बड़े दिल वाला बन के जिया जाए, एकदम बिंदास।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बड़े दिलवाला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिस तरह से नदी अपनी मस्ती में चलती रहती है बिना कहीं रुके, इधर उधर देखे बिना, वैसे ही जिंदगी में हमें भी अपनी मस्ती में जीते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म सफर से ये गीत।

सुबह के 4:24 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म बाबू से।

दोस्तों, हम किसी के चेहरे को देखकर ही जजमेंट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, पर जब हम उससे मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तभी हमें पता लगता है कि आदमी सही है या नहीं। और दोस्तों, दिल को देखिए, चेहरे को नहीं। आइए सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म आजाद से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी के दिन चाहे जितने भी हों, बस ऐसे हों जिसमें प्यार हो, एहसास हो, सुकून हो और विश्वास हो और नफरत द्वेष की कहीं भी जगह ना हो।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सच्चाई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हमारा दिल एक आस के पंछी की तरह है और हमें कहीं ना कहीं से उम्मीद भी लगी रहती है, पर उम्मीद सिर्फ अपने आप से ही रखिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और आप अपनी मंजिल को भी पाने में कामयाब रहेंगे।

0: आकाश का पंछी।
1: सुबीर सेन की आवाज़ में फिल्म आस का पंछी से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं नर्तकी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

बिल्कुल दोस्तों, दुनिया सुहानी ही लगती है अगर आपका मन अच्छा है और आप खुश हैं। जिंदगी में अगर प्यार है, अपनापन है, तो आप अपने आप ही हमेशा गाते मुस्कुराते रहेंगे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और मनहर उदास की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह ही हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी, सुबह 6 बजे तक मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force, Heads of States and Union Territories in New Delhi today. The 2 days conference, which will be organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, will serve as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Based on the theme, United Resolve, Shared Responsibility, the conference will discuss the role of the ANTFs in attaining the envisaged vision of Narcotics Control 2026-2029. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. Our correspondent reports, the commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions tomorrow relating to the Special Intensive Revision, or SIR, of electoral rolls. The Commission is likely to apprise the court of the need for more tribunals during the meeting. The Chief Electoral Officer of Delhi held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. Notices have been issued to those whose entries could not be linked with the electoral roll of the last special intensive revision and to those having logical discrepancies in their details. In Asian Games, India has won 6 medals

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। सुबह की इस सुहानी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आजकल सभी जगह गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भक्ति का माहौल है और हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। तो आइए हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं गणेश जी के भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन ने।

दोस्तों, प्रभु का नाम लेते ही मन एकदम शांत हो जाता है और उस प्रभु का जब इशारा होता है और तभी हमारे काम होते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बरखा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इस कलयुग में दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देख के ही चलो तो बहुत अच्छा है, ना जाने कौन कब आकर अपनी होशियारी दिखा जाए। आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत।
1: ए भाई दर...

इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता।

सुबह के 5:25:45 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।

दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं क्यों उसका भला करूं, पर जो उसने किया वो उसके कर्म है। हम किसी के बारे में गलत सोचकर अपने कर्म क्यों खराब करें? आइए सुनते हैं घर संसार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।